मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन शुभ हो।

ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप,

दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

हम सब एक ही भारत भूमि की संतान हैं। जिस तरह एक माँ के लिए अपनी सभी संतानें प्रिय होती हैं, उसी तरह अनेक नाम, जाति, धर्म और मान्यताओं की विविधता के बाद भी हमें अपनी मातृभूमि प्यारी है। आइए सबसे पहले नमन करें अपनी मातृभूमि को।

परंतु हम ही सांसारिकता के आकर्षण में उस परमात्मा की ओर देखने से वंचित होने लगते हैं जिसके द्वारा ये समस्त संसार रचा गया है। गृहस्थ अवस्था में भी हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें, हमारा यही प्रयास परमात्मा को याद करने का सबसे आसान था।

भक्ति ईश्वर से साक्षात्कार करने का एक छोटा सा प्रयास है। प्रभु के नाम का स्मरण, उसका भजन, उसका गुणगान ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का प्रतीक हैं। आडंबरों से हमें अवश्य बचना चाहिए, परंतु हमारी भक्ति को अगर कोई आडंबर समझने का प्रयास करे तो इसकी चिंता भी हमें नहीं करनी चाहिए।

संसार में जीवन प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हुआ है और सभी अपने तरीके से अपना जीवन काल संपन्न करते हैं, परंतु मानव जन्म प्राप्त करने पर मनुष्य का दायित्व है कि वह अपने जीवन काल का उपयोग मोक्ष और प्रभु प्राप्ति के लिए करने का प्रयास करे, ताकि जन्म जन्मांतर की यात्रा संपन्न कर वो परम शक्ति में समाहित हो सके।

प्रकृति की निरंतरता और उसके अपने नियम कभी अवरुद्ध नहीं होते, क्योंकि इनका संचालन करता ईश्वर है। शाश्वत और सत्य का उदाहरण प्रकृति के अलावा भला क्या हो सकता है? इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में विद्यमान है।

0: आज के इस कार्यक्रम में आपने समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद तापसी नागराज, अनुपमा देशपांडे, शर्मा मधु और लता मंगेशकर की गाई भक्ति रचनाएं सुनी। इसके साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह, आकाशवाणी 9

0: दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

छह राम अवतार की पूरी कथा सुनाकर काकभुशुंडे उस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं जब उन्होंने प्रभु से भक्ति का वरदान मांगा था। उन्हें प्रभु की उस अविरल तथा निष्काम भक्ति की कामना थी जिसकी महिमा श्रुतियों तथा पुराणों में गाई गई है। एवमस्तु कहकर रघुनाथ जी कहते हैं, हे काक, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, अतः ऐसा वरदान क्यों करना मांगता। तूने तो सभी सुखों का स्रोत मांग लिया। तेरे समान बड़भागी इस संसार में अन्य कोई नहीं जिस भक्ति को मुनिजन जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर भी नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। अब तेरे हृदय में सभी गुणों का वास होगा। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनका रहस्य तू सहज ही जान जाएगा। माया से उत्पन्न होने वाले भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। यह वरदान देकर प्रभु ने काकभुशुंडी को निज सिद्धांत की सीख दी। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, इसके सभी जीव मुझे प्रिय हैं, किंतु सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। उनमें भी वेद के अनुसार धर्माचरण करने वाले, उनमें भी वैराग्य धारण करने वाले, फिर ज्ञानी, ज्ञानियों में भी विज्ञानी, विज्ञानियों में भी अति प्रिय वो हैं जिन्हें केवल मेरी भक्ति का सहारा और भरोसा है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। इसमें स्वर सुरेश वाडकर के थे, संगीत संयोजन सतीश भाटियर का था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे चिंतन। आज का विषय है जल। आलेख विनय उपाध्याय का है।
1: जल के बिना जीवन का अस्तित्व ही सूना है। दरअसल पंच तत्वों से बनी इस सृष्टि

0: और हमारे शरीर में जल एक अनिवार्य उपस्थिति है। वो न केवल जीवन को धारण करता है बल्कि स्वयं जीवन है। जब से प्राण बने तभी से पानी उसके भीतर वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे मनुष्य की शिराओं में अनजाने ही रक्त प्रवेश कर जाता है। तभी तो वो सबसे पहली कविता का मुख्य संदर्भ बना। पुराणों के अनुसार जल देवताओं के रूप में इंद्र और वरुण की सृष्टि हुई। महाभारत के भीष्म गंगा से जन्मे और अर्जुन इंद्र से। कृष्ण को जन्म लेने के बाद जीवित दूसरे किनारे पर पहुंचाने के लिए यमुना ने अपने पानी के उफान को शांत संयत कर लिया था। ये वही जल है जिसे अपनी कविता में रूपायित करते हुए छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा ने कहा है, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के। जल से जुड़े जीवन की धन्यता के अनगिनत प्रमाण हैं। कालिदास ने मेघदूतम जैसे महाकाव्य की रचना करते हुए आषाढ़ के पहले दिवस की उत्सवी परिकल्पना कर सिर्फ प्रेम के स्पंदन को रेखांकित नहीं किया बल्कि इस धरती की सूखती काया और बेजान प्राणों पर पुलकती संभावना को प्रतिष्ठित किया। साहित्य ही नहीं कलाओं में भी जल की छवियां सदा से ही प्रतिबिंबित होती रही हैं। रंग रेखाओं, मूर्ति शिल्पों, अभिनय, संगीत, नृत्य सभी विधाओं में पानी का राग मुखरित होता रहा है। ये प्रकट सत्य है कि जल के अमृत प्रवाह ने जीवन को एक महाभाव की संज्ञा दी। जन्म से लेकर मृत्यु तक जल का संयोग बना रहता है। हमारे दैनंदिन की जरूरत से लेकर कर्मकांडी आचार व्यवहार भी जल के बिना संभव नहीं। हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों की तुलना भी तो जल के प्रतीकों से अभिव्यक्त की जाती है। भारत जैसे आस्थावान देश में जल की देवतुल्य मान्यता ने लोक जीवन को एक अनूठी जीवन पद्धति में ढाल दिया है। जल हाथ में लेकर संकल्प लेना यानी जल को साक्षी मानना, जल छिड़क कर अपवित्रता के निवारण के लिए आश्वस्त होना, जल कलश को मंगल विधाई मानना, किसी की मृत्यु के बाद मिट्टी का जल भरा घड़ा फोड़कर देह जल को विराट सृष्टि में विलीन करना, पवित्र नदियों में स्नान, उनकी आरती उतारना, ये केवल कर्मकांड नहीं रहे होंगे, वे प्रतीक विधान होंगे जो जल में प्रिय पूज्य मंगल आस्था साक्षी व्रत आदि के माध्यम से जीवन के मूल्य और विश्वासों की खोज करते रहे होंगे। ये जल ही तो है जिसके स्पर्श मात्र से हमारे भीतर जागृति और पवित्रता का बोध होता है, सूखे कंठों की प्यास का हरण होता है, वनस्पतियों का हरापन और फूलों की रंगत इसी जल की कृपा से ही है, वर्षा के राग रंग इसी पानी की सौगातें हैं। संसार के सृष्टि विकास चिंतन में जल की भूमिका एक कारक के रूप में ही नहीं एक जीवन सत्ता की तरह स्वीकार की गई है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है, जल ही जीवन का आदि स्रोत है। वैज्ञानिक उन ग्रहों की खोज ब्रह्मांड में कर रहे हैं जिनमें जल विद्यमान है। यदि ऐसे ग्रह की प्राप्ति हो जाती है तो उस ग्रह पर जीवन होने की भी संभावना बन जाएगी। लेकिन जल की इस महिमा के साथ ही ये दुखद पहलू है कि आधुनिक जीवन में विकास के नाम पर जल के साथ दुरुपयोग के जो दृश्य सामने आ रहे हैं उससे जीवन जटिल होता जा रहा है। जल का प्रदूषण और उसके लगातार सिमटते जा रहे स्रोत आज चिंता का विषय हैं। उपभोगी तो हम बने लेकिन जीवन के आधार तत्व जल के प्रति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह भी करें। किसी ने कहा है, जल वह ज्योतिर्मय आंचल है जहां खिला यह सृष्टि कमल है, जल ही जीवन का संबल है, जल ही जीवन का संबल है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज का विषय है जैविक कीटनाशक। जानकारी देंगी डॉक्टर अरुणा श्रीवास्तव।
2: नमस्कार किसान भाइयों, जैविक कीटनाशक आज की आवश्यकता। हाँ पंचों, आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संपूर्ण कीट नियंत्रण के लिए कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फसल कटाई के बाद और गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, अनुकूल फसल चक्र अपनाएं।

0: जैविक संघटकों से बीजोपचार करें, रोग और कीट प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें, यांत्रिक विधि द्वारा लटों और कीटों को पकड़कर नष्ट करें, पौधों के रोग और कीट ग्रसित भाग को नष्ट करें, फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और फसल के अवशेषों को नष्ट करें। पंचों, फसल में विभागीय सिफारिश के अनुसार प्रकाश पाश फेरोमोन ट्रैप लगाएं। ट्रैप में फंसी वयस्क तितलियों को प्रतिदिन गड्ढे में डालकर नष्ट भी करें। फसलों में मित्र कीट और परजीवी कीटों को छोड़ें। कीटों की संख्या आर्थिक स्तर से अधिक होने पर ही कीटनाशकों का प्रयोग करें, और यदि ये नीम पर आधारित कीटनाशक हैं तो बहुत ही लाभप्रद हैं। आवश्यकता पर आधारित न्यायसंगत और सुरक्षित कीटनाशकों का छिड़काव करें। किसी भी कीट के नियंत्रण हेतु एक से अधिक कीटनाशकों का छिड़काव करें, मतलब प्रत्येक छिड़काव में अलग अलग कीटनाशक प्रयोग में लेवें। किसी भी कीटनाशक का उपयोग दोबारा न करें। ऐसे किसी भी कीटनाशक का छिड़काव न करें जो फसल की वानस्पतिक वृद्धि करता हो, और जहाँ तक हो हम बताए गए कीटनाशकों का ही उपयोग करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है जो फसलों में जड़ गलन, उखटा, तना गलन और कॉलर रोट आदि रोग पैदा करने वाले परजीवी फफूंद की वृद्धि रोककर उन्हें धीरे धीरे नष्ट करता है। इससे फसलों के बीजों को उपचारित करने पर बीमारियों से फसल को बचाया जा सकता है। यह प्रदूषण रहित और पशुओं और मनुष्यों के लिए सुरक्षित जैविक फफूंद नाशी है, और यह कम खर्चीला और लाभकारी भी है। दूसरा कीटनाशक है ब्रोमोडाइलिन। पंचों, चूहे खेतों में खड़ी फसल को काटकर और पकी हुई फसल के दानों को खाकर नुकसान करते हैं। चूहों के रोकथाम के लिए ब्रोमोडाइलिन 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करके फसलों को चूहों से बचाया जा सकता है। लाइट ट्रैप, यह प्रौढ़ भ्रंग और मौत प्रकाश की ओर आकर्षित होकर लाइट ट्रैप के नीचे बंधे बैग में एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें नष्ट कर दिया जाता है। लाइट ट्रैप के नीचे चौड़े पात्र में केरोसिन युक्त पानी भरकर रखें, जिससे प्रकाश पाश की ओर आकर्षित होकर गिरने वाले भ्रंग और मौत मर जाते हैं। यह एक सरल और सुगम विधि है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कीटों को रोका जा सकता है। एक और कीटनाशक है एनपीवी। एनपीवी एक प्रकार का विषाणु है जो कि जाति विशेष के हानिकारक कीटों का सफलतापूर्वक नियंत्रण करता है। यह पूर्णतः सुरक्षित जैविक कारक है जिसका वातावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और अन्य परजीवी, परभक्षी, पक्षी और मानव जाति पर भी कोई भी असर नहीं पड़ता है। यह विषाणु मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं जिसमें डीएनए की संरचना बनी होती है, जबकि हानिकारक कीट की लट इस विषाणु को खाती है तो यह इसकी आहार नली में चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, यह आकाशवाणी भोपाल है।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: di Yesena.
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रति

0: टर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। VCK और IUML पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत थोड़ी ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत विक्रमोत्सव को गोल्ड एवं सिल्वर अवार्ड प्राप्त होने पर माननीय मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार

श्री राम तिवारी की वार्ता आप सुनेंगे। साथ ही वर्ल्ड ल्यूपस डे अवसर पर जागरूकता विषय पर अधिकृत योग प्रशिक्षक रुचिका सिंह बघेल से विशेष बातचीत आप सुनेंगे और श्रवण जागरूकता एवं कान संबंधी समस्याओं पर प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण गुर्जर से विशेष चर्चा होगी। एक बार फिर आपको जानकारी देना चाहेंगे, कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के अंतर्गत आप सुनेंगे विक्रमोत्सव को गोल्ड एवं सिल्वर अवार्ड प्राप्त होने पर माननीय मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी की वार्ता। साथ ही आप सुनेंगे वर्ल्ड ल्यूपस डे अवसर पर जागरूकता विषय पर अधिकृत योग प्रशिक्षक रुचिका सिंह बघेल से विशेष बातचीत और श्रवण जागरूकता एवं कान संबंधी समस्याओं पर प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण गुर्जर से विशेष चर्चा होगी। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का, इसमें आप सुनेंगे कलाकार पूर्णिमा चतुर्वेदी के स्वर में निमाड़ी गीत। 9:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सिंधी अज्जी सुरहाण, इसमें आप सुनेंगे लोकचंद जनयानी की वार्ता। विषय रहेगा संत दादा चेलाराम जी का जीवन और विचार। ठीक 10 बजे सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा सामुदायिक गान शिक्षण पाठ, इसमें आप सुनेंगे सतीश दास द्वारा रचित आसामी गीत ए माटी रे। 10:30 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ही ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसके अंतर्गत 7:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे डॉक्टर विजय अग्रवाल। कार्यक्रम का विषय रहेगा जायद उद्यानिकी फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए डायल कीजिएगा नंबर 2660902 और 2660903। साथ ही भोपाल का STD कोड रहेगा 0755।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुबह के ठीक 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन के 12 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन के 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम का 11वां भाग।

आकाशवाणी शिवपुरी केंद्र के योगदान से दिन के 1 बजे आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत और 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। फिल्म संगीत होगा दोपहर 2 बजे। दोपहर 2:30 पर आकाशवाणी इंदौर केंद्र के योगदान से आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश में सांधिकालीन सभा में शाम के ठीक 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:00 और रात 8:30 पर। ठीक रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम डगर विकास की, विषय होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति रहेगा। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ठीक 10:00 दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा। इसमें विद्वान श्री डी श्रीनिवास का वीणा वादन आप सुनेंगे। और इन्हीं सारी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न हुआ।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर, कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में 1189 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीहोर जिले के भिरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज होगा शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ दो दिन पहले हो गया है। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक कहलाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर भी होंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपये की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन बनाए जाने के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वे इसी दौरान वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत विकसित इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव यहां 1059 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इन विकास कार्यों से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य गुना जिले में औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मालवा उत्सव में भी शामिल हुए।
3: मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता

0: के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों के जरिए समय पर वेतन भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक भी कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। अब समाचारों वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के भैरुंदा में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 1763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। योजना में सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण होना है। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे लाभान्वित होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकेंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से कहीं अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुणा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। IPL क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई। आज के मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। वहीं रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैतूल कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कल समीक्षा बैठक की। इसमें जल संचय, जन भागीदारी और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई। डिंडोरी जिले में कल पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ जिले में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, CHC और PHC में हीट स्ट्रोक से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। आगे दीजिए, नमस्कार।

0: भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में।

ताज़ा तरीन खबरें, चुनिंदा फिल्मी गीत और विविध जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का एक नया अंक लेकर हाजिर हूं मैं मेघा तिवारी। माँ की दुआओं में ऐसा असर मैंने देखा है, मुश्किलों को मैंने बेअसर होते देखा है। माँ, ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की प्रथम अनुभूति, प्रथम स्पर्श और प्रथम संस्कार का नाम है। संसार का कोई भी रिश्ता माँ की ममता की बराबरी नहीं कर सकता। माँ की गोद में सुरक्षा है, वाणी में आशीर्वाद है और त्याग में संपूर्ण सृष्टि का प्रेम समाहित है। आज पूरी दुनिया मातृ दिवस मना रही है, जो केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक अवसर है जो बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर हमारे साथ चलता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन माँ का स्नेह कभी नहीं बदलता। वो स्वयं कष्ट में सहकर भी बच्चों के लिए मुस्कान सजोए रखती है। आज के व्यस्त जीवन में जब परिवारों के बीच संवाद कम होता जा रहा है, ऐसे में मातृ दिवस हमें ये याद रखना है कि माँ केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं और संस्कारों की प्रथम पाठशाला भी है। आइए इस विशेष अवसर पर हम अपनी माताओं के प्रति सम्मान, प्रेम और आभार व्यक्त करें, उनके त्याग और समर्पण को नमन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रस्तुत है फिल्म दादी माँ का ये अत्यंत भावपूर्ण गीत।

मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दादी माँ से। वक्त मिला ये हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:28 होने को हैं। अब हम आपको समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बताते हैं। पहली खबर है, परिवहन विभाग ने राजधानी में सिटी बस सेवा के लिए 26 रूट तय करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा इंदौर में 28 तो उज्जैन में सिटी बसेस के लिए 12 रूट्स अधिसूचित किए गए हैं। अब शहरी इलाकों के साथ रियायती टैक्स स्लैब में 7 बस सेवा उपनगरीय इलाकों में भी संचालित की जाएगी। राजपत्र में जिन मार्गों को अधिसूचित किया गया था उसमें राजधानी के अलावा सीहोर, मंडीदीप, भोजपुर, रातापानी, ओबेदुल्लागंज के साथ आसपास के कई क्षेत्र शामिल हैं। इससे पता चलता है कि सरकार अब भोपाल को केवल नगर निगम सीमा तक नहीं बल्कि एक बड़े रीजनल अर्बन ट्रांसपोर्ट जोन में देख रही है। आपको बता दें कि जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की अधिसूचना में संशोधन किया गया था और इसमें सिटी रूट शब्द हटाकर अर्बन रूट किया गया था और पहली बार सब अर्बन एरियाज तक विस्तारित अर्बन रूट्स की नई श्रेणी बनाई गई है। एक और खबर है, राजधानी से 15 किलोमीटर दूर बेतवा के उद्गम स्थल झीरी में आज से 7 दिवसीय श्रमदान अभियान शुरू हो रहा है। पिछले साल 55 चेक डैम बनाने से जनवरी तक नदी में पानी बहता रहा था। इस बार ज़्यादा पानी रोकने के लिए नए चेक डैम, जल प्रवाह मार्गों की सफाई और संरचनात्मक कार्य होंगे। बेतवा संरक्षण समिति ने भोपाल और आसपास के नदी प्रेमियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। समिति के अनुसार उद्गम क्षेत्र को फिर सक्रिय करने के लिए सामूहिक श्रमदान जरूरी है। एक और जानकारी आपको दे दें, भोपाल मेट्रो रेल के काम के तहत बैरसिया रोड पर डीआईजी बंगला चौराहे से आरएफ नगर के बीच कोलार परियोजना की 400 एमएम वाली डीआई फीडरमैन लाइट शिफ्ट की जाएगी। इसके चलते सोमवार 11 मई को कई इलाकों में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी, वहीं मंगलवार 12 मई को इन्हीं क्षेत्रों में कम दबाव से पानी मिलेगा। और नेशनल लोक अदालत में शनिवार को हजारों मामलों का निराकरण किया गया। जिले के न्यायालयों में इस समय 1,61,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 13,186 राजीनामा योग्य मामलों को नेशनल लोक अदालत में रखा गया था।

इनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद और अन्य सिविल मामले शामिल हैं। बैंक रिकवरी, बिजली बिल, जलकर, बीएसएनएल और यातायात ई चालान से जुड़े 80,500 प्री लिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए और जिनका निराकरण किया गया। इसके लिए कुटुंब न्यायालय, बैरसिया तहसील न्यायालय और श्रम न्यायालय समेत पूरे जिले में 61 खंडपीठों का गठन किया गया था। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल में 12वीं के स्टूडेंट्स मुख्य परीक्षा के रिजल्ट्स का इंतजार है, तो वहीं 10वीं में दूसरी परीक्षा 15 मई से शुरू होने जा रही है। इसमें राजधानी से 1500 स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। इनके

0: न्यूज़ ऑन AIR और DTH के ऑडियो चैनल्स के माध्यम से आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और कार्यक्रम है आपका मनपसंद नमस्कार भोपाल। अब आपको बता दें विक्रमोत्सव को सांस्कृतिक लाइव इवेंट ऑफ द ईयर में गोल्ड और सर्वश्रेष्ठ शासकीय सहभागिता में सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीयुत श्री राम तिवारी से हमने बातचीत की, लीजिए सुनिए।
1: नमस्कार जी।
0: सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे आकाशवाणी की ओर से भी। हाल ही में जो विक्रम उत्सव को उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को जो कि दुनिया भर में इस वक्त आपको सुन रहे हैं DTH के माध्यम से, उन्हें आप बताएं कि विक्रम उत्सव की क्या विशेषता है, क्या माने हैं।
1: मैं जो अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने आयोजन को कि ये केवल नृत्य या संगीत का आयोजन नहीं है, ये एक तरह से बहुआयामी मैंने सच्चे अर्थों में एक तो हर दिन इसका कुछ स्वरूप बदल जाता है। बाबा महाकाल के जो दर्शन के लिए जाते हैं तो आज कोई श्रृंगार उनका है, आज अलग है, तो कल दूसरा जगह, परसों तीसरा जगह और चौथा हो जाएगा, तो शायद उन्हीं की प्रेरणा है। तो जिससे हम विक्रमोत्सव में ये नृत्य का भी है, संगीत का भी है, साहित्य का भी है, कविताओं का भी है, पुरातत्व का भी है, खगोल विज्ञान का भी है, ज्योतिष का भी है, कानून का भी है, शौर्य का भी है, और उद्योग व्यापार भी हैं, वन भी हैं,

0: और जैसे इस बार हमने वन मेला को हमने शामिल किया है, तो एक ज़माने में महाकाल जो हैं, महाकालेश्वर हैं, तो वो स्थापित ही थे वन में, महाकाल वन वो कहलाता था। अब यदि आप उज्जैन में जाएंगे तो वन नाम की चीज़ गायब है, वनस्पतियाँ मिल जाएंगी, पेड़ पौधे मिल जाएंगे, लेकिन वन नहीं है। तो पहली बार हम लोगों ने बरसों बाद वन मेले का आयोजन किया ताकि एक तरह का उससे पुनः पहचान होने की बात हो, और इसीलिए उसी के साथ साथ हमें जोड़ा कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो जो प्रसाद प्राप्त करते हैं आशीर्वाद के रूप में, तो उनके साथ साथ हमने जो महाकाल को जो प्रिय वनस्पतियां हैं, तो चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे फिर वो तुलसी हो, चाहे फिर वो रुद्राक्ष हो, सिंदूर हो, आदि आदि, ये सारे वृक्ष हैं, तो ये भी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं अपने घर के ले जाने के लिए। इसी के विक्रमोत्सव के माध्यम से ही या उसके बहाने से ही जो शिप्रा का जो विस्तार है लगभग 135 किलोमीटर का है, तो नदी का जो कटाव जो है उसके कारण भूमि का क्षरण होता है, और भूमि पर जो कब्जे हो रहे हैं भूमि के कारण नदियों का क्षरण भी होता है। तो हमारी कोशिश होगी कि महाकाल वन के रूप में हम शिप्रा के दोनों किनारों पर नदी के संरक्षण के लिए, शिप्रा को बचाने के लिए उसका एक तरह का वृक्षारोपण करें, जो बाबा महाकाल को प्रिय वृक्ष हैं, उनके नाट्य समारोह भी हैं। तो लगभग 3 तरह के इस बार कवि सम्मेलन हमने कर पाए, एक तो हिंदी का जो कवि सम्मेलन होता है वो है ही, फिर एक बोलियों का है जिसमें मालवी है, निमाड़ी है, राजस्थानी है, ब्रज में है, बुंदेली में है, और इसके साथ साथ संयोग से उस दिन नारी शक्ति दिवस भी था, तो हमने फिर उसको डिज़ाइन किया कि सिर्फ महिला कवियत्री जो हैं वही उसमें भाग लें और उसका संचालन भी वही करें। तो इस तरह से अलग अलग गतिविधियाँ हम करते हैं, प्रदर्शनियाँ हैं, और सब तरह की प्रदर्शनी है, जैसे महाभारत में के समय में जो व्यूह रचना हुई होंगी और जो अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग हुआ होगा उनकी प्रदर्शनी हमने वहाँ की है, और निकट भविष्य में हम उसको स्थायी संग्रहालय के रूप में भी हम बदलना चाहेंगे।
1: जी जी जी, ये जो आपने इतने सारे डायमेंशंस बताए विक्रमोत्सव के, इसको जब इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो उस विषय में आप क्या कहेंगे, और साथ ही एक मैसेज भी हम जानना चाहेंगे कि श्रोताओं को आप इस आयोजन में किस तरह से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ इट।
0: देखिए, पहली बात तो ये कि सामान्यतः आजकल पुरस्कारों का जो सिस्टम है कि आपको अप्लाई करना होता है, तो मैं ये गर्व से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कभी भी अप्लाई नहीं किया, तो उन्होंने ही हमको रिकग्नाइज़ किया, तो हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारी तरफ ध्यान दिया, और इससे जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको एक तरह से लगता है कि हाँ, किसी ने आके पीठ थपथपा दी कि आप ठीक कर रहे हो, तो यह है। और इससे इसके कारण अगले वर्ष जो है कुछ और ज़्यादा शक्ति से काम करेंगे और कुछ नवाचार के साथ काम करेंगे। हाँ, क्योंकि श्रोताओं से, तो जिसे हमको आनंद की बात है कि इस बार जब वर्ष प्रतिपदा के दिन हमारा जो कार्यक्रम था उज्जैन में रामघाट और दत्त अखाड़े के बीच हम करते हैं, तो उस दिन केवल 17.2 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको अप्रिशिएट किया, देखा है। यह हम लोगों के लिए भी उपलब्धि है, और एक दिन के कार्यक्रम में यदि इतनी है तो हमको लगता है, तो ये समाज को, तो दूसरी बात ये कि हमको ये भी अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं उससे समाज जुड़ रहा है, और हमारी कोशिश होगी कि जो युवजन हैं, आने वाली पीढ़ी के लोग हैं, वर्तमान पीढ़ी हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सब इसके साथ साथ कैसे शामिल हों और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, ये कोशिश है।
1: जी जी, इस ऐतिहासिक आयोजन के बारे में जानकारी देने के लिए और वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया।
0: नमस्कार जी।
1: अभी आपने हमारी वार्ता सुनी माननीय मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीयुत श्रीराम तिवारी से। अब नमस्कार भोपाल में वक्त हो चला है एक और गीत का, लीजिए सुनिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, भोपाल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, आपको बता दें कि इन दिनों डेफ अवेयरनेस वीक पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इस वीक का ये आखिरी दिवस है। तो इस अवसर पर श्रवण जागरूकता और कान संबंधी समस्याओं पर हमने बातचीत की प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण गुर्जर से। लीजिए सुनिए।
3: आज हम डेफनेस अवेयरनेस वीक का लास्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 4th of May से 10th of May तक चलता है। इस बीच हम ये देखते हैं कि या अवेयर की कोशिश करते हैं कि ये डेफनेस या जिसको बोलते हैं बहरापन, ये होता क्या है और होता किन लोगों में है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो पेशेंट्स 50 या 60 एज क्रॉस करते हैं तो उन्हें सुनने में थोड़ा या समझने में थोड़ा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है और वो इसे नज़रअंदाज करते हैं ये देख के कि मुझे अभी सुनाई तो दे रहा है, काम चल रहा है, मगर बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको सुनने की क्षमता अगर हमारी कम हो रही है तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसका कारण पता करना है। अगर वो एजिंग का पार्ट है तो हम उसे रोक नहीं सकते, मगर हम कुछ दवाइयों के सहारे उसे स्लो डाउन कर सकते हैं। प्लस अगर एक लिमिट से ज़्यादा बहरापन या हियरिंग लॉस हो चुका है तो उस केस में मशीनें, जो सुनने की मशीनें होती हैं, वो एडवाइस होती है, क्योंकि आजकल की जो रिसर्च है ये बताती है कि अगर आप टाइमली हियरिंग एड यूज़ करते हैं तो उससे जो मेमोरी लॉस है, डेमेंशिया, उसके सिम्टम्स कम होते हैं। साथ में सोशल, जो हम बोलते हैं डिप्रेशन, आजकल जो देखा जा रहा है ओल्ड एज में, वो काफ़ी कम होता है क्योंकि हम सोशली एक्टिव होते हैं। साथ ही में अभी जो ये बहरापन है आजकल की युवा

0: वीडियो में काफ़ी हद तक देखा जा रहा है जो पहले नोटिस नहीं होता था। इसका मेजर कारण है लाउड म्यूज़िक सुनना, थोड़ा लाइफस्टाइल गड़बड़ होना, प्रॉपर स्लीप नहीं होना, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ करना जो उनको फिजिकली मेंटली हार्म कर सकते हैं, या किसी चीज़ का एडिक्शन होना। तो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि हम अपने आसपास के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उन्हें ये समझाएं कि जो आप म्यूज़िक सुने तो उसे बहुत लाउड ना सुने, बहुत देर तक ना सुने, और कोशिश ये करें कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी के जो स्पीकर्स होते हैं या हेडफोन्स होते हैं वो यूज़ करें। साथ में हमें कुछ हैबिट्स बदलनी हैं, जैसे कि हमें कोई नशीले पदार्थ का सेवन, जो बोल सकते हैं टबैको है या शराब है, ये चीज़ें भी इसे थोड़ा सा बढ़ाती हैं, वो हमें अवॉइड करना है। साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज, अच्छे से 7 to 8 hours की नींद लें, थोड़ा सा कोशिश करें कि लाइफ में स्ट्रेस कम हो, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही में कुछ अभी केसेस में देखा जा रहा है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं रात तक हमें बढ़िया सुनाई दे रहा था, अचानक सुबह हमारा कान बंद हो गया, इसे हम बोलते हैं सडन हियरिंग लॉस। इस केस में अगर पेशेंट टाइमली 24 to 48 hours में डॉक्टर के पास जाता है तो कुछ केसेस में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जिसमें हम उनका हियरिंग वापस ठीक कर सकते हैं, एल्स नहीं तो ज़िंदगी भर उन्हें उस कान के बिना ही रहना पड़ेगा।
1: तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितना जल्दी इसको रिपोर्ट किया जाए। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, किसी के साथ अगर ऐसा होता है देन सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपकी बातचीत के दौरान जो एक सजेशन भी दिया कि अगर आप हेडफोन्स या स्पीकर्स यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी का कंट्रोल रखें, डज दैट मेक अ डिफरेंस?
0: हाँ, कुछ केसेस में देखा गया है कि अभी जैसे आप मार्केट में आप देखेंगे बहुत सस्ते सस्ते ईयरपॉड्स अवेलेबल, फीचर्स नहीं होता नॉइज़ कैंसिलेशन का। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा साउंड है वो जब कान में जाता है तो कुछ साउंड एब्जॉर्ब होता है, कुछ टकरा के वापस आता है, तो अगर फीचर ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन रहे तो बाहर के जो शोर है वो कम आता है, प्लस एक्स्ट्रा साउंड जो हमारे कान में वापस जा रहा है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आइडियली तो ये एडवाइस है कि आपको ईयरपॉड या ईयरफोन ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लस अगर आपको ऐसा कुछ होता है जैसे कानों में घंटी बजना, या कानों में सीटी या झिंगूर की आवाज़ आना, या कानों में भारीपन महसूस होना, या कभी कोई पेशेंट ऐसा बोलता है कि हमने सुना तो प्रॉपर मगर समझ में नहीं आया, तो ये सब सिम्टम शुरुआती लक्षण हो सकते हैं आपके हेयरिंग लॉस के। तो इस केस में आजकल ऑडियोमेट्री टेस्ट या काफ़ी अच्छे आधुनिक टेस्ट अवेलेबल हैं जो आप ENT डॉक्टर की मदद से करवा सकते हैं, और उसको आप कोशिश करके अर्ली डिटेक्ट करके ठीक भी कर सकते हैं।
1: जो भी लोग सुन रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो उनके आसपास के लोगों में कितना पेशेंस, कितना टॉलरेंस?
0: हमारी सुनने की क्षमता कम होती है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम चिल्लाएंगे तो हमें क्लियर सुनाई देगा। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा पेशेंसफुल रहें, जो आप वर्ड बोल रहे हैं उनको थोड़ा स्लो डाउन करें, थोड़ा क्लियर बोलें। माइट पॉसिबल समटाइम आपको लगे कि थोड़ा सा लाउड भी बोल सकते हैं, मगर उसमें इरिटेट ना हो, थोड़ा सा उन्हें गाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें आपसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो आपसे कम सुन पा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा घबराहट हो रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी, फिर वो इस केस में वो सोशली जो इनएक्टिविटी जो होती है वो स्टार्ट होगी, फिर वो लोगों से इंटरेक्ट करना बंद करेंगे, और ये चीज़ें डिप्रेशन और डेमेंशिया की तरफ ले जाती है। तो कोशिश ये है कि आप थोड़ा सा इसमें धैर्य और पेशेंस का इस्तेमाल करें।
1: जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और आकाशवाणी भोपाल के इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ भोपाल बल्कि दुनिया भर के श्रोताओं को आपने इस विषय पर अवेयर किया और डेफनेस से दूर रहने के लिए सजेशंस दिए। थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार भोपाल में अभी हमारे साथ थे भोपाल के प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण कुर्चर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दोस्तों, आज का दिन एक और मायने से विशेष है और वो है ऑटो इम्यून बीमारी ल्यूपस के बारे में जागरूकता। यानी विश्व स्तर पर आज वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है। क्या है ये बीमारी और किस तरह से योग के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस विषय पर हमने बातचीत की अधिकृत योग प्रशिक्षक रुचिका सिंह बघेल से। सुनिए हमारी बातचीत।
2: थैंक यू मैम सो मच।
1: ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं, इनको आम भाषा में आप किस तरह बताएंगी? और दूसरा, आज का दिन जो है वो विश्व स्तर पर ल्यूपस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये बताएं कि ऑटो इम्यून डिसीजेस और विशेष रूप से ल्यूपस को लेकर आप किस तरह से जागरूक करना चाहेंगी और योग इसमें किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: थैंक यू मैम, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे कि ये सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये ऑटो इम्यून यानी ल्यूपस ये होता क्या है। देखिए, ये क्या है, एक तरीके से ये ना इनविजिबल डिसीज़ कहलाती है। इसमें क्या रहता है कि अपने ही शरीर को ये गलती से है ना हानि करने लगता है, मतलब इम्पैक्ट करने लगता है। जैसे कि हमारे जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं, सेल्स होता है, इनको ही नुकसान पहुंचाने लगता है ये पूरे तरीके से। और ये कॉमन, जैसे कि आजकल ये आम तौर पे है ना ज़्यादातर वुमेंस में ज़्यादा होता है ये, और कोई ये वाला नहीं कि फैलने की बीमारी है, कोई डरता है कि है ना भाई ये इससे हमें टचिंग, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बेसिकली अगर इसका सिम्टम्स पहचाने कैसे, ल्यूपस होता कैसे, तो मोस्टली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे स्किन में लाइक रैशेस आने लगते हैं, बटरफ्लाई टाइप के है ना रैशेस होने लगते हैं, पूरी बॉडी स्वेलिंग्स होती है। इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है, किडनी में होता है, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, हमारे स्वेलिंग, थकान ज़्यादा होती है, हमें धूप से बचना चाहिए। अब आपने एक क्वेश्चन और पूछा कि योग इसमें किस तरीके से प्रिफर करें, तो देखिए योग का इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो ल्यूपस वाली जो होती है, इसमें सबसे पहले तो आपको इसका डॉक्टर से तो सबसे पहले सजेशन लेना ही चाहिए, और इसमें मेडिसिन से ही ये एक ऐसा है कि आप उसी के कारण ठीक हो सकते हैं। दूसरा, योग के अगर मैं बोलूँ तो योग में मेडिटेशन हो गया हमारा, मेडिटेशन के बाद कुछ आसन्स होते हैं इनको, जिससे कि हमारा स्ट्रेस कम हो। ल्यूपस में सबसे पहले बेसिकली तो हेल्दी डाइट होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और योग हमारा कैसे करेगा स्ट्रेस कम करने के लिए, तो योग में कुछ हमारे है ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, लाइक अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, जो हमारे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जैसे लेवल को कम करता है। कुछ आसन्स हो जाते हैं, जैसे आप बलासन मान लीजिए, आप ताड़ासन मान लीजिए, भुजंग आसन, ये हमारी स्टिफनेस को कम करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे इम्यून डाइजेशन सिस्टम को अच्छे से रखता है।
1: जी।
2: देखिए, सबसे पहले तो है ना ये ल्यूपस वाला जो ऑटो इम्यून डिसीज है, तो ये घबराने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जैसे ना बॉडी में है ना हमारे स्वेलिंग आ गई, मोस्टली ये वुमेंस में देखा जाता है, रैशेस आने लगे, तो क्या होता है कि वुमेंस है ना बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, ये क्यों हो रहा है, तो इससे क्या हो, स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ने से क्या हो, ये बीमारी जो हमारे अंदर जो इम्पैक्ट कर रही है, तो ये और बढ़ती चली जाती है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल बढ़िया, जैसे मैंने पूछा कोई टाइमिंग होती है क्या, वैसे तो बेस्ट अगर मैं योग का बोलूँ तो बेस्ट टाइम इज़ मॉर्निंग, क्योंकि खाली पेट भी रहता है, शरीर ऑलरेडी शांत उसमें रहता है, क्योंकि हम रात में सो के उठते हैं, फ्रेश माइंड रहते हैं, तो मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अ योगा। तो मॉर्निंग में करिए, आप ब्रीदिंग टेक्निक करिए, दो चार आसन करिए, लाइक फॉर एग्जांपल अपने स्ट्रेस को कम करिए ल्यूपस में, और जैसे मैंने बताया कि कुछ हेल्दी डाइट में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खाना और तंदुर, मतलब कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें, बाहर तेल मसाला ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज़ ल्यूपस में मैं यही कहना चाहूँगी कि

0: को क्या किससे बचना चाहिए? सबसे पहले तो आप सनलाइट, जो धूप रहती है, क्योंकि इसी से रैशेस आते हैं, चेहरे पे आते हैं तो जलन होती है। दूसरा, स्ट्रेस लेना आप कम करिए। हेल्दी डाइट लें तो ज़्यादा बेस्ट है, लें क्या, आपको लेना ही चाहिए। ल्यूपस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें वो रहता है, और जो डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं वो लें, और बिना डॉक्टर के कोई दवाई अपने हिसाब से ना लें और बंद ना करें।
1: जी, क्या पहचान आपने, जैसे कि बताया कि रैशेस, बटरफ्लाई टाइप के रैशेस आ जाते हैं, कुछ महसूस भी होता है इसके अतिरिक्त?
0: देखिए, ल्यूपस में है ना, सबसे ज़्यादा है ना बुखार, फीवर जैसा फील होगा। बॉडी बहुत ज़्यादा थकने लगती है, मतलब कि फैटिक टाइप का होने लगता है कि मेरी बॉडी इतना, जो आप में एनर्जी लेवल रहता है वो पूरा डाउन हो जाता है। रैशेस का मैंने बताया कि चेहरे में अलग ही स्वेलिंग, जॉइंट्स में आपके है ना ये इम्पैक्ट, आपके अगर हम इंटरनल पार्ट्स में करें तो लंग्स में, ब्रेन में और किडनी में इसका असर दिखता है पूरा।
1: बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई।
0: थैंक यू मैम, धन्यवाद।
1: नमस्कार, भोपाल में अभी हमारे साथ थी रुचिका सिंह बघेल।

0: श्रोताओं, और इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल सुबह 7:20 पर ज़रूर सुनिए कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार

0: पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुँचने की संभावना है।
4: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा

0: कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की

0: आरोपियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Peta and silk shop.

आपकी प्यारी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। आपका हमेशा दूसरों की मदद करने वाला स्वभाव आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की गर्म चाय, पोहे जलेबी का नाश्ता और मनोरंजन के साथ खबरें, जानकारियां, यही तो होता है हम सभी का मॉर्निंग रूटीन। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी नीरजा। बिना देरी किए जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनवाते हैं आपको गीत फिल्म दम मारो दम से, स्वर सुनिधि चौहान के हैं। गीत लिखा जयदीप साहनी ने, संगीतकार प्रीतम।

दोस्तों आज 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे है। विश्व ल्यूपस दिवस मनाने की शुरुआत साल 2004 में न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। इस दिन लोगों को ल्यूपस बीमारी के बारे में बताया जाता है। ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को कमज़ोर बना देती है। इस दिन अस्पतालों और कई संस्थाओं में कार्यक्रम होते हैं। लोगों को बीमारी के लक्षण और इलाज के बारे में बताया जाता है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लोगों को जागरूक करते हैं। मरीजों का हौसला बढ़ाया जाता है। जागरूकता से बीमारी जल्दी पहचान में आ सकती है, इसलिए आज दुनिया के कई देशों में ये दिन मनाया जाता है। और चलिए अब समय है कार्यक्रम में गीत का। सोनू निगम और मीत ब्रोस के स्वर में गीत आप सुनेंगे। गीत लिखा कुमार ने, संगीतकार मीत ब्रोस और अनजान। फिल्म का नाम क्या सुपर कूल है हम।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया फीडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया फीडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: Hey girls,
6: hi, congratulations!
5: आज तो पार्टी चाहिए।
7: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
8: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
8: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आइए दोस्तों, ल्यूपस बीमारी को आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की सुरक्षा शक्ति सही तरह से काम नहीं करती। शरीर खुद अपने अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इससे शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है। मरीज जल्दी थक जाता है। कभी कभी बुखार भी बना रहता है। चेहरे पर तितली के आकार के दाने दिखाई देने लगते हैं। हाथ और पैरों में सूजन भी हो सकती है। बाल झड़ने की परेशानी भी होती है। ये बीमारी युवा महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है। धूप में जाने से तकलीफ बढ़ सकती है। कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अगर लंबे समय तक ऐसे लक्षण रहें तो रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। रूमेटोलॉजिस्ट जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों और ऑटो इम्यून स्थितियों के डॉक्टर होते हैं। और चलिए अब सुनवाते हैं आपको गीत। फिल्म का नाम एक दीवाना था, स्वर लियोन डिसूजा और सुजैन के हैं, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत AR रहमान।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच करवाना बेहद ज़रूरी है। जल्दी इलाज शुरू होने से आराम मिल सकता है। ल्यूपस कभी कभी शरीर के अंदरूनी अंगों को भी प्रभावित करता है। इससे किडनी पर भी असर पड़ सकता है, दिल और फेफड़े भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मरीज को नियमित जाँच करवानी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद नहीं करनी है। सही इलाज से बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन भी जी सकता है। अच्छी जीवन शैली अपनाना बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां और फल खाएं, ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने से परहेज करें। पूरी नींद लेना ज़रूरी है। हल्का व्यायाम और योग फ़ायदेमंद होते हैं। रोज़ थोड़ी देर टहलना भी अच्छा माना जाता है। और सुनवाते हैं आपको गीत। स्वर शफकत अमानत अली और शंकर महादेवन के हैं, साथ में कैरलीसा भी हैं। फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: वर्ष 2026 में वर्ल्ड ल्यूपस डे 2026 की थीम है मेक ल्यूपस विजिबल, यानी ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। इस थीम का उद्देश्य लोगों को ल्यूपस बीमारी के बारे में जागरूक करना है। अक्सर इस बीमारी के लक्षण जल्दी समझ में नहीं आते, इस कारण कई मरीजों को सही इलाज मिलने में देर हो जाती है। ये थीम हमें मरीजों की समस्याओं को समझने और उनका साथ देने की प्रेरणा देती है, साथ ही ये लोगों को समय पर जांच और उपचार के लिए जागरूक करती है। हमें चाहिए कि हम ल्यूपस से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करें। जागरूकता और सहयोग से ही हम इस बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं। और चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम में गीत फिल्म यमला पंगला दीवाना से, स्वर अली परवेज और श्वेता पंडित महालक्ष्मी अय्यर के हैं, गीतकार नौमान जावेद, गीत लिखा राहुल बी सेठ और नौमान जावेद ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा। ये कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे वहां बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत सीहोर जिले के भैरुंदा में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बना करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और IPL क्रिकेट में कल जयपुर में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रन पर सिमट गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कार्यक्रम सुरमई सवेरा में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाषण कला यानी बोलने की कला के बारे में। भाषण कला एक ऐसी कला है जिससे हम अपने विचार लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति लोगों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर लेता है। ये कला आत्मविश्वास बढ़ाने में भी बहुत मदद करती है। स्कूल, कॉलेज और समाज में इसका बहुत महत्व होता है। भाषण कला से व्यक्ति अपनी बात साफ और प्रभावशाली ढंग से कह पाता है, इसलिए हर व्यक्ति को इस कला को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और चलिए सुनते हैं गीत फिल्म गुरु से। इस गीत को सुरों से सजाया A.R. रहमान, चिन्मयी और साथियों ने। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीतकार A.R. रहमान।

कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भाषण कला के बारे में। इस कला को विकसित करने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। हमें रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर बोलने की आदत डालनी होती है। अच्छे वक्ताओं को सुनना और उनसे सीखना भी लाभदायक होता है। बोलते समय सही उच्चारण और स्पष्ट शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है। आईने के सामने बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें अपनी भाषा सरल और समझने योग्य रखनी होती है। डर और झिझक को दूर कर खुलकर बोलने की कोशिश आप कर सकते हैं। लगातार अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है। और अब सुनेंगे गीत सुनिधि चौहान और मोहित चौहान के स्वर में। फिल्म का नाम शुद्ध देसी रोमांस, गीत लिखा जयदीप साहनी ने, संगीतकार सचिन जिगर।

0: lives.
1: भाषण कला भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होती है। ये नौकरी, इंटरव्यू और प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाने में मदद करती है। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति समाज में अलग पहचान बना लेता है। नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में भी ये कला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक, नेता, एंकर और अधिकारी बनने में ये बहुत काम आती है। इससे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी सहायता मिलती है। भाषण कला व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली बनाती है। और गीत हम सुनते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म टाइगर 3 से, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

कार्यक्रम सुरमई सवेरा में हमारे आज के विषय थे विश्व ल्यूपस दिवस और भाषण कला। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का सुरमई सवेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी नीरजा, आपको मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार पूर्णिमा चतुर्वेदी के स्वर में निमाड़ी लोकगीत। आइए सुनते हैं इनके स्वर में सबसे पहले ये बन्ना गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे कलाकार पूर्णिमा चतुर्वेदी के स्वर में निमाड़ी लोकगीत। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

सिंधियत जे सुरहाण में अॼु क़बूलींदा हर्षा जे सिख भरी नमस्ते। जय झूलेलाल साथियो, अॼु मई महीने जो ॿियों आर्तवार। हिन दुनिया में ईश्वर जी सभिनीनि खां वधीक प्यारी ऐं सुंदर सुहिणी रचना, जंहिंजे निस्वार्थ प्रेम ऐं क़ुर्बानीअ लाइ हर शख़्स हुन खे ममता जी मूरत सॾींदो आहे, अहिड़ी माउ यानी माता जे सन्मान ऐं धन्यवाद ॾियण जो ई ख़ासि ॾींहुं आहे। माउ जी ममता जे अनमोल खज़ाने में पंहिंजे ॿारनि लाइ प्यार जा जेके मणिया निकिरंदा आहिनि, उन्हनि जी क़ीमत कंहिं भेटा, सूखड़ी या गिफ्ट जे रूप में चुकाए सघिबी कोन्हे। पर हुन अनमोल प्यार जे लाइ जॾहिं लफ़्ज़ घटि थी वञनि, त पंहिंजी भावनाउनि खे गिफ्ट या सूखड़ीअ जो रूप ॾेई माउ जो सन्मान करण जो इहो ॾींहुं आहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सदीअ जे शुरूआत खां वठी इहो ॾींहुं मल्हाइणु अन्ना जर्विस जी पहल हुई। हुन वेस्ट वर्जीनिया जे ग्राफ्टन शहर में एंड्रियस मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में पहिरियों भेरो माता जी पूॼा ऐं उत्सव जी तयारी कई। तॾहिं खां पोइ हर साल मईअ जो ॿियों आर्तवार मातृ दिवस यानी मदर्स डे जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। ॿी ॻाल्हि कयूं त परिवार समाज जी हिकु अहिड़ी इकाई आहे जेका प्रेम, सुरक्षा ऐं संस्कार ॾींदी आहे। परिवार में अलॻि अलॻि माण्हू जुदा जुदा ज़िमेदारियुनि में ॿधल हूंदा आहिनि। कमु, पढ़ाई, नौकरी, सामाजिक जवाबदारियूं, इन्हनि सभिनीनि कारणनि सां परिवार सां गॾु वेही रिश्तनि खे मज़बूत करणु ऐं आधुनिक चुनौतियुनि ते चर्चा करण जो वक़्तु घटि ई बचंदो आहे। परिवार जो महत्व उन जी सामाजिक, आर्थिक ऐं सांस्कृतिक भूमिका लाइ सुजाॻी आणण वास्ते संयुक्त राष्ट्र संघ पारां सन 1993 में 15 मई जो ॾींहुं परिवार ॾींहं जे रूप में मल्हाइण मुक़ररु कयो वियो। त विश्व परिवार ॾींहुं ऐं मदर्स डे जूं अव्हां सभिनीनि खे खोड़ खोड़ वाधायूं, शुभकामनाऊं ऐं परिवार में मस्ती, खिल, रौनक त ज़रूरु हूंदी ई आहे। त इन ई मौक़े ते अचो गॾिजी ॿुधूं था ही मस्तीअ भरो गीत। गोवर्धन भारतीअ जी रचना सी

0: परिवार सां गॾु वेही रिश्तनि खे मज़बूत करण ऐं आधुनिक चुनौतियुनि ते चर्चा करण जो वक़्तु घटि ई बचंदो आहे। परिवार जो महत्व उन्हनि जी सामाजिक, आर्थिक ऐं सांस्कृतिक भूमिका लाइ सुजाॻी आणण वास्ते संयुक्त राष्ट्र संघ पारां सन 1993 में 15 मई जो ॾींहुं परिवार ॾींहं जे रूप में मल्हाइण मुक़ररु कयो वियो। त विश्व परिवार ॾींहुं ऐं मदर्स डे जूं अव्हां सभिनीनि खे खोड़ खोड़ वाधायूं, शुभकामनाऊं ऐं परिवार में मस्ती, खिल, रौनक त ज़रूरु हूंदी ई आहे। त इन ई मौक़े ते अचो गॾिजी ॿुधूं था ही मस्तीअ भरो गीत। गोवर्धन भारतीअ जी रचना, सी अर्जुन जो संगीत, भगवंती नावाणी ऐं सतराम रोहिड़ा जी आवाज़।
1: ऐ अमा,
2: चओ पुट, मां सदके वञाए।
1: अमा, मूंखे शादी कराइण खां अॻु कुंवार बाबति का पुछा गछा बि कए।
2: ॾिसु ॾिसु पुट, मूंखे ॾो न ॾे। अरे छोकिरी त तूं पाण ई पसंदि करे आयो हुए न।
1: हा, पसंदि बि मूं कई, शादी बि मूं कई, ऐं शादीअ सां गॾु जेके बंदि पेतीअ में 20 गिनियूं ऐं 25 तोला सोन, 16 साड़ियूं ऐं 50,000 रोकड़ वठी आयसि।
2: मारिया आस्ते ॻाल्हाए त किथे इनकम टैक्स वारा न ॿुधनि। अरे अॻे ई असां पतरा कढाया हुआ त ॾेती लेतीअ में असां पाई बि न वरिती हुईसीं।
1: आहा, पाई बि कान वरिती हुईसीं, उन हूंदे बि बंदि पेती वठी तो पाण वटि रखी। साड़ियूं पाए तूं, ज़ेवर पाए तूं, रोकड़ रखे सॼी पाण वटि। अमा, मूंसां त वेदन कई थी।
2: लाल, तोसां कहिड़ी वेदन थी आहे?
1: अमा ॿुधाए।
2: हा हा, हिकदमि चई ॾे।
1: अरे घोड़ा

साथियों इन गीत खां पोए अज असा तवां के वठी था हलूं वक्त जी हुनन गिटियुन में अहड़े सफर ते जिते गाल थींदी फकत भारतीय प्रसारण जी पीढ़ जी आधारशिला जी यानी आकाशवाणी जी। साथियों असा तवां सा रूबरू थियूं ता त इहो फकत एक रेडियो स्टेशन कोने पर लखे भारतीय माण्हुनि जी यादूं समाचार ख़बरूं ऐं मनोरंजन जो साथी आहे जंहिंखे असां आकाशवाणी नाले सां सुञाणूं था। उन जी दास्तान 1920 में शुरू थी हुई जॾहिं बिजली बि हर घर कोन पहुती हुई ऐं तकनीकी विकास बि अॼु जेतिरो कोन हो। अहिड़े समय में रेडियो यानी ट्रांजिस्टर्स पंहिंजो जादू ॾेखारियो। सन 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब पंहिंजो पहिरियों प्रसारण कयो हो। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीअ बॉम्बे ऐं कलकत्ते में ॿ स्टेशन शुरू कया। सन 1930 में ब्रिटिश सरकार हिन जी ज़रूरत ऐं महत्व सम्झियो ऐं पोइ इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS जी शुरूआति कई वई। इहो हिकु प्रैक्टिकल क़दम सन 1932 जी 8 जून ते मक़म थियो ऐं उहो एतिहासिक ॾींहुं आयो जो ISBS जो नालो मटे ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखियो वियो। ॿिए विश्व युद्ध जे वक़्तु इन जो महत्व अञा वधी वियो ऐं 1956 में ऑल इंडिया रेडियो खे आकाशवाणी नालो ॾिनो वियो। ईंदड़ 8 जून 2026 ते आकाशवाणी पंहिंजी प्रसारण सेवा जा 90 साल पूरा करे रही आहे। अव्हां सभिनीनि प्यारे रेडियो श्रोताउनि जा असां लख थो रहता आहियूं जो तव्हां जे प्यार पसंदगी ऐं विश्वास आकाशवाणी जी प्रसारण सेवा खे इन मुक़ाम ते पहुचायो आहे। ऐं हिन ॼाण खां पोइ अचो त गॾिजी ॿुधूं था हीअ लोली सी अर्जुन जो संगीत कृष्ण राहीअ जी लिखियलु भगवंती नावाणीअ जी आवाज़ में EMI प्रोडक्शन जी पेशकशि।

भगवंती नावणीअ जी आवाज़ में कृष्ण रहीअ जी लिखियल इहा लोली तव्हां ॿुधी रहिया हुआ ऐं हींअर पेश करे रहिया आहियूं असां संत साईं दादा चेलाराम जे जीवन ऐं उन्हनि जा महान वीचारनि ते हिकु ख़ासि वार्ता पेश कंदड़ आहिनि श्री लोकचंद जनयाणी जी। ही महान संत दादा चेलाराम साहिबु उन्हनि जो जनम 3 मई ते थियो हुओ। गुरबाणीअ जो प्रचार प्रसार माण्हुनि में सेवा भाव जॻाइण वारा ही संत उत्तम वीचारनि जा

0: धणी हुआ। अचो उन्हनि जे जीवन यात्रा ऐं वीचारनि खे वधीक विस्तार सां ॿुधूं था श्री लोकचंद जिन्यानी जी जी आवाज़ में।
1: दादा चेलाराम जन जो जनम 3 मई 1904 में हिकु सिंधी परिवार में हैदराबाद सिंध में थियो। संदन पिता जो नालो डॉक्टर टेकचंद राचूमल मंदखाणी ऐं माता जो नालो चेतबाई हुओ। संदन जे नंढी उमिरि में ई माता पिता ऐं भेण हिन फ़ानी दुनिया मां चालाणो कयो, जंहिं करे संदन बालपन अकेलेपन में ऐं चिंतनशील थी गुज़रियो। उन्हनि कानून जी डिग्री हासिलु कई ऐं वकालत सां पंहिंजो जीवन जी शुरूआति कई, पर संदन इन प्रोफेशन में मन न लॻो। पोइ उन्हनि सिविल सेवा में पंहिंजो जीवन लॻायो, जिते उन्हनि खे धार्मिक ग्रंथनि खे पढ़ण ऐं सम्झण लाइ बि टाइम मिलियो। सिखनि जे धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब संदनि जे दिलि ते वॾो असरु विधो। गुरुबाणीअ में उन्हनि खे रस अचणु लॻो ऐं प्रभुअ तरफ़ वधण लॻा। सभ खां पहिरीं उन्हनि कराचीअ जे गुरुद्वारे में कीर्तन करणु शुरू कयो। उन्हनि ॿारनि खे बि सेखारणु पढ़ाइण जो कमु चालू कयो। संदनि कीर्तन करणु सभिनी खे वणणु लॻो। धीरे धीरे उन्हनि जे कीर्तन खे ॿुधण लाइ चङा माण्हू गॾु थियणु लॻा। संदनि खे ननकाणा साहिब ऐं अमृतसर गुरुद्वारे मां बि वक़्तु बे वक़्तु कीर्तन लाइ नींढ मिलणु लॻी। उन्हनि घणनि ई गुरुद्वारनि में कीर्तन कयो, जंहिंसां संदन खे दादा जी उपाधी मिली। इहा उपाधी पवित्र पुरुषन या बुज़ुर्गनि खे ॾिनी वेंदी आहे। उहे हिकु मशहूरु सहजदारी सिख हुआ, जिन गुरबाणीअ जी अलॻि हर हंधु जॻाई। सिर्फ़ 24 सालनि जी उमिरि में ई 1930 में उन्हनि गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद अरबी सिंधीअ में कयो। हिन खां पहिरीं कॾहिं बि सिंधीअ में अनुवाद कोन कयो वियो हो। 1938 में कराचीअ में दादा चेलाराम आश्रम जी स्थापना कई वई, जिते ॿारनि खे गुरुमुखी पढ़णु सेखारी वेंदी हुई ऐं साथ में ॿिए धर्म ग्रंथ ऐं संस्कारनि जी नींव बि विधी वेंदी हुई। 1947 में देश जे विरहाङे खां पोइ दादा पूरे परिवार सां गॾु दिल्लीअ में अची पंहिंजो घरु ठाहियो ऐं रक्षा मंत्रालय में नौकरी करे पंहिंजे परिवार खे पालणु लॻा। 1958 में दादा जन दिल्लीअ में हिकु धार्मिक केंद्र निज थाउ जी स्थापना कई, जंहिंजो मतिलबु आहे पंहिंजो स्थान, जिते गुरु ग्रंथ साहिब खां सवाइ ॿिए बि घणेई धार्मिक ग्रंथ जीअं त गीता बाइबल क़ुरान बि मौजूदु हुआ, जिते बिना जात भेदभाव जे कोई बि अची अध्ययन करे सघंदो हो। अॼु बि घणेई माण्हू इन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। दिल्लीअ में ई दादा जन निर्गुणा बालक सत्संग मंडल जी स्थापना कई। पोइ इन जूं शाखाऊं मुंबई पुणे ऐं सोलन हिमाचल प्रदेश जे भरिसां सपरून में बि स्थापित कयूं वयूं। सपरून 15 अप्रैल खां 15 सितंबर ताईं अचण वारनि लाइ खुलियलु हूंदो आहे, जिते हिन वक़्तु संदन सुपुत्र हरीश चेलाराम ट्रस्टी जे रूप में शेवा ॾेई रहिया आहिनि ऐं इन्हनि सभिनी सेंटरनि ते अॼु बि ज्ञान जी नदियूं वही रहियूं आहिनि ऐं घणेई जिज्ञासु वञी करे उते पंहिंजे पाण खे विकसित करण लाइ फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। दादा ज्ञान जा भंडार हुआ। स्वभाव सां संयमी धार्मिक ऐं निस्वार्थ भावना सां भरपूर पाण खे हमेशह प्रभुअ जो निमाणो सेवक सम्झंदा हुआ। दादा जन जे वीचारनि सां हर इंसान खे समान अधिकार मिलणु खपनि, जीअं त जीवन स्वतंत्रता ऐं सुख जी खोज शामिल आहे। दादा जन चवंदा हुआ त असां सभई ईश्वर जा सेवक कयूं, सभिनी सां प्रेम कयूं। हू हर जन जन जे शेवा लाइ पंहिंजो पाण खे शामिलु करे छॾींदा हुआ। हर माण्हूअ जे शेवा लाइ हू हमेशह अॻियां वधी करे शेवा कंदा हुआ। दादा गुरबाणी ज्ञान सां रची।

0: वसी विया हुआ। उन्हनि जे रोम रोम में गुरबाणी वसियल हुई। दादा जन इहो ई ज्ञान पंहिंजे परिवार खे बि ॾिनो। संदन अठ ॿार हुआ जेके सभई गुरबाणीअ जो कीर्तन कंदा हुआ ऐं उन्हनि सभिनी जा ॿार अॼु बि गुरबाणी कीर्तन कंदा आहिनि ऐं गुरबाणी कीर्तन कॾहिं पैसे लाइ कान कंदा आहिनि। दादा जन जी आज्ञा हूंदी हुई त गुरबाणी कीर्तन गुरु साहिब लाइ करिणो आहे ऐं गुरु साहिब खे ई ॿुधाइणो आहे। दादा चेलाराम ऐं उन्हनि जे पूरे परिवार, ख़ासि तौर सां दादा लक्ष्मण दास चेलाराम साहिबु, गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद छहनि भाषाउनि में कयो ऐं सुखमनी साहिब जो अनुवाद 15 भाषाउनि में कयो। संदन परिवार जन जन में गुरबाणीअ जी अलख जॻाए रखी आहे। 55 वरियनि जी उमिरि में दादा नौकरीअ मां रिटायर थी आख़िरी 5 साल सपरून हिमाचल प्रदेश में बिताया। दादा साल में 7 महीना ॿाहिरि कीर्तन लाइ वेंदा हुआ ऐं 5 महीना आश्रम में रहंदा हुआ। दादा पूरे देश में ॿाहिरनि माण्हुनि खे गुरबाणीअ जो ज्ञान भरपूर ॾिनो। गुरबाणीअ सार आहे प्रभु की शरण सगल भैला थे। जेको बि प्रभु जी शरण वठे थो उन जा सभु दुख दूर थी था वञनि, सभु कष्ट दूर था थी वञनि। ऐं चवंदा आहिनि प्रभु ते भूलिया व्यापन सभु रोग। अगरि असां प्रभुअ खे भुलायो आहे त सभु तरह जा रोग अची असांखे वठ कंदा आहिनि। त इहो गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी साहिब जो सार आहे ऐं इहो ई मैसेज दादा जन हमेशह सभिनी इंसाननि खे ॾींदो। 1964 में अंतिम 5 कीर्तन यात्रा जे दौरान कीर्तन कंदे दादा खे आगरे में दिलि जो दौरो पियो। संदन सिख शेवक दादा खे वठी दिल्ली आया। दिल्लीअ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐं निज थांव जे विच में दादा जीवन जा आख़िरी श्वास वरिता। दादा जन कॾहिं बि कीर्तन पैसे लाइ, पुरस्कार लाइ, सम्मान लाइ, प्रचार लाइ या कंहिं कामना सां कोन कयो। सिर्फ़ु प्रभुअ लाइ कयो, प्रभुअ खे समर्पित कयो। उन्हनि पंहिंजो पूरो जीवन सेवा ऐं सिमरन में लॻाए पंहिंजो जीवन सफल करो विया ऐं असां सभिनी लाइ राह रोशन करे विया। मां आकाशवाणी जे बानीकारनि खे धन्यवाद ॾींदुमि त अहिड़नि संतनि जे बारे में मूंखे उन्हनि जा वीचार रखण जो मौक़ो ॾिनो वियो ऐं इन माध्यम सां सभिनी माण्हुनि ते इहे ॻाल्हियूं पहुचंदियूं। धन्यवाद।
1: ऐं हिन खां पोइ अचो त वरी हिकु गीत ॿुधूं था, सरला ऐं बुलो सीराणीअ जी आवाज़ में फिल्म अबाणा, प्रभु वफ़ा जो गीत।
2: ज्ञान

त साथियो अॼु जो कार्यक्रम इते ई पूरो करण जी ॾींदा पंहिंजी रेडियो साथी हर्षा मूलचंदाणी खे इजाज़त। जल्दी तव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी नए रूप नए गाना नए ख़बरुनि सां गॾु। वरी गॾिजबो, सभु जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधी अज्जी सुरहाण, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे उमरिया जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उमरिया जिले की चिट्ठी। आलेख अरुण त्रिपाठी, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। उमरिया जिले में कल प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, विद्युत निगम तथा खाद्य विभाग की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय सीमा में आम जनता तक पहुंचे तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्वीकृत कार्यों में से 289 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण को जन अभियान का रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन कार्य बीते 15 अप्रैल से किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। बीती 9 मई तक जिले में 13,597 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 10,129 किसानों ने स्लॉट की भी बुकिंग कराई है। उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी कल गेहूं उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीती 28 अप्रैल को 4 साल की मादा हथिनी गायत्री की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन ने मृत हथिनी की मौत का

0: कारण एंथ्रेक्स नामक संक्रामक बीमारी के प्रकोप का होना बताया, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए समीप जंगलों में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपचार और बचाव के निर्देश जारी किए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही बीती 15 अप्रैल को बाघ संरक्षण के विभिन्न आयामों पर सार्थक संवाद और लंबित बाघ मृत्यु प्रकरणों का शीघ्र एवं वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी शाखा भोपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार दिल्ली तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। उमरिया जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम प्रकल्पकों और सुपरवाइजरों के माध्यम से घर घर जाकर कराया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी अधिकारी जनगणना प्रत्युष श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले की जनगणना को लेकर मकानों के सूचीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य के विपरीत 1,14,251 मकानों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसी क्रम में उमरिया जिला कलेक्टर राखी सहाय ने मानपुर जनपद पंचायत पहुंचकर वहां सहरा ग्राम में की जा रही सूचीकरण की एंट्री HLO ऐप के माध्यम से अपने समक्ष करवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की जानकारी ली तथा प्रगणकों से निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि शासन को सही आंकड़े प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें ताकि जिले का सही आकलन हो सके। इस अवसर पर CEO जिला पंचायत अभय सिंह, SDM मानपुर हरनीत कौर कलसी और जनपद CEO मानपुर अंकित सिरोठिया सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,386 लोगों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 58,841 हितग्राहियों का सत्यापन भी किया जा चुका है। सत्यापन हेतु 1,545 परिवार अभी शेष हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी स्वीकृत आवास समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश ग्राम पंचायतों के सचिवों को दिए गए हैं तथा शेष सत्यापन कार्य भी 20 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। उमरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल 308 नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 246 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 62 योजनाएं इन दिनों प्रगति पर हैं। इसके साथ ही उमरिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे उमरिया जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज आप सुनेंगे सतीश दास द्वारा रचित आसामिया गीत ए माटी रे।
2: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
3: जी हाँ।
2: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माटी रे, ए माटी रे मोरो मोते,
3: मोरो मोते
2: माटी के,
3: माटी के
2: सुमिलो,
3: सुमिलो
2: माटी के सुमिलो, माटी के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माटी ते, एई माटी ते जीवन, एई माटी ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये एई माटी ते जीवन सोबी, जीवन
3: सोबी,
2: जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी आकी, आकी दोबारा आकी, आकी आकी मोसीलो,
3: मोसीलो।
2: अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार,

0: ये जो ना आकाश श को बोलते वहाँ ख की तरह से, ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो, दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ह, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे,
0: इसके आगे है आहा आहा, फिर मातिर बुकुत, हाँ मातिर बुकुत, मौनोर मालोती बूटोलो, मौनोर मालोती बूटोलो, इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतर है मौनोर कोरोनी रे, हुरोर हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे,
0: पापोरी रे आजी,
1: आजी,
0: इतना हो गया ना, आगे हुकुमार,
1: हुकुमार
0: थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना, हुंदौर खनी ख, खुदीनौर
1: खुदीनौर,
0: नौतून दृष्टि, ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि, शनि सही बोलना, दृष्टि दृष्टि, कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ,
1: ना हुआ,
0: आगे ना, अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिए जरा,

Isla Orgánica. अच्छा आप शुरू से लेंगे सारा गाना है ना, एक दो तीन चार।

0: कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में अभी आप सुन रहे थे सतीश दास द्वारा रचित आसामिया गीत ए माती रे। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: आपके विचार अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि श्री राग तेलंग।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफ़र जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रेया घोषाल और अभिजीत के स्वर में गीत आप सुनेंगे फिल्म ओम शांति ओम से। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार विशाल शेखर।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: के लिए
2: बीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: मैं डॉक्टर अजय सिंह आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई
2: दी ये देख कैसे
6: हैप्पी बर्थडे भाई
2: दीका
7: हाँ मेरा फेवरेट कलर
6: हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है
3: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
9: सलाम है इश्क से अगला गीत आप सुनेंगे सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।

0: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुड्ढू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
0: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जब वी मेट से। इस गीत को सुरों से सजाया शान और उस्ताद सुल्तान खान ने। गीत लिखा अरशद कामिल ने, संगीतकार प्रीतम।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म राब्ता से। इस गीत को सुरों से सजाया अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

0: खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आशंकित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपाय कार्यों में बचाव और उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत सीहोर जिले के भैरुंदा में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिल सकता है। और ताशकंद में एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारे ये कार्यक्रम जुड़ा है आपकी फरमाइश से और आप अपनी फरमाइश हमें बताएंगे टेलीफोन नंबर 2660902 के माध्यम से। भोपाल का STD कोड आप जानते हैं 0755। तो बताइए अपनी फरमाइश और आनंद लीजिए अपनी पसंद के गीतों का। हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनकी फरमाइश। हेलो।
3: हेलो नमस्ते
2: जी। नमस्कार,
3: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
2: जी खान साहब कैसे हैं?
3: बस बढ़िया है मैडम, एकदम खैरियत में है। बस गर्मी थोड़ी तेज है फिलहाल तो।
2: जी
3: हाँ,
2: अच्छी बात है, खैरियत से होना ही चाहिए। अपन ही यदि ठीक ना हो तो आसपास की चीजें और ज्यादा दिक्कत देने लगती हैं।
3: हाँ सही है।
2: आज के इस कार्यक्रम के आप पहले कॉलर हैं, बताइए कौन से गीत से शुरुआत की जाए कार्यक्रम की।
3: फिल्म का नाम है मेरा गाँव मेरा देश।
2: जी
3: इसका गीत है लता जी की आवाज में। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, किस किस को सुनाऊं अपनी प्रेम कहानियां।

0: हेलो
1: नमस्कार दीदी
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं चित्रकूट धाम की बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, मस्त है। कौन दीदी बोल रही हैं?
0: मैं अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ
1: जी। जी अमिता जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार। तो बताइए कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: झुक झुक गया आसमान तुमसे मिले नजर की मेरी होश उड़ गए।
0: जहाँ तक मेरी याददाश्त है आप इस गीत की फरमाइश पहले भी कर चुके हैं। अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आइए।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार
1: जी, मैं ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह से लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी चंदेल जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया है मैम, आप बताइए आप कैसे?
0: बस हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है, हालचाल पता लगते हैं तो और अच्छा लगता है।

0: बिल्कुल मैम
1: जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।
1: अच्छा, और गीत के बोल?
0: गीत के बोल मतलब ये टाइटल सॉन्ग सुनना है मैम।

0: हेलो, फोन कर रहे हैं गीत सुने कार्यक्रम।
1: दिल्ली जिला ग्राम पातरपुरी से राहुल ध्रुवे बात कर रहे थे।
0: जी राहुल जी, कैसे हैं?
1: अभी तो ठीक ही है। आप कैसे, मतलब गेहूं वगैरह सब जो मक्का है वो टूट चुका है और काट चुके हैं, दिक्कत नहीं है अभी, मतलब पानी से। छुपा
0: बताइए आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: रुस्तम का, छुपा
0: छुपा रुस्तम, कौन सा गीत इसका?
1: रुस्तम का, प्यार में दिन तो सब देते हैं, जान को मैं दे गई।

0: हेलो
1: हेलो जी, मैं अमृता तिवारी बोल रही हूँ, रीवा से। ठीक
0: जी। अमृता जी कैसी हैं आप?
1: हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: बस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो क्या चल रहा था अभी घर का काम काज?
1: जी मैम, वही भोजन।
0: बिल्कुल सही बात है, ये समय भी ऐसा ही होता है। और भोजन एक ऐसी चीज़ है जो सुबह शाम की तो कम से कम एक व्यस्तता होती ही है, कई बार वो घर में 3 बार की व्यस्तता भी हो जाती है।
1: जी मैम, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, उसके बाद भोजन की तैयारी 4 बजे। फिर मेरे
0: बिल्कुल
1: पापा जी हार्ट पेशेंट हैं,
0: जी।
1: शुगर पेशेंट, तो उनको बार बार देना पड़ता है
0: हाँ,
1: थोड़ा।
0: नहीं सही बात है। और बल्कि डॉक्टर्स कहते भी यही हैं कि एक बार में एक साथ पूरा भोजन
1: जी
0: लेने के बजाय यदि हम छोटे छोटे मील्स लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में खाएंगे, तो वो पचने में भी आसानी होगी, शरीर को लगेगा भी और ज़्यादा हितकारी होगा। पर
1: जी
0: बस
1: मैम,
0: वही है कि सबके अपने पैटर्न होते हैं और
1: जी
0: उसके हिसाब से फिर काम चलता है। तो बताएं कौन सी फरमाइश आपकी पूरी की जा सकती है?
1: जी मैम, मूवी का नाम नहीं बता पाऊंगी।
0: चलिए गीत के बोल बता दीजिए।
1: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, बोले मदन दे
0: बिल्कुल
1: बस, सबकी
0: बिल्कुल
1: मदद दे
0: बिल्कुल।
1: सबकी।
0: आसपास कहीं पूजा पाठ चल रहा है?
1: जी, घर में ही।
0: इतनी अच्छी शंख ध्वनि के साथ आपके खूबसूरत से गीत को हम पहुंचाते हैं आप तक। फिल्म राजा और रंक से।
2: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी

0: हेलो, फोन कर रहे हैं
1: हेलो
0: गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार
1: मैं ग्राम सगरा जिला पन्ना से अंजना प्रजापति बात कर रही हूँ।
0: जी। अंजना, कैसी हैं आप?
1: मैम हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी मैम, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है ना,
0: बहुत
1: बहुत
0: दिनों
1: बहुत ही
0: बाद
1: अच्छा लग रहा है।
0: ऐसे ही होता है, बहुत बहुत दिनों में बात हो तो अच्छा लगता है।

0: क्या
1: जी
0: चल रहा
1: मैम,
0: है बाकी?
1: जी मैम मुझे गाना सुनवा दीजिए। मूवी का नाम है विजयपथ, उसमें एक गीत है राहों में उनसे मुलाकात हो गई।
0: विजय पथ का गीत आप सुनना चाहती हैं और हम पूछ रहे थे कि इन दिनों क्या चल रहा है।
1: मैम इन दिनों कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और कभी कभी बारिश भी होने लगती है, तो मौसम में बहुत परिवर्तन है। घर के काम करते हैं और पढ़ाई भी साथ साथ में करते हैं।
0: अच्छी बात है, दोनों काम जरूरी हैं, करते रहिए। और अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आइए, क्योंकि विजय पथ का गीत हमें पता है आपको बहुत पसंद है, आप कई बार सुन भी चुकी हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी ही पसंद का गीत।
1: ओके मैम, थैंक यू।

0: तो मौसम में बहुत परिवर्तन है। घर के काम करते हैं और पढ़ाई भी साथ साथ में करते हैं।
1: अच्छी बात है, दोनों काम जरूरी हैं, करते रहिए। और अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आइए, क्योंकि विजय पथ का गीत हमें पता है आपको बहुत पसंद है, आप कई बार सुन भी चुकी हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी ही पसंद का गीत।
0: ओके मैम, थैंक यू।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मैम नमस्कार, मैं हूँ राम बाबू मालवी, बोल रहा था कोलार रोड भोपाल से।
0: जी मालवी जी कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो?
0: बस हम भी अच्छे हैं। आपकी
1: जी
0: फरमाइश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी आज सुनना चाहेंगे हम रंग मूवी का, कोई सा भी सुनवा दीजिए आप।
0: रंग मूवी का?
1: हाँ
0: जी, फिर भी क्या पसंद है इस मूवी में, कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है?
1: उसमें गाना वो अच्छा है, तुझे देखे मेरी आके, इस प्रकार से गाना है
0: जी
1: वो अच्छा है।
0: बिल्कुल, तो आपकी
1: धन्यवाद।
0: पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: जी। नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: अनिल बामनियाल लाभे फिर इंदौर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी कैसे हैं आप अनिल जी?
1: बस बढ़िया है मैडम, आप कैसे हैं?
0: बस हम भी अच्छे हैं।
1: तो आज मुझे एक गीत सुनना है, जनता हवलदार।
0: इसका कौन सा गीत है?
1: हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली।
0: अनिल जी आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
1: और मैं एक और आपसे निवेदन करना
0: जी
1: चाहूंगा,
0: बताइएगा।
1: आप चिट्ठी के जो प्रोग्राम है मैडम वो अधिक से अधिक शामिल करें, और आपका पत्र प्रोग्राम प्रसारित होता था उसके पुनः शुरू किया जावे।
0: कौन सा प्रोग्राम?
1: आपका पत्र वो,
0: आपका पत्र, बिल्कुल
1: हाँ पहले आया करता, पहले आता था ये
0: जी। कोविड के पहले तक ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा है, उसके बाद के बदलाव में ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था।
1: हाँ।
0: तो आपकी ये सुझाव और आपकी ये फरमाइश पहुंच गई है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा
1: बिल्कुल
0: यकीनन आप
1: बिल्कुल,
0: तक पहुंचेगा।
1: थैंक यू
0: और
1: मैडम। ओके जी
0: जो पत्रों पर आधारित कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप, फरमाइश की, तो बस उसके लिए इतनी सी ही गुजारिश है कि जितने ज़्यादा श्रोता जुड़ेंगे उसमें पत्र लिखने में, उतने ज़्यादा पत्र शामिल होंगे। यदि एक ही व्यक्ति 100, 150, 500 पत्र डाल देगा तो पत्रों की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन शामिल होने वाले पत्रों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी,
1: हाँ जी जी
0: है ना
1: नहीं सर, तो आपके ये
0: जी?
1: आपका फरमाइश कार्यक्रम जो आता है इसमें तो
0: जी
1: कई पत्र आते हैं
0: जी जी बिल्कुल
1: और मैं भी भेजता रहता हूँ।
0: बिल्कुल, और शामिल भी होते रहते हैं
1: हाँ, होते रहते हैं
0: जी।
1: इसलिए
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं,
1: थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
0: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी दीदी जी, दी, नमस्कार। मैं छतरपुर बसारी गेट से राकेश वर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी राकेश वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं। जंगल जलेबी का पेड़ लगा हुआ है हमारे गोदाम पर
0: हाँ, तो
1: और
0: बढ़िया
1: उसी
0: छाया
1: में बैठे
0: होती है।
1: हुए।
0: गर्मी का मजा तो हम लेंगे, तभी बारिश की आमद होगी, तो इसलिए उस आनंद को
1: जी
0: तो लेते रहिए इस उम्मीद के साथ कि
1: जी
0: अच्छी
1: दीदी
0: बारिश
1: जी,
0: होगी। तो
1: मैं मुझे ध्यान आ रहा है कि आज शायद अनीता बोल रही हैं, अमिता जी।
0: अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ मैं।
1: जी
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: थोड़े थोड़ा ध्यान, मैं मध्य प्रदेश आकाशवाणी से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ,
0: जी
1: जबकि 1976 से जब से मैंने आकाशवाणी सुनना शुरू की है, मतलब
0: जी
1: रेडियो सुनना शुरू किया है, तब से
0: जी
1: मैं भोपाल से जुड़ा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, ये जुड़ाव आगे भी बरसों बरस बना रहे, हम यही उम्मीद करेंगे। और अभी
1: जी
0: आपकी कौन सी पसंद पूरी की जा सकती है ये बताइएगा।
1: पसंद दीदी जी, मौसम के हिसाब से तो गर्मी के हिसाब से गिरफ्तार का आ रहा है, और कबीर रेडियो श्रोता संघ के नाम से हैं हम, तो
0: जी,
1: कबीर रेडियो के नाम से है, तो एक गीत आ रहा है 10 नंबरी का।
0: दस
1: अब
0: नंबरी का
1: तीन
0: कौन
1: जगह
0: सा
1: है
0: गीत
1: और तीन में से एक गीत हमको चुनना है। कहें कबीर सुनो भाई साधु,
0: आपने?
1: आप
0: एक तीसरी पसंद की भी बात की, तो वो भी बता दीजिए।
1: तीसरा तीसरा वो है, वो शादी ब्याह चल रहा है ना, तीन तीन ऑप्शन थे हमारे पास।
0: हम जरूर पूरा करेंगे, आप ही इन तीन में से एक चुन लें तो वो आप तक पहुंच जाएगा।
1: सोच रहे हैं कि कबीर कबीर वाला सुना दीजिए 10 नंबरी का, क्योंकि ये गीत
0: बिल्कुल,
1: बहुत कम बचता है।
0: तो ये गीत आप तक पहुंच रहा है, आनंद
1: जी
0: लीजिएगा।
1: नमस्कार दीदी जी,
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे।

सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ हालांकि दो दिन पहले हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आशंकित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवी के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के ऊपर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव इस दौरान अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिल सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस के साथ होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म नसीब से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब और मुश्तबा। अगले श्रोता हैं महनगर महाराष्ट्र से। श्रोता हैं अभिजीत, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

0: किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म डॉन से। गीत लिखा है अनजान ने, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश साबले, शीतल, राजदीप और राशि। अगले श्रोता मलकापुर महाराष्ट्र से हैं, शत्रुघ्न वाल्मीक, नीना जी, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

किशोर कुमार और एनेट पिंटो के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सत्य पे सत्ता से। ये खूबसूरत गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, गीत को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है दिल्ली शहर से। श्रोता हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा और आकाश। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म कालिया से। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें सनावत से आई है। श्रोता हैं सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादाब। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रकीब की स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अभिमान से। गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार SD बर्मन। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में जो गीत सुनना चाहते हैं वो हमारे श्रोता भाटापारा दतरंगी से हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा और जावेद कुमार वर्मा। अगले श्रोता महाराष्ट्र बीड शहर से हैं, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम का 11वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 11वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आप पीती का नाट्य रूपांतरण। ये कहानी मानसरोवर भाग 6 प्रेम प्रसून कहानी संग्रह में शामिल है। प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उनके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं। कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्विचारों पर मोहित हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से ये सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर हृदय कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य प्रेमी से ही पूछना चाहिए।
1: त्रिवेदी जी, ये डाक में किसी उमापति जी का पत्र आया है आपके नाम।
2: किसका? उमापति? हाँ, लाइए लाइए, दीजिए। अच्छा मुनीम जी।
3: हाँ जी।
2: आप लोगों की दृष्टि में मेरी जो रचनाएं साधारण और स्तरहीन है, उनकी प्रशंसा ये कितने अच्छे कवि ने की है, जिनकी स्वयं की रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है।
1: जनाब क्या लिखते हैं?
2: अरे ऐसी प्रशंसा की है कि हृदय गदगद हो गया। विस्तार से तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझसे स्वयं भेंट करना चाहते हैं? लाइए वो जरा कलम दवात उठाइए, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ।

0: पांचवें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र आ पहुंचा। ये पत्र पहले से भी कहीं अधिक मर्मस्पर्शी था।
1: प्यारे भैया, अच्छा तो उनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। आगे लिखते हैं, कृपया अपनी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम पते भी भेजिएगा। मेरी पत्नी पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी हैं और आपका कोई फोटो भी है, और यदि है तो भेज दीजिए। धन्य है भगवान, अब रमणियां भी मेरे कृत्यों की सराहना करने लगी हैं। ये पहला अवसर है जब मेरी रचनाओं की प्रशंसा किसी महिला ने की है। हाँ, ये महाशय

0: आपका कोई फोटो भी है और यदि है तो भेज दीजिए। धन्य है भगवान, अब रमणियां भी मेरे कृत्यों की सराहना करने लगी हैं। ये पहला अवसर है जब मेरी रचनाओं की प्रशंसा किसी महिला ने की है। ये महाशय तो मुझसे खासे प्रभावित है। अजी सुनती हो? अरे मैंने कहा सुन रही हो?
1: आटे में हाथ सने हैं, आ रही हूं।
0: देखिए ये हमारे एक साहित्य प्रेमी मित्र उमापति का पत्र आया है। देखिए देखिए ये स्वयं तो हमारी रचनाओं के प्रेमी हैं ही, इनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। और एक आप हैं, आपके पास तो समय ही नहीं हमारी रचनाओं को सुनने के लिए।
2: अरे इस चूल्हे चौके से फुर्सत मिले तभी तो कुछ सुनूं। और अगर मैं आपकी रचनाएं सुनने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा?
0: वो
2: आप ही को मुबारक हो, आपके रचना प्रेमी और उनकी पत्नी।
0: उमापति जी की श्रीमती जी ने मेरे परिवार और वंशावली के बारे में पूछा है। ठीक है, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा कि क्या याद रखेंगे वो। चलो लिखता हूं। मेरे दादा एक रियासत के मैनेजर थे। हालांकि ये बात मैं जानता हूं कि एक नौकर मात्र थे। मेरे पिता जो दफ्तर में क्लर्क थे उन्हें मैंने दफ्तर का प्रधान अध्यक्ष लिख दिया है। और काश्तकारी को जमींदारी बनाना तो बड़ी मामूली सी बात थी, सो वो भी मैंने कर दिया है। और इस तरह दो सप्ताह और बीत गए, उमापति का कोई पत्र नहीं आया। अश्वनी का महीना और तीसरा प्रहर था, रामलीला की धूम थी, मित्रों की ताश की बाजी चल रही थी।
3: जी हाँ जनाब, क्या काम है आपको, किससे मिलना है?
4: जी आप लोगों में से त्रिवेदी जी कौन हैं?
0: जी कहिए, मैं ही त्रिवेदी हूँ।
4: जी आपने मुझे पहचाना?
0: नागा ढील डॉल, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवरे हुए, सादी कमीज, श्याम वर्ण, गले में फूलों की माला और पैर में फुल बूट और हाथ में मोटी सी पुस्तक। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इन महाशय को कहीं देखा है या इनसे कभी मिला हूं। जी माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका।
4: जी मैं आपका अदना सा चाहने वाला उमापति नारायण।
0: अरे उमापति नारायण जी, आप यूं अचानक किस तरह?
4: जी चलिए मकान पर चलते हैं, वहीं सब बताऊंगा।
0: अच्छा,
4: मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ बैठक में हैं, पूछता हुआ चला आया।
0: जी जी आइए चलते हैं, तब तक आप पान इलायची लीजिए, मैं बस अभी आया।
5: ये महाशय कौन हैं? आपके जानने वालों में पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
0: अरे मेरे नए मित्र हैं, मेरी रचनाओं के प्रशंसक।
5: इनसे जरा होशियार रहिएगा।
0: आपका अनुमान गलत है, आप हमेशा आदमी को उसकी सज धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं दिल में रहता है।
5: खैर ये रहस्य की बातें तो आप जाने, मैंने तो आपको आगाह कर दिया है।
4: भोजन बहुत स्वादिष्ट था।
0: जी वो बस जल्दी जल्दी में बाजार से मंगवाना पड़ा। और सुनाइए घर में सब आनंद मंगल तो है ना?
4: जी हाँ सब आनंद मंगल, आपका और आपकी रचनाओं का अक्सर ही घर में जिक्र होता रहता है।
0: जी धन्यवाद। जी आप भी तो कविताएं लिखते हैं ना, कृपया कुछ सुनाइए ना।
4: हाँ
6: जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। एक दिन आएगा वो फूट जाएगा, सब बेकार है सब यहीं रह जाएगा। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है।
0: वाह वाह उमापति जी,

0: क्या स्वर है, क्या शब्दों का चयन है।
1: जी शुक्रिया शुक्रिया,
0: बहुत सुंदर कविता है, बहुत खूब। अच्छा अब रामलीला का समय हो चला है, चला जाए
1: जी बिल्कुल,
0: वापिस लौट कर वापिस अपना कविता पाठ सुनते।
1: जी जरूर,
0: आइए।
1: रामलीला का इतना सुंदर मंचन इससे पहले याद नहीं पड़ता मैंने कभी देखा हो।
0: चलिए अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, आइए रात्रि भोज कर ले।
1: जी बिल्कुल।
0: जी हाँ उमापति जी, बताइए अचानक कैसे आना हुआ आपका।
1: भाई साहब, मैं अपनी पत्नी को लेने कानपुर जा रहा हूँ, वहीं मेरा मकान भी है और जमींदारी भी, और वहीं ससुराल भी है।
0: जी
1: दरअसल जमींदारी से मुझे घृणा है, मैं साहित्यिक जीवन व्यतीत करने की मंशा रखता हूँ और एक मासिक पत्रिका निकालने का मेरे मन में विचार है। वैसे तो मुझे प्रकाशक एक कविता के 1000 देता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि ये पुस्तिकाएं मैं अपनी ही लागत पर छपवाऊँ। भाई साहब वैसे तो मेरी धर्मपत्नी एक कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है।
0: अच्छा है। बातचीत में कब आधी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अच्छा उमापति जी शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि।
0: अरे उमापति जी, सवेरे सवेरे तैयार होकर बैठे, कहीं जाने का विचार है क्या?
1: जी अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही जाऊंगा।
0: अच्छा
1: इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा।
0: अरे नहीं नहीं, कष्ट की क्या बात है, निसंकोच कहिए।
1: मैं कल चला तो प्रातःकाल के 4 बजे थे।
0: जी
1: 2 बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए।
0: अच्छा
1: बल्कि यूं समझिए कि सारी रात जागना पड़ा।
0: अरे
1: क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी।
0: जी
1: गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगी और कोट उतार कर रख दिया और लेट गया, तुरंत ही नींद आ गई।
0: अच्छा अच्छा।
1: मुगल सराय में नींद खुली, कोट गायब, नीचे ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं। समझ गया किसी महाशय ने उड़ा दिए, आखिर सोने की सजा मिल ही गई।
2: कोट में 50 रुपए खर्च करने के लिए रखे थे। वे भी उसके साथ उड़ गए। अब क्या कहूँ, दरअसल अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो बात वो है कि पत्नी को मैके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे, और फिर तो आप जानते ही हैं कि ससुराल में सैकड़ों तरह के नेकजोग होते हैं, कदम कदम पर रुपए खर्च करने होते हैं, न खर्च करो तो हंसी का बड़ा डर है। मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा।
0: इसकी बातों ने तो मुझे हसमंजस में डाल दिया है, एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूं, कहीं फिर से वही दशा हुई तो। अरे नहीं नहीं नहीं, संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते हैं, ये तो सज्जन पुरुष लगता है, इस समय संकट में पड़े हैं, इस समय ऐसी बातें सोचना मुझे शुभ नहीं देता।
3: अरे अजी सुनती हो?
0: अच्छा उमापति जी आप यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूं। अजी सुनती हो? तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है?
4: क्यों क्या करोगे?
0: मेरे मित्र जो कलाएं हैं ना, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है ना, लौटते समय देते जाएंगे।
4: तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं ना, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं।
0: वो
4: सभी संकट में पड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं है रुपए वुपे।
0: अजी दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी।
4: तो कह दो इस समय घर में रुपए नहीं है।
0: देखो ये कह देना आसान नहीं है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं दरिद्र ही नहीं मित्रहीन भी हूँ, नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का भी इंतजाम नहीं हो सकता? उमापति को कभी विश्वास नहीं आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते, कम से कम अपना पर्दा तो ढका रहेगा ना।
4: ये लो, ये रही संदूक की चाबियां। तुम्हें जितनी बहस करनी आती है ना, उतना ही अगर लोगों को परखना आता तो आज आदमी हो गए होते। ले जाओ दे दो उसे, लेकिन उधार समझ कर मत देना, ये समझ लो कि पानी में फेंक दिए।

0: सातवें दिन उमापति अपनी पत्नी और पुत्री सहित पुनः पधारे। उनकी अच्छी आवभगत की गई। स्वागत में 20 रुपये भी दिए गए। त्रिवेदी जी को विश्वास था कि उमापति जी आते ही उनके 50 रुपये धन्यवाद सहित उन्हें लौटा देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: सुनो, इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी।
2: तो क्या तुम्हें सचमुच आशा थी
3: कि वो आते ही रुपए हाथ में रख देंगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि फिर पाने की आशा मत करना, यही समझ लो कि किसी मित्र की मदद कर दी। लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो।
1: बड़ी लज्जा का विषय है, इनके आदर सत्कार में क्या कमी छोड़ी हमने। अब तो बिस्तरा बांध कर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैसों का कोई जिक्र नहीं। मैं तो बड़ा ही अपमानित सा महसूस कर रहा हूं। तुम ठीक कहती थी, मुझे वाकई आदमी की परख नहीं है।
4: त्रिवेदी जी, चलने का समय हो गया है, लेकिन एक बात मन में है जो आपसे कहना चाह रहा हूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे कहूं। दरअसल वो बात यह है कि, और मुझे दुख भी इस बात का है कि मैं इस बार भी आपके रुपए नहीं दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो तहसील वसूल करने के लिए गांव गए हुए थे और मुझे इतना अवकाश नहीं था कि गांव तक जाता। क्या है कि गांव तक रेल का रास्ता नहीं है, सो बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर सीधा ससुराल चला गया और वहां सब रुपए खर्च हो गए। विदाई के रुपए अगर नहीं मिल जाते तो यहां तक आना भी बड़ा मुश्किल था। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे कहूं कि वो क्या है कि अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। अगर आप मुझे 25 रुपये और दे देते तो मैं आपको वहां जाते भेज दूंगा, विश्वास कीजिए। इस समय मेरे पास 1 का किराया भी नहीं है।
1: जी मैं तो आ रहा है कि टका सा जवाब दे दूं, पर क्या करूं, इतनी अशिष्टता मुझसे हो नहीं सकेगी।
0: बड़ी मुश्किल से मन मार कर त्रिवेदी जी ने पत्नी से पैसे लिए। पत्नी ने भी बिना किसी नानुकुर किए रुपए दे दिए। त्रिवेदी जी की मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उमापति जब चलने लगे तो त्रिवेदी जी शिष्टाचार के नाते ही सही उन्हें सड़क तक छोड़ने भी नहीं गए। 1 हफ्ते के बाद उमापति जी का पत्र आया कि किसी कार्यवश बाहर जा रहे हैं, रुपए लौट कर भेज देंगे। लेकिन इसके बाद ना तो रुपए आए और ना ही कोई खत। त्रिवेदी जी खत और रजिस्ट्री लिख लिख कर थक कर बैठ गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उनकी धर्मपत्नी ने कहा था वही सच था।
1: इस कपट भरे व्यवहार का मुझ पर बुरा असर पड़ा। मैं इतना उदार नहीं कि अपने ऋण को भूल सकूं। अरे महीनों सिर खपाता हूं, कलम खिसता हूं, तब जाकर कहीं नकद नारायण के दर्शन होते हैं।
5: त्रिवेदी जी, आपसे मिलने कोई युवक आया है, स्वयं को कंपोजिटर बताता है।
1: ठीक है, अंदर भेज दीजिए। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
6: महाशय, मैं बिहार के एक संपन्न परिवार से हूँ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। मित्रों की संगति में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे घर वालों ने किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया।

0: इस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है।
1: ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 15 रुपए मासिक से अधिक नहीं दे सकूंगा, और तुम्हें कंपोजिटर का कार्य करना होगा।
0: जी, मुझे स्वीकार है।
1: ठीक है। मुनीम जी।
2: जी।
1: ये लड़का आज काम पर नहीं आया, कुछ कहकर गया था क्या आपसे?
3: कल से बुखार बता रहा था, शायद इसी वजह से ना आया हो।
1: भाई बड़ा सलीके वाला लड़का है, अपना काम बखूबी करता है, मुझे तो बहुत पसंद है।
3: देखिए देखिए त्रिवेदी जी, वो चला आ रहा है।
0: नमस्ते सर, माफी चाहता हूँ, आने में देर हुई। दरअसल कल से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है, शायद आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकूँगा। यदि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं घर चला जाऊँ, वहाँ जाते ही रुपए का प्रबंध करके भेज दूंगा।
1: ये तो वास्तव में बीमार है, मैं इससे भली भांति परिचित हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो यहाँ रहकर कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकेगा। इसे सचमुच सहायता की जरूरत है, मगर मुझे शंका है कि कहीं ये भी रुपए हजम ना कर जाए। जब एक विचारशील सुयोग्य पुरुष धोखा दे सकता है, तो ऐसे अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे आशा की जाए कि वो अपने वचन का पालन करेगा? भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बेहद दुख है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, बिल्कुल खाली हाथ हूं, मुझे खेद है।
0: आप चाहे तो कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर सकते हैं, मैं आपके रुपए अवश्य भेज दूंगा।
1: यहां तुम्हारी नियत साफ है, लेकिन घर पहुंचकर भी यही नियत रहेगी, इसका क्या प्रमाण है? नियत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं, ये भी कौन जाने? रुपए तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है। अब देखो, इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास आज रुपए नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो वो ले सकते हो। ये तो चला गया, लेकिन क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं। अरे मैं कहां का इतना धनी हूं जो यूं पैसे पानी में फेंकता फिरूं?
3: सुनो बेटा सुनो, त्रिवेदी जी ने कुछ कहा है क्या?
0: पंडित जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा के पैसे भी नहीं हैं, मैं घर वापस लौट जाना चाहता हूँ, इसलिए मालिक से कुछ रुपए उधार लेने गया था, लेकिन रुपए नहीं मिल सके।
3: तो फिर क्या करोगे? जितने दिन तुमने काम किया है उससे तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। अरे पहले तुम ये रोना बंद करो, लो ये 15 रुपए रखो और तुरंत घर चले जाओ, जाकर सबसे पहले अपना इलाज करवाओ।
0: नीम जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगा, घर पहुंचते ही मैं रुपए वापस भेज दूंगा। नमस्ते।
1: अरे मुनीम जी, ये लड़का क्या कह रहा था, कुछ कहकर गया है क्या?
3: हाँ, वो बता रहा था कि घर जाना चाहता है, मुझसे जो मदद बन पड़ी मैंने कर दी।
1: अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये अच्छा ही हुआ। चलो मुझसे ना सही, किसी और से ही सही, मैं भी तो यही चाहता था कि इसकी मदद हो जाए। अब मेरे दिल का बोझ हटा, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन ये सब मेरे उन कवि मित्र के कपट का परिणाम है जो उन्होंने मेरे साथ किया है, वरना क्या मेरे पास इस लड़के को देने के लिए 15 रुपए नहीं निकलते? मैं अपनी रचनाओं और आलेखों में बड़े बड़े उपदेश

0: किया करता था। दया, मनुष्यता, सद्व्यवहार और मौका पड़ने पर मैं स्वयं ही साफ बच निकला। अरे मुझसे अच्छे तो ये मुनीम जी निकले, जो मेरी रचनाओं को पढ़ पढ़कर इनका जीवन ही बदल गया है। गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। चलो ये भी अच्छा है, मेरे लेखों का मुझ पर ना सही, दूसरों पर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। भले ही चिराग तले अंधेरा सही है, पर उसका प्रकाश तो फैल रहा है। और कहीं मुनीम जी को पैसे वापस नहीं मिले तो, जिसकी मुझे पूरी आशा है। तो फिर खूब छकेंगे। महाशय को आड़े हाथों लूंगा। किंतु त्रिवेदी जी की अभिलाषा पूरी ना हो सकी। हां, एक काम उन्होंने अवश्य किया, इस संपूर्ण घटना को आलेख के रूप में एक पत्रिका में छपवा दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चौथे ही दिन उनके दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा था।
1: पोस्टमैन, आपका मनी ऑर्डर है।
0: मनी ऑर्डर? अरे ये तो उमापति ने भेजा है। अरे सुनती हो, ये देखो उमापति जी ने 75 रुपए वापस भेजे हैं और क्षमा लिखा है।
2: अच्छा, इन्हें ले जाकर संभाल कर संदूक में रख दो। तुम इतने लोभी हो, मुझे तो पहली बार मालूम हुआ। कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज नहीं लौटा पा रहा है तो अवश्य ही वो विवश है। बार बार तकाजा करके उसे लज्जित करना कोई भल मनसाहत नहीं है। अरे जब तक किसी व्यक्ति का पूरी तरह से नैतिक पतन नहीं हो जाता, तब तक वो किसी को धोखा नहीं देता। मैं इन रुपयों को तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक ये पता नहीं चल जाए कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ।
0: उसके बाद उमापति का कोई पत्र नहीं आया जिससे ये पता चले कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ। पर मैं इस समय ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार नहीं था। डूबा धन मिल गया, मैं तो इसी में बहुत खुश था। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की जादूगर को सलाम की 11वीं कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और सतीश कक्कड़। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना धारावाहिक जादूगर को सलाम का भाग 11। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवीके के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60 लाख

0: 70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर दोपहर के 1 बजे है। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज की चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, सखियां सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें के विषय में। जी हाँ बहनों, सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, इसलिए 8 से 12 मई तक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के रूप में हम मना रहे हैं। बहनों, सड़क सुरक्षा आज के समय में एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। बढ़ती वाहनों की संख्या और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बहनों, सड़क पर वाहन चलाते समय कुछ छोटी छोटी सावधानियां हमें और दूसरों को सुरक्षित रख सकती हैं। सबसे पहले हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना बहुत जरूरी है। यह हमारी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार ही अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना बेहद खतरनाक है। इससे ध्यान भटकता है और हादसे की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें नशे की हालत में भी कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। पैदल यात्रियों का सम्मान करें और उन्हें रास्ता दें। सड़क पर धैर्य और संयम बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। बहनों, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हमें यह याद दिलाने का एक अवसर है कि सड़क पर सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर नियमों का पालन करें और जागरूक बनें, तो हम कई कीमती जिंदगियां बचा सकते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही जीवन है। रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पहचान बन जाए, हर मोड़ पर जीवन की कीमत याद आए, एक नियम पालन 100 खुशियां बचाए, सड़क पर सावधानी घर तक सही सलामत पहुंचाए। बहनों, सड़क केवल यात्रा का मार्ग नहीं होती, वह विश्वास का रास्ता होती है, जहां हर व्यक्ति यह उम्मीद लेकर निकलता है कि वह सुरक्षित अपने घर लौटेगा। बहनों, सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा संस्कार और हमारा जीवन है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी हैं। बहनों, प्रश्न यह नहीं है कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें रोकने के लिए जागरूक हैं। बहनों, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। आपके एक सेकंड की गलती पूरे जीवन की सजा बन सकती है। बहनों, सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों को जानने का नाम नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो सड़क पर चल रहा है। सबके लिए नियम समान रूप से महत्वपूर्ण है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना, सिग्नल का सम्मान करना, ये सभी छोटे छोटे कदम आपके लिए और दूसरों के लिए जीवन बचा सकते हैं। बहनों, सड़क पर दिखावा नहीं, सुरक्षा अपनाओ। स्टंट करना रोमांच नहीं, यह केवल जोखिम और मृत्यु की ओर एक कदम है। तस्वीरों या रील्स के लिए जान को जोखिम में डालना कोई बहादुरी नहीं, वह मूर्खता है। सरकार

सरकार कानून बनाती है, पुलिस व्यवस्था संभालती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। जब हम खुद नियमों का पालन करेंगे तभी दूसरों से अपेक्षा कर पाएंगे। याद रखिए, एक जिम्मेदार नागरिक ही सुरक्षित समाज की नींव रखता है। सड़क पर हर व्यक्ति किसी का अपना होता है। जो सामने से आ रहा है वह भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है। सड़क पर संयम, सहानुभूति और अनुशासन अपनाइए। गुस्सा नहीं, समझदारी दिखाइए। हॉर्न नहीं, धैर्य बजाइए। आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि हम तेज गति नहीं अपनाएंगे और नियमों का पालन करेंगे।

0: पकड़ना पाए।
1: ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँ मेरे।
2: ममता की छाया सेवा का सार, दर्द भी देती जीवन का उपहार, खामोशी से करती मानवता का काम, नर्से ही हैं सेवा का सच्चा नाम। जी हाँ बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सबसे पुनीत कार्य निभाती नर्स के विषय में। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम प्रतिवर्ष 12 मई को मनाते हैं, उन अनगिनत नर्सों के समर्पण, त्याग और करुणा को नमन करने का दिन है जो दिन रात बिना थके हमारी सेवा में लगी रहती हैं। बहनों, यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने न केवल नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाया बल्कि इसे मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण भी स्थापित किया। 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने आधिकारिक रूप से इस दिन को नर्स दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की ताकि दुनिया भर में नर्सों के योगदान को सम्मान दिया जा सके। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले सबसे अधिक समय तक जो व्यक्ति उसके साथ रहता है वह नर्स ही होती है। डॉक्टर

उपचार की दिशा तय करते हैं, लेकिन उस उपचार को सही ढंग से लागू करने का कार्य नर्सें करती हैं। वे न केवल मरीज की देखभाल करती हैं, बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा देती हैं। यदि हम COVID-19 महामारी के आंकड़े देखें, तो आप जान सकेंगे कि इस महामारी के दौरान नर्सों की भूमिका ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, तब नर्सें अस्पतालों में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रही थी। कई नर्सों ने अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात काम किया ताकि वे दूसरों की जान बचा सके। यह केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि यह एक सच्ची सेवा और त्याग का उदाहरण था। नर्सें केवल इंजेक्शन लगाने या दवाइयां देने तक सीमित नहीं होती, वे मरीज की भावनाओं को समझती हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करती हैं और उसे आशा देती हैं। जब एक मरीज निराश होता है, तब नर्स ही उसे वह विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी मुस्कान, उनका धैर्य और उनकी संवेदनशीलता ही मरीज के लिए सबसे बड़ी दवा बन जाती है। बहनों, इस दिन का महत्व केवल नर्सों को सम्मान देना नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि नर्सें भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं और परिवार होते हैं। फिर भी वे अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानती हैं और दूसरों की सेवा में लगी रहती हैं। आज के समय में नर्सिंग केवल सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र बन चुका है। नर्सें अब आधुनिक उपकरणों का संचालन करती हैं, जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं में सहायता करती हैं और स्वास्थ्य अनुसंधानों में भी योगदान देती हैं। इस बदलते समय में नर्सिंग का महत्व और भी बढ़ गया है। बहनों, हमें यह समझना होगा कि यदि हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है, तो हमें नर्सों का सम्मान और सहयोग करना होगा। हमें युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि भविष्य में नर्सों की कमी को दूर किया जा सके। सरकार और समाज दोनों मिलकर नर्सों के कार्यस्थल की स्थिति और सुरक्षा को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि नर्सें केवल अस्पताल की कर्मचारी नहीं, बल्कि मानवता की सच्ची सेवक है। बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज ही के दिन यानी मई माह के दूसरे रविवार को मनाए जा रहे एक बहुत ही खास दिन, मदर्स डे के विषय में। जी हाँ बहनों, दुनिया में सबसे कठिन, सबसे पवित्र और सबसे अनमोल है माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है, एक शक्ति है, एक ऐसी छाया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। इस दुनिया में कई रिश्ते बनते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। वह हमें 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखती है, हमारे हर दर्द को सहती है और बिना किसी शर्त के हमसे प्रेम करती है। माँ की भूमिका इसलिए सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि वह एक साथ कई जिम्मेदारियाँ निभाती है। वह हमारी पहली शिक्षक होती है, जो हमें बोलना, चलना और अच्छे संस्कार सिखाती है। वह हमारी रक्षक होती है, जो हर मुश्किल से हमें बचाती है। वह हमारी दोस्त भी है, जो हमारी हर बात बिना कहे समझ जाती है। माँ अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग कर हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। वह दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कभी थकान की शिकायत नहीं करती। उसकी खुशी सिर्फ हमारे चेहरे की मुस्कान में होती है। सच कहूँ तो माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम केवल उन्हें सम्मान, प्रेम और आदर देकर उनके त्याग का थोड़ा सा मान रख सकते हैं। इस मदर्स डे पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपनी माँ का हमेशा सम्मान करेंगे, उनकी बातों का आदर करेंगे और उन्हें गर्व महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ के बिना जीवन अधूरा है और माँ के साथ हर मुश्किल आसान है। बहनों, माँ हमें हर एक बुरी नज़र से भी बचाती है, इसीलिए तो वो माथे पर काजल का टीका लगाती है। और एक दिन जब हम कामयाबी के शिखर को छू लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारी मेहनत नहीं, बल्कि माँ की मेहनत है जिसने हमें कदम कदम

पर प्रोत्साहित किया और हमारी कामयाबी के लिए उपवास किया। क्या कोई हमारे लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ कर सकता है? शायद नहीं। क्या अंबर, क्या धरती, माँ की तुलना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन बदलते इस परिवेश में हम अपनी उस माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। हर वक्त भगवान से हमारी खुशियाँ ही मांगी हैं। जब कभी भी मैं इस वृद्धाश्रम में माताओं को देखती हूँ तो मेरी आँखों में आंसू झलक आते हैं और यह दिल रोने लगता है और बार बार मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर। क्या उसने इसीलिए हमें पाला है कि आज हमने उसे उसके घर से ही निकाल दिया? लेकिन बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त हम पर भी आएगा और इतिहास अपने आप को दोहराएगा और उस वक्त हमको अपनी गलती का एहसास कराएगा। लेकिन तब तक ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और हमारे पास सिवाय पश्चाताप की ज्वाला के कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए वक्त रहते हमें अपनी माँ की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप होती है माँ। हम अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, पर अपनी माँ के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, वर्ल्ड ल्यूपस डे, जिसे हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। बहनों, ल्यूपस एक गंभीर ऑटो ह्यूमन बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद अपने ही ऊतकों और अंगों पर हमला करने लगती है। यह बीमारी त्वचा, जोड़ों, किडनी, हृदय और मस्तिष्क तक को प्रभावित कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, जिससे इसका सही समय पर निदान करना कठिन हो जाता है। बहनों, विश्व ल्यूपस दिवस का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना, समय पर पहचान और सही इलाज के महत्व को समझना है। ल्यूपस के मरीजों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। समय पर पहचान और उचित इलाज से ल्यूपस को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से मरीज बेहतर जीवन जी सकते हैं। ल्यूपस हो जाने पर खाने पीने का सही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी शरीर में ह्यूमन सिस्टम और सूजन से जुड़ी होती है। सही डाइट लक्षणों को नियंत्रित करने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करती है। सूजन कम करने के लिए खाद्य पदार्थ जैसी हरे पत्तेदार सब्जियां, फल जिनमें सेब, संतरा, पपीता, बेरी, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च खाने से सूजन में आराम मिलता है। अखरोट, अलसी, चिया सीड्स ये दर्द और सूजन दोनों को कम करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे राजमा, दालें, चना, पनीर, दूध, दही, अंडा यदि आप खाते हैं तो, साबुत अनाज और सुबह और शाम की हल्की धूप, जिससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, ल्यूपस में काफ़ी लाभकारी होती है। बहुत ज़्यादा नमक, जंक फूड, मिठाइयाँ, तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए और जैसा आपके डॉक्टर सलाह दे वैसा ही करें, क्योंकि इसमें सभी मरीजों के लक्षण अलग होते हैं। बहनों, गर्मियों में सत्तू यानी भुने चने का आटा बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। यह देसी सुपर फूड न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि ऊर्जा भी बनाए रखता है। फाइबर ज़्यादा होने से पेट साफ रहता है और कब्ज़ नहीं होती। पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज़्यादा खाने की इच्छा कम होती है और आपका वज़न कंट्रोल में रहता है। नमक व नींबू के साथ लेने से शरीर में पानी

और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रहते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। यह धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज करता है, जिससे शुगर लेवल स्थिर रहता है। सत्तू के इतने फायदे हैं, तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं सत्तू का मीठा शरबत और नमकीन शरबत। मीठे शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4-5 चम्मच सत्तू, शक्कर स्वाद अनुसार जितना मीठा आप लेना चाहें, 1 चुटकी नमक, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, ठंडा पानी 1 ग्लास। सभी चीज़ों को एक कटोरे में अच्छे से मिला लें। अब इसे 1 ग्लास में सर्व करें, जिसमें कि आप कुछ बर्फ़ के आइस क्यूब्स डाल दें। ठंडा ठंडा पीने पर काफ़ी अच्छा लगता है। बहनों, यह तो था मीठा शरबत। इसी तरह नमकीन शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा ग्लास ठंडा पानी, 2-4 चम्मच सत्तू, बारीक कटी प्याज 2 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 चम्मच, हरी मिर्च यदि आप बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो इसे अवॉइड करें, और यदि आपको पसंद है तो 1/4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा 1/4 चम्मच, काला नमक, सादा नमक स्वाद अनुसार मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। 1 नींबू का रस निचोड़ दें, बर्फ़ डालें और ठंडा ठंडा सर्व करें। इसे आप गर्मियों में काम पर जाते समय भी पी सकते हैं, इससे भूख भी नहीं लगेगी और आप पूरे दिन रिफ़्रेश भी रहेंगे। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपकी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार है मोहन सिंह कुशवाहा। आइए सुनते हैं इनसे लोकगीत।

लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार मैथिल। सुनते हैं इनसे ये गज़ल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी श्योपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: खो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
9: दीदी, नौकरी लग गई।
10: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
9: हाँ दी, नया मोबाइल।
10: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
9: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
10: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
9: पर दीप,
10: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
9: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।

0: आपके विचार अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत विशाल मिश्रा और राहुल की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम RRR।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में गाए धूम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव 1,059 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को MPPSC, बैंकिंग, SSC, DRDO और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। IPL क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में होगा, वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शंकरकुइया क्षेत्र में 35 लाख की लागत से क्षतिग्रस्त रिटर्निंग वॉल का नगर पालिका परिषद ने निर्माण शुरू करवाया है। शिवपुरी कलेक्टर ने ग्राम टोंगरा और राजगढ़ के उप स्वास्थ्य

केंद्रों का निरीक्षण कर आशा कार्यकर्ताओं और सीएचओ के से सेवाओं की जानकारी ली और रायसेन ने जनगणना 2027 के हाउस लिस्टिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश अब दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ

0: अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय एनुम नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने

0: शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला MV होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को

0: असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: रविवार के साथ ही मैं आ गई हूँ आपकी अपनी प्रीति दीदी लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में स्वागत है बच्चों आपका। होती है बड़ी प्यारी माँ, जग में सबसे न्यारी माँ, सुख सारे हमको देकर दुख सारे हर लेती माँ, सदा प्यार हमको देती है, ममता का तो सागर है माँ। जी हाँ बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत माँ पर लिखी कविता से क्यों की है। हाँ बच्चों, आज है मातृ दिवस यानी मदर्स डे। तो बच्चों, मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी बहुत उत्साहित ही होंगे। माँ दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास और सबसे प्यारा रिश्ता है। उस माँ को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को यह मदर्स डे मनाया जाता है।

बच्चों, हर समस्या, हर उलझन माँ के पास आकर खत्म हो जाती है। वो सहज ही हमें सारे उपाय सुझा देती है। तो इतनी प्यारी माँ को आज के दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज देने का मन तो आप सभी ने बना रखा है। हम भी आज कुछ खास करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ आपके बहुत प्यारे प्यारे दोस्त भी हैं। तो आओ जान लेते हैं आज वो क्या विशेष कर रहे हैं अपनी मम्मा के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके दोस्तों से जान लेते हैं कि उनके नाम क्या

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाश्वत तारे है, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही चौधरी है, मैं कक्षा पांचवी की छात्रा हूँ।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंशिका मीरिया है और मैं क्लास सेवेंथ की छात्र हूँ।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम ग्रंथ मीरिया है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश मिश्रा एंड मैं क्लास फिफ्थ में पढ़ता हूँ।
5: सभी बच्चों ने अपने नाम बता दिए हैं तो सभी बच्चे बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं और कुछ न कुछ आज धमाल करेंगे, अपनी मम्मा को खुश करने के लिए उन्हें सरप्राइज देंगे। क्यों शाश्वत, है ना?
0: हाँ दीदी, आज तो मदर्स डे है, आज तो हम अपनी मम्मा को खुश करने की कोशिश करेंगे और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार करेंगे।
5: क्या बात है, सरप्राइजेस तैयार करेंगे, तो क्या क्या चीज सोच रखी है आपने?
0: मैं मम्मी के लिए केक बनाऊंगा, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड बना के दूंगा और बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। दीदी, ये तो आपको पता ही है कि भगवान हर समय हमारे साथ नहीं आ सकते, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया। हर इंसान की प्रथम गुरु उसकी

0: लिए बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार करेंगे।
1: क्या बात है, सरप्राइजेस तैयार करेंगे तो क्या क्या चीज सोच रखी है आपने?
0: मैं मम्मी के लिए केक बनाऊंगा, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड बना के दूंगा और बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। दीदी, ये तो आपको पता ही है कि भगवान हर समय हमारे साथ नहीं आ सकते, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया। हर इंसान की प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है और मेरी भी प्रथम गुरु मेरी माँ ही है। दीदी, तो क्या मैं आपको एक प्यारी सी कविता मेरी माँ के ऊपर सुना सकता हूँ?
1: क्यों नहीं शाश्वत, तुमने इतनी अच्छी बात कही कि जहाँ पर भगवान नहीं होते हैं वहाँ पर माँ होती है, हर मुसीबत को दूर करने के लिए, आपसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। तो अपनी माँ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए।
0: माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला। मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली। सुबह सवेरे मुझे जगाती, कृष्णा कर मुझे जगाती। जल्दी से तैयार में होता, उसके कारण स्कूल जा पाता। माँ और माँ का प्यार निराला, पर मैं करता गड़बड़ घोटाला। जब मैं करता कोई गलती, समझाने की कोशिश करती। लुटाती मुझ पर अधिक प्यार, करती मुझसे अधिक दुरार। मुझ पर गुस्सा जब है आता, 2 मिनट में उड़ भी जाता। मेरी मम्मी मेरी जान, रखती मेरा पूरा ध्यान। माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला।
1: वाह शाश्वत, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई अपने माँ के ऊपर।
0: दीदी, मुझे एक कविता और आती है, मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
0: मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ। प्यार से सुबह मुझे जगाती, मीठा दूध पिलाती है। बना के मुझे सुंदर कपड़े, स्कूल छोड़ के आती है। अच्छा अच्छा खाना बनाती, अपने हाथ से मुझे खिलाती। मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ। दुनिया से है प्यारी माँ,
1: दुनिया से है प्यारी माँ और दुनिया से है न्यारी माँ। बहुत ही प्यारी सुंदर कविता शाश्वत आपने सुनाई। अब मुझे वंशिका बताएगी कि वंशिका ने क्या तैयारियां करी है मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए।
2: दीदी, आज मैंने सुबह उठ के मेरी मम्मा को फूलों का गुलदस्ता बना के गिफ्ट किया।
1: अच्छी बात बताई कि तुमने अपनी मम्मा को सुबह उठते ही फ्लावर का एक बुके गिफ्ट करा। और क्या करना चाहती हो अपनी मम्मा के लिए?
2: आज मैं अपनी मम्मा को वाटरमेलन का जूस बना के दूंगी, जिससे मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हो जाएगी।
1: आपकी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। तो आप अपने दोस्तों को बताएंगी कि कैसे आप वाटरमेलन का जूस बनाएंगी?
2: हाँ दीदी, पर पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वाटरमेलन होता है वो बहुत फायदेमंद होता है गर्मियों के लिए। तरबूज में सबसे ज्यादा लाइकोपाइन पाया जाता है। लाइकोपाइन से फल और सब्जियां लाल रंग के दिखाई देते हैं। तरबूज खाने से दिमाग रिलैक्स रहता है। विटामिन की ज्यादा मात्रा होने के कारण ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी रिलैक्स करता है। अब मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी वो कैसे वाटरमेलन का जूस बना सकते हैं। सबसे पहले तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद मिक्सर में किसी बड़े की मदद से तरबूज के साथ चीनी और 2-3 पुदीने की पत्तियां डालकर पीस लीजिए। इसके बाद छन्नी या पतले कपड़े की मदद से इसे एक गिलास में छान लीजिए। अब एक पिंच काला नमक और आधा नींबू का रस मिलाकर पुदीने की पत्तियों से सजाकर अपनी मम्मा को सर्व कीजिए। देखना, आपकी मम्मा भी बहुत हैप्पी हो जाएंगी।
1: हम भी बहुत खुश हो गए हैं वंशिका, तुमने इतनी अच्छी रेसिपी अपनी मम्मा के लिए बनाने का प्लान करा है।
2: दीदी, बातें तो बहुत हो गई है, पर क्यों ना अब एक गीत सुन लिया जाए।
1: बहुत अच्छी बात है वंशिका, मम्मा के ऊपर क्यों ना एक गीत सुने।
2: हाँ दीदी।

0: दीदी मेरी कविता का शीर्षक है माँ की ममता माँ का प्यार। माँ की ममता माँ का प्यार झूठा है सारा संसार, लोरी गाती पहले खाना हमें खिलाती, करती पल पल हमें दुलार। माँ की ममता माँ का प्यार, माँ की आँखों के तारे हम घर के राज दुलारे हम, मीठे स्वर में रही पुकार। माँ की ममता माँ का प्यार दूर नहीं है रहने देती, आंसू नहीं है बहने देती, करे खिलौनों की भरमार। माँ की ममता माँ का प्यार, माँ की ममता माँ का प्यार।
1: अरे वाह सूर्यांश, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। शाश्वत तुम भी तो कुछ बोलने वाले थे ना?
2: हाँ वंशिका, मैं भी कुछ लेकर आया हूँ, पर उसमें कुछ बात है और तुम ही बताओ कि उसमें क्या बात है।
1: मैं बिल्कुल कविता सुन के बताऊंगी कि उसमें क्या बात है।
2: मम्मी कहे नहाना है पानी मगर बचाना है, ये भी कोई बात हुई सोच सोच कर रात हुई, खाना रोज बनाना है पानी मगर बचाना है, अजब गजब मम्मी का रूल, हर बातों को देती तूल, पोछा रोज लगाना है पानी मगर बचाना है, मम्मी का निर्देश कड़ा लगे टॉर्च और बहुत बड़ा, कपड़े को चमकाना है पानी मगर बचाना है।
3: हाँ शाश्वत, मैं समझ चुकी हूँ कि इस कविता में पानी बचाने का संदेश है।
2: बहुत अच्छी बात कही पीहू तुमने, तुम्हें मेरी कविता अच्छी लगी।
3: हाँ शाश्वत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीहू और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: पीहू तुम्हें तो पता ही है कि आज मदर्स डे है, तो तुम अपनी मम्मा को कौन सा सरप्राइज देने वाली हो?
3: हाँ शाश्वत, आज मैंने अपनी मम्मी के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी है और मैं उनको एक भी काम करने नहीं दूंगी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा कहते कि घर में जो पेट्स होते हैं उन्हें गर्मियों के समय बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। तो दोस्तों, तेज गर्मी में डॉगीज को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें होने लगती है, उसके लिए उनकी डाइट पर भी बहुत असर पड़ता है। ऐसे में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है कि गर्मियों के दौरान वे भरपूर खाएं ताकि उन्हें सफिशिएंट एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलती रहे। बिल्लियों के लिए शेड बनाएं या उनके सोने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स रख सकते हैं। गर्मी से बचाने के लिए उन्हें गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। तेज गर्मी में उन्हें कूलर या एसी वाले कमरे में रखें। एक्वेरियम में रखी गई मछलियों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी है कि टैंक का पानी रोज बदला जाए। पानी बदलने का सबसे अच्छा समय होता है शाम का।
2: अरे वाह पीहू, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी पेट केयर के ऊपर कि हमें अपने पेट्स का ध्यान कैसे रखना है इन गर्मियों में।
3: हाँ शाश्वत, अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, क्यों ना अब हम अपने दोस्तों के साथ गीत सुन लिया जाए।
2: हाँ पीहू, चलो एक गीत सुनते हैं।

0: दीदी गीत तो हमने सुन लिया, पर अब शाश्वत हमारे बीच एक रोचक जानकारी लेकर आया है, तो चलिए हम सब सुनते हैं।
1: बिल्कुल आरुही, गीत हमने सुनवा दिया है, तो अब शाश्वत जो रोचक जानकारी लेकर आया है हम सभी मिलकर सुनते हैं।
2: दोस्तों, मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में माँ के प्रति प्यार और सम्मान के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदर्स डे विश्व में अलग अलग तरह से भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इटली में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ला फेस्टा डेला मम्मा कहकर माँ को विश किया जाता है। इसका मतलब होता है हैप्पी मदर्स डे मम्मा, ऐसा कहा जाता है।

0: ला फेस्टा डेला मम्मा माँ के आराम का दिन होता है। सर्बिया में मदर्स डे दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यहाँ लगातार 3 हफ्तों तक हर रविवार पहले चिल्ड्रंस डे, फिर फादर्स डे और अंत में मदर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, जापान में मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यहाँ इसे हाँ हाँ नो ही कहा जाता है। माताओं को शक्ति का प्रतीक मानकर उनका सम्मान किया जाता है। बच्चे स्कूलों में और घर पर अपने माँ के चित्र बनाते हैं, घरेलू कामों में उनका हाथ बटाते हैं और खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं। फ्रांस, दोस्तों, फ्रांस में मई के अंतिम सप्ताह या जून के शुरुआती सप्ताह में यहाँ फैट डेस मैरिस नाम से मातृ दिवस उत्सव मनाया जाता है। यहाँ मदर्स डे के दिन माँ आराम करती है और उस दिन उनके बच्चे ही उनका सारा काम करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा मदर्स डे कितने तरह से सेलिब्रेट किया जाता है।
1: बिल्कुल, आपके दोस्तों को तो पता चल गया और हमें भी पता चल गया है कि मदर्स डे कितने तरीकों से और विश्व में कहां कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है।
0: अब क्यों ना दीदी एक गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक गीत सुन लेते हैं सभी के साथ।

0: और अब हमारे साथ ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा है ग्रंथ। ग्रंथ हमें बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों को आप कैसे एंजॉय कर रहे हो?
1: दीदी, इन गर्मियों की छुट्टी में मामा घर जाऊंगा, स्विमिंग सीखूंगा और डांस करूंगा।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप मामा के घर जाएंगे और डांस सीखेंगे, स्विमिंग करेंगे। और क्या करने वाले हैं आप?
1: मेरी मम्मा कहती है कि शाम को साइकिल चलाना चाहिए, इसीलिए मैं शाम को साइकिल चलाता हूँ कि दिन में तो बहुत धूप होती है और मेरी मम्मा कहती है कि धूप में नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहती है आपकी मम्मा, क्योंकि आपकी मम्मा चाहती है कि आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि धूप बहुत तेज होने से आपको लू भी लग सकती है ना
1: दीदी।
0: और अब आरोही हमें कुछ बताना चाहती है।
2: दीदी, तो आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज मैं मेरी

0: अम्मा को पेपर डॉल गिफ्ट करने वाली हूँ।
1: आपने कहा कि आप पेपर डॉल गिफ्ट करेंगी, तो आपने कहाँ से बनाना सीखा?
0: अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जाती हूँ और वहाँ से मैंने पेपर डॉल बनाना सीखा। तो आज मैं मदर्स डे सेलिब्रेट करूँगी। मेरे पापा के साथ मैंने सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है और मैंने खाने की बहुत सारी डिशेस बनाई हैं और एक प्यारा सा केक बनाया है। शाम को हम सब लोग मम्मा को सरप्राइज देंगे।
1: क्या बात है, मम्मा को सरप्राइज पार्टी देने वाली है और सारी प्लानिंग हो चुकी है ना?
0: हाँ दीदी।
2: दीदी आज तो हमें बहुत मजा आया आपके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने में।
1: बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत मजा आ रहा है कि इतने प्यारे दोस्तों के साथ हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

0: बराबर कोई नहीं।
1: माँ के बराबर कोई नहीं। वाकई में बच्चों, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ होती है और वो हमें इतना प्यार करती है कि हमारी सारी गलतियों को माफ कर देती है, है ना? तो आप सभी बच्चे आज खुश रहें और बहुत अच्छे से एंजॉय करें अपनी मम्मा के साथ। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे।
2: सभी दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे।
1: तो प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार ऐसे ही प्यारे बच्चों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपनी प्रीति दीदी को दे अनुमति। बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। श्री मोदी ने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच होंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, वहीं दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 पर और शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिसमें 7:30 से 8:00 के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा जायद उद्यानिकी फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। डगर विकास की ये कार्यक्रम 7:15 होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा की प्रस्तुति रहेगा। विषय रहेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे 7:30 और 9:30 कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में 10:00 सुनिएगा विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव 188.32 पर पुनः सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार है मोहन सिंह कुशवाहा।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। डीजे अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार मैथिल। सुनते हैं इनकी गाई ये गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।
1: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
0: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत समीर का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम रन।

आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत साथिया फिल्म से लिया है, जिसे गाया शान और कुणाल ने, गुलजार के बोस संगीत, ए आर रहमान का।

0: राहत फ़तेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे सिंग इज किंग फिल्म का गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में सहभागिता की। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में श्री चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ भी करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। डीजे अब सुनिए कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

0: सिंधियत जे सुरहाण में अॼु क़बूलींदा हर्षा जे सिख भरी नमस्ते। जय झूलेलाल साथियो, अॼु मई महीने जो ॿियों आर्तवार। हिन दुनिया में ईश्वर जी सभिनीनि खां वधीक प्यारी ऐं सुंदर सुहिणी रचना, जंहिंजे निस्वार्थ प्रेम ऐं क़ुर्बानीअ लाइ हर शख़्स हुन खे ममता जी मूरत सॾींदो आहे, अहिड़ी माउ यानी माता जे सन्मान ऐं धन्यवाद ॾियण जो ई ख़ासि ॾींहुं आहे। माउ जी ममता जे अनमोल खज़ाने में पंहिंजे ॿारनि लाइ प्यार जा जेके मणिया निकिरंदा आहिनि, उन्हनि जी क़ीमत कंहिं भेटा, सूखड़ी या गिफ्ट जे रूप में चुकाए सघिबी कोन्हे। पर हुन अनमोल प्यार जे लाइ जॾहिं लफ़्ज़ घटि थी वञनि, त पंहिंजी भावनाउनि खे गिफ्ट या सूखड़ीअ जो रूप ॾेई माउ जो सन्मान करण जो इहो ॾींहुं आहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सदीअ जे शुरूआति खां वठी इहो ॾींहुं मल्हाइणु अन्ना जर्विस जी पहल हुई। हुन वेस्ट वर्जीनिया जे ग्राफ्टन शहर में एंड्रियस मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में पहिरियों भेरो माता जी पूॼा ऐं उत्सव जी तयारी कई। तॾहिं खां पोइ हर साल मईअ जो ॿियों आर्तवार मातृ दिवस यानी मदर्स डे जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। ॿी ॻाल्हि कयूं त परिवार समाज जी हिकु अहिड़ी इकाई आहे जेका प्रेम, सुरक्षा ऐं संस्कार ॾींदी आहे। परिवार में अलॻि अलॻि माण्हू जुदा जुदा ज़िमेदारियुनि में ॿधल हूंदा आहिनि। कमु, पढ़ाई, नौकरी, सामाजिक जवाबदारियूं, इन्हनि सभिनीनि कारणनि सां परिवार सां गॾु वेही रिश्तनि खे मज़बूत करणु ऐं आधुनिक चुनौतियुनि ते चर्चा करण जो वक़्तु घटि ई बचंदो आहे। परिवार जो महत्व उन जी सामाजिक, आर्थिक ऐं सांस्कृतिक भूमिका लाइ सुजाॻी आणण वास्ते संयुक्त राष्ट्र संघ पारां सन 1993 में 15 मई जो ॾींहुं परिवार ॾींहं जे रूप में मल्हाइण मुक़ररु कयो वियो। त विश्व परिवार ॾींहुं ऐं मदर्स डे जूं अव्हां सभिनीनि खे खोड़ खोड़ वाधायूं, शुभकामनाऊं ऐं परिवार में मस्ती, खिल, रौनक त ज़रूरु हूंदी ई आहे। त इन ई मौक़े ते अचो गॾिजी ॿुधूं था ही मस्तीअ भरो गीत। गोवर्धन भारतीअ जी रचना, सी अर्जुन जो संगीत, भगवंती नावाणी ऐं सतराम रोहिड़ा जी आवाज़।
1: ऐं अमा
2: चओ पुट, मां सदके वञा।
1: अमा, मूंखे शादी कराइण खां अॻु कुंवार बाबति का पुछा गछा बि कए।
2: ॾिसु ॾिसु पुट, मूंखे ॾो न ॾे। अरे छोकिरी त तूं पाण ई पसंदि करे आयो आहे न।
1: हा, पसंदि बि मूं कई, शादी बि मूं कई, ऐं शादीअ सां गॾु जेके बंदि पेतीअ में 20 गिन्नियूं ऐं 25 तोला सोन, 16 साड़ियूं ऐं 50,000 रोकड़ वठी आयसि।
2: मारिया आस्ते ॻाल्हाए त किथे इनकम टैक्स वारा न ॿुधनि। अरे अॻे ई असां पतरा कढाया हुआ त ॾेती लेतीअ में असां पाई बि न वरिती हुईसीं।
1: आहा, पाई बि कान वरिती हुईसीं, उन हूंदे बि बंदि पेती वठी तो पाण वटि रखी। साड़ियूं पाए तूं, ज़ेवर पाए तूं, रोकड़ रखे सॼी पाण वटि। अमा, मूंसां त वेदन कई थी।
2: लाल, तोसां कहिड़ी वेदन थी आहे?
1: अमा ॿुधाए।
2: हा हा, हिकदमि चई ॾे।
1: अरे घोड़ा।

साथियों, इन गीत खां पोए अॼु असां तव्हांखे वठी था हलूं वक़्त जी हुननि घिटियुनि में अहिड़े सफ़र ते जिते ॻाल्हि थींदी फ़क़ति भारतीय प्रसारण जी पीढ़ जी आधारशिला जी यानी आकाशवाणीअ जी। साथियों, असां तव्हां सां रूबरू थियूं था त इहो फ़क़ति हिकु रेडियो स्टेशन कोन्हे पर लखे भारतीय माण्हुनि जी यादूं, समाचार, ख़बरूं ऐं मनोरंजन जो साथी आहे जंहिंखे असां आकाशवाणी नाले सां सुञाणूं था। उन जी दास्तान 1920 में शुरू थी हुई जॾहिं बिजली बि हर घर कोन पहुती हुई ऐं तकनीकी विकास बि अॼु जेतिरो कोन हो। अहिड़े समय में रेडियो यानी ट्रांजिस्टर्स पंहिंजो जादू ॾेखारियो। सन 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब पंहिंजो पहिरियों प्रसारण कयो हो। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीअ बॉम्बे ऐं कलकत्ते में ॿ स्टेशन शुरू कया। सन 1930 में ब्रिटिश सरकार हिन जी ज़रूरत ऐं महत्व सम्झियो ऐं पोइ इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS जी शुरूआत कई वई। इहो हिकु प्रैक्टिकल क़दम सन 1932 जी 8 जून ते मक्कम थियो ऐं उहो ऐतिहासिक ॾींहुं आयो जो ISBS जो नालो मटे ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखियो वियो। ॿिए विश्व युद्ध जे वक़्तु इन जो महत्व अञा वधी वियो ऐं 1956 में ऑल इंडिया रेडियो खे आकाशवाणी नालो ॾिनो वियो। ईंदड़ 8 जून 2026 ते आकाशवाणी पंहिंजी प्रसारण सेवा जा 90 साल पूरा करे रही आहे। अव्हां सभिनीनि प्यारे रेडियो श्रोताउनि जा असां लख थो रहता आहियूं जो तव्हांजे प्यार

पसंदगी ऐं विश्वास आकाशवाणी जी प्रसारण सेवा खे इन मुक़ाम ते पहुचायो आहे। ऐं हिन ॼाण खां पोइ अचो त गॾिजी ॿुधूं था हीअ लोली सी अर्जुन जो संगीत, कृष्ण राहीअ जी लिखियल, भगवंती नावाणीअ जी आवाज़ में EMI प्रोडक्शन जी पेशकशि।

0: भगवंती नावणीअ जी आवाज़ में कृष्ण रहीअ जी लिखियलु इहा लोली तव्हां ॿुधी रहिया हुआ ऐं हींअर पेश करे रहिया आहियूं असां संत साईं दादा चेलाराम जे जीवन ऐं उन्हनि जा महान वीचारनि ते हिकु ख़ासि वार्ता पेश कंदड़ आहिनि श्री लोकचंद जनयाणी जी। ही महान संत दादा चेलाराम साहिबु उन्हनि जो जनम 3 मई ते थियो हुओ। गुरबाणीअ जो प्रचार प्रसार माण्हुनि में सेवा भाव जॻाइण वारा ही संत उत्तम वीचारनि जा धणी हुआ। अचो उन्हनि जे जीवन यात्रा ऐं वीचारनि खे वधीक विस्तार सां ॿुधूं था श्री लोकचंद जनयाणी जी आवाज़ में।
1: दादा चेलाराम जन जो जनम 3 मई 1904 में हिकु सिंधी परिवार में हैदराबाद सिंध में थियो। संदन पिता जो नालो डॉक्टर टेकचंद राचूमल मंखाणी ऐं माता जो नालो चेतबाई हुओ। संदन जे नंढी उमिरि में ई माता पिता ऐं भेण हिन फ़ानी दुनिया मां चालाणो कयो, जंहिं करे संदन बालपन अकेलेपन में ऐं चिंतनशील थी गुज़रियो। उन्हनि कानून जी डिग्री हासिलु कई ऐं वकालत सां पंहिंजो जीवन जी शुरूआत कई, पर संदन इन प्रोफेशन में मन न लॻो। पोइ उन्हनि सिविल सेवा में पंहिंजो जीवन लॻायो, जिते उन्हनि खे धार्मिक ग्रंथनि खे पढ़ण ऐं सम्झण लाइ बि टाइम मिलियो। सिखनि जे धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब संदन जे दिलि ते वॾो असरु विधो। गुरुबाणीअ में उन्हनि खे रस अचणु लॻो ऐं प्रभुअ तरफ़ वधणु लॻा। सभ खां पहिरीं उन्हनि कराचीअ जे गुरुद्वारे में कीर्तन करणु शुरू कयो। उन्हनि ॿारनि खे बि सेखारणु पढ़ाइण जो कमु चालू कयो। संदन कीर्तन करणु सभिनी खे वणणु लॻो। धीरे धीरे उन्हनि जे कीर्तन खे ॿुधण लाइ चङा माण्हू गॾु थियणु लॻा। संदन खे ननकाणा साहिब ऐं अमृतसर गुरुद्वारे मां बि वक़्तु बे वक़्तु कीर्तन लाइ नींड मिलणु लॻी। उन्हनि घणनि ई गुरुद्वारनि में कीर्तन कयो, जंहिं सां संदन खे दादा जी उपाधि मिली। इहा उपाधि पवित्र पुरुषन या बुज़ुर्गनि खे ॾिनी वेंदी आहे। उहे हिकु मशहूरु सहजदारी सिख हुआ, जिन गुरबाणीअ जी अलॻि हर हंधु जॻाई। सिर्फ़ 24 सालनि जी उमिरि में ई 1930 में उन्हनि गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद अरबी सिंधीअ में कयो। हिन खां पहिरीं कॾहिं बि सिंधीअ में अनुवाद कोन कयो वियो हो। 1938 में कराचीअ में दादा चेलाराम आश्रम जी स्थापना कई वई, जिते ॿारनि खे गुरमुखी पढ़णु सेखारी वेंदी हुई ऐं साथ में ॿिए धर्म ग्रंथ ऐं संस्कारनि जी नींव बि विधी वेंदी हुई। 1947 में देश जे विरहाङे खां पोइ दादा पूरे परिवार सां गॾु दिल्लीअ में अची पंहिंजो घरु ठाहियो ऐं रक्षा मंत्रालय में नौकरी करे पंहिंजे परिवार खे पालणु लॻा। 1958 में दादा जन दिल्लीअ में हिकु धार्मिक केंद्र निज थाउ जी स्थापना कई, जंहिंजो मतिलबु आहे पंहिंजो स्थान, जिते गुरु ग्रंथ साहिब खां सवाइ ॿिए बि घणेई धार्मिक ग्रंथ जीअं त गीता बाइबल क़ुरान बि मौजूदु हुआ, जिते बिना जात भेदभाव जे

0: कोई बि अची अध्ययन करे सघंदो हो। अॼु बि घणेई माण्हू इन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। दिल्लीअ में ई दादा जन निर्गुणा बालक सत्संग मंडल जी स्थापना कई, पोइ इन जूं शाखाऊं मुंबई, पुणे ऐं सोलन हिमाचल प्रदेश जे भरिसां सपरून में बि स्थापित कयूं वयूं। सपरून 15 अप्रैल खां 15 सितंबर ताईं अचण वारनि लाइ खुलियलु हूंदो आहे, जिते हिन वक़्तु संदन सुपुत्र हरीश चेलाराम ट्रस्टी जे रूप में शेवा ॾेई रहिया आहिनि ऐं इन्हनि सभिनी सेंटरनि ते अॼु बि ज्ञान जी नदियूं वही रहियूं आहिनि ऐं घणेई जिज्ञासु वञी करे उते पंहिंजे पाण खे विकसित करण लाइ फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। दादा ज्ञान जा भंडार हुआ। स्वभाव सां संयमी, धार्मिक ऐं निस्वार्थ भावना सां भरपूर, पाण खे हमेशह प्रभुअ जो निमाणो सेवक सम्झंदा हुआ। दादा जन जे वीचारनि सां हर इंसान खे समान अधिकार मिलणु खपनि, जीअं त जीवन, स्वतंत्रता ऐं सुख जी खोज शामिल आहे। दादा जन चवंदा हुआ त असां सभई ईश्वर जा सेवक कयूं, सभिनी सां प्रेम कयूं। हू हर जन जन जे शेवा लाइ पंहिंजो पाण खे शामिल करे छॾींदा हुआ। हर माण्हूअ जे शेवा लाइ हू हमेशह अॻियां वधी करे शेवा कंदा हुआ। दादा गुरबाणी ज्ञान सां रची वसी विया हुआ। उनजे रोम रोम में गुरबाणी वसियल हुई। दादा जन इहो ई ज्ञान पंहिंजे परिवार खे बि ॾिनो। संदन 8 ॿार हुआ, जेके सभई गुरबाणीअ जो कीर्तन कंदा हुआ ऐं उन्हनि सभिनी जा ॿार अॼु बि गुरबाणी कीर्तन कंदा आहिनि ऐं गुरबाणी कीर्तन कॾहिं पैसे लाइ कान कंदा आहिनि। दादा जन जी आज्ञा हूंदी हुई त गुरबाणी कीर्तन गुरु साहिब लाइ करिणो आहे ऐं गुरु साहिब खे ई ॿुधाइणो आहे। दादा चेलाराम ऐं उन्हनि जे पूरे परिवार, ख़ासि तौर सां दादा लक्ष्मण दास चेलाराम साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद 6 भाषाउनि में कयो ऐं सुखमनी साहिब जो अनुवाद 15 भाषाउनि में कयो। संदन परिवार जन जन में गुरबाणीअ जी अलख जॻाए रखी आहे। 55 वर्हनि जी उमिरि में दादा नौकरीअ मां रिटायर थी आख़िरी 5 साल सपरून हिमाचल प्रदेश में बिताया। दादा साल में 7 महीना ॿाहिरि कीर्तन लाइ वेंदा हुआ ऐं 5 महीना आश्रम में रहंदा हुआ। दादा पूरे देश में ॿाहिरनि माण्हुनि खे गुरबाणीअ जो ज्ञान भरपूर ॾिनो। गुरबाणीअ सार आहे, प्रभु की शरण सगल भैला थे। जेको बि प्रभु जी शरण वठे थो, उन जा सभु दुख दूर थी था वञनि, सभु कष्ट दूर था थी वञनि। ऐं चवंदा आहिनि, प्रभु ते भूली आ व्यापन सभु रोग। अगरि असां प्रभुअ खे भुलायो आहे त सभु तरह जा रोग अची असांखे वठ कंदा आहिनि। त इहो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरबाणी साहिब जो सार आहे ऐं इहो ई मैसेज दादा जन हमेशह सभिनी इंसाननि खे ॾींदो। 1964 में अंतिम 5 कीर्तन यात्रा जे दौरान कीर्तन कंदे दादा खे आगरे में दिलि जो दौरो पियो। संदन सिख शेवक दादा खे वठी दिल्ली आया। दिल्लीअ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐं निज थांव जे विच में दादा जीवन जा आख़िरी श्वास वरिता। दादा जन कॾहिं बि कीर्तन पैसे लाइ, पुरस्कार लाइ, सम्मान लाइ, प्रचार लाइ या कंहिं कामना सां कोन कयो। सिर्फ़ु प्रभुअ लाइ कयो, प्रभुअ खे समर्पित कयो। उन्हनि पंहिंजो पूरो जीवन सेवा ऐं सिमरन में लॻाए पंहिंजो जीवन सफल करो विया ऐं असां सभिनी लाइ राह रोशन करे विया। मां आकाशवाणी जे बानीकारनि खे धन्यवाद ॾींदुमि त अहिड़नि संतनि जे बारे में मूंखे उन्हनि जा वीचार रखण जो मौक़ो ॾिनो वियो ऐं इन माध्यम सां सभिनी माण्हुनि ते इहे ॻाल्हियूं पहुचंदियूं। धन्यवाद।
1: ऐं हिन खां पोइ अचो त वरी हिकु गीत ॿुधूं था, सरला ऐं बुलोसी राणीअ जी आवाज़ में फिल्म अबाणा, प्रभु वफ़ा जो गीत। ज्ञान में बा।

त साथियो, अॼु जो कार्यक्रम इते ई पूरो करण जी ॾींदा पंहिंजी रेडियो साथी हर्षा मूलचंदाणी खे इजाज़त। जल्दी तव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी नए रूप, नए गाना, नए ख़बरुनि सां गॾु। वरी गॾिजबो, सभ जो भलो।

0: अब सुनिए धारावाहिक जादूगर को सलाम का भाग 11। कार्यक्रम का नाम है संग्रहालय से।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 11वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आप पीती का नाट्य रूपांतरण। ये कहानी मानसरोवर भाग 6 प्रेम प्रसून कहानी संग्रह में शामिल है। प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उनके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं। कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्विचारों पर मोहित हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से ये सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर हृदय कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य प्रेमी से ही पूछना चाहिए।
1: त्रिवेदी जी, ये डाक में किसी उमापति जी का पत्र आया है आपके नाम।
2: किसका? उमापति? हाँ, लाइए लाइए, दीजिए। अच्छा मुनीम जी।
3: हाँ जी।
2: आप लोगों की दृष्टि में मेरी जो रचनाएं साधारण और स्तरहीन है, उनकी प्रशंसा ये कितने अच्छे कवि ने की है, जिनकी स्वयं की रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है।
1: जनाब क्या लिखते हैं?
2: अरे ऐसी प्रशंसा की है कि हृदय गदगद हो गया है। विस्तार से तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझसे स्वयं भेंट करना चाहते हैं? लाइए वो जरा कलम दवात उठाइए, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ।
0: पांचवें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र आ पहुंचा। ये पत्र पहले से भी कहीं अधिक मर्मस्पर्शी था। प्यारे भैया, अच्छा तो उनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। आगे लिखते हैं, कृपया अपनी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम पते भी भेजिएगा। मेरी पत्नी पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी हैं और आपका कोई फोटो भी है, और यदि है तो भेज दीजिए। धन्य है भगवान, अब रमणियां भी मेरे कृत्यों की सराहना करने लगी हैं। ये पहला अवसर है जब मेरी रचनाओं की प्रशंसा किसी महिला ने की है। ये महाशय तो मुझसे खासे प्रभावित है। अजी सुनती हो? अरे मैंने कहा सुन रही हो?
4: आटे में हाथ सने हैं, आ रही हूं।
2: देखिए ये हमारे एक साहित्य प्रेमी मित्र उमापति का पत्र आया है। देखिए देखिए, ये स्वयं तो हमारी रचनाओं के प्रेमी हैं ही, इनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। और एक आप हैं, आपके पास तो समय ही नहीं हमारी रचनाओं को सुनने के लिए।
5: अरे इस चूल्हे चौके से फुर्सत मिले तभी तो कुछ सुनूं। और अगर मैं आपकी रचनाएं सुनने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा?
2: वो
5: आप ही को मुबारक हो, आपके रचना प्रेमी और उनकी पत्नी।
2: उमापति जी की श्रीमती जी ने मेरे परिवार और वंशावली के बारे में पूछा है। ठीक है, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा कि क्या याद रखेंगे वो। चलो लिखता हूं। मेरे दादा एक

0: रियासत के मैनेजर थे। हालांकि ये बात मैं जानता हूं कि एक नौकर मात्र थे। मेरे पिता जो दफ्तर में क्लर्क थे, उन्हें मैंने दफ्तर का प्रधान अध्यक्ष लिख दिया है। और काश्तकारी को जमींदारी बनाना तो बड़ी मामूली सी बात थी, सो वो भी मैंने कर दिया है।
1: और इस तरह 2 सप्ताह और बीत गए, उमापति का कोई पत्र नहीं आया। अश्वनी का महीना और 3रा प्रहर था, रामलीला की धूम थी।

0: जी हाँ जनाब, क्या काम है आपको, किससे मिलना है?
1: जी आप लोगों में से त्रिवेदी जी कौन हैं?
2: जी कहिए, मैं ही त्रिवेदी हूँ।
1: जी आपने मुझे पहचाना?
2: नागा ढील टॉल, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवरे हुए, सादी कमीज, श्याम वर्ण, गले में फूलों की माला और पैर में फुल बूट और हाथ में मोटी सी पुस्तक। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इन महाशय को कहीं देखा है या इनसे कभी मिला हूं। जी माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका।
1: जी मैं आपका अदना सा चाहने वाला उमापति नारायण।
2: अरे उमापति नारायण जी, आप यूं अचानक इस तरह?
1: जी चलिए मकान पर चलते हैं, वहीं सब बताऊंगा।
2: अच्छा,
1: मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ बैठक में हैं, पूछता हुआ चला आया।
2: जी जी आइए चलते हैं, तब तक आप पानी इलायची लीजिए, मैं बस अभी आया।
3: ये महाशय कौन है? आपके जानने वालों में पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
2: अरे मेरे नए मित्र हैं, मेरी रचनाओं के प्रशंसक।
3: इनसे जरा होशियार रहिएगा।
2: आपका अनुमान गलत है, आप हमेशा आदमी को उसकी सच धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं दिल में रहता है।
3: खैर ये रहस्य की बातें तो आप जाने, मैंने तो आपको आगाह कर दिया है।
1: भोजन बहुत स्वादिष्ट था।
2: जी वो बस जल्दी जल्दी में बाजार से मंगवाना पड़ा। और सुनाइए, घर में सब आनंद मंगल तो है ना?
1: जी हाँ सब आनंद मंगल, आपका और आपकी रचनाओं का अक्सर ही घर में जिक्र होता रहता है।
2: जी धन्यवाद जी, आप भी तो कविताएं लिखते हैं ना, कृपया कुछ सुनाइए ना।
1: हाँ,
4: जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। एक दिन आएगा वो फूट जाएगा, सब बेकार है सब यहीं रह जाएगा। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है।
2: वाह वाह उमापति जी, क्या स्वर है, क्या शब्दों का चयन है।
1: जी शुक्रिया शुक्रिया,
2: बहुत सुंदर कविता है, बहुत खूब। अच्छा अब रामलीला का समय हो चला है, चला जाए?
1: जी बिल्कुल,
2: वापिस लौट कर वापिस अपना कविता पाठ सुनते।
1: जी जरूर,
2: आइए।
1: रामलीला का इतना सुंदर मंचन इससे पहले याद नहीं पड़ता मैंने कभी देखा हो।
2: चलिए अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, आइए रात्रि भोज कर ले।
1: जी बिल्कुल।
2: जी हाँ उमापति जी, बताइए अचानक कैसे आना हुआ आपका?
1: भाई साहब मैं अपनी पत्नी को लेने कानपुर जा रहा हूँ,
4: वहीं मेरा मकान भी है और जमींदारी भी,
1: और वहीं ससुराल भी है।
2: जी
1: दरअसल जमींदारी से मुझे घृणा है, मैं साहित्यिक जीवन व्यतीत करने की मंशा रखता हूँ और एक मासिक पत्रिका निकालने का मेरे मन में विचार है। वैसे तो मुझे प्रकाशक एक कविता के 1000 देता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि ये पुस्तिकाएँ मैं अपनी ही लागत पर छपवाऊँ। भाई साहब वैसे तो मेरी धर्मपत्नी एक कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है।
2: अच्छा है। बातचीत में कब आधी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अच्छा उमापति जी शुभरात्रि।
1: शुभरात्रि।
2: अरे उमापति जी सवेरे सवेरे तैयार होकर बैठे, कहीं जाने का विचार है क्या?
1: जी अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही जाऊंगा।
2: अच्छा
1: इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा।
2: अरे नहीं नहीं कष्ट की क्या बात है, निसंकोच कहिए।
1: मैं कल चला तो प्रातःकाल के 4 बजे थे।
2: जी
1: 2 बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए।
2: अच्छा
1: बल्कि यूं समझिए कि सारी रात जागना पड़ा।
2: अरे
1: क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी।
2: जी
1: गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगी और कोट उतार कर रख दिया और लेट गया, तुरंत ही नींद आ गई।
2: अच्छा अच्छा
1: मुगल सराय में नींद खुली, कोट गायब, नीचे ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं, समझ गया किसी महाशय ने उड़ा दिए, आखिर सोने की सजा मिल ही गई।
4: कोट में 50 रुपये खर्च करने के लिए रखे थे। वे भी उसके साथ उड़ गए।

0: अब क्या कहूँ, दरअसल अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो बात वो है कि पत्नी को मैके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे, और फिर तो आप जानते ही हैं कि ससुराल में सैकड़ों तरह के नेकजोग होते हैं, कदम कदम पर रुपए खर्च करने होते हैं, न खर्च करो तो हंसी का बड़ा डर है। मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा।
1: इसकी बातों ने तो मुझे हंसमंजस में डाल दिया है। एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूं, कहीं फिर से वही दशा हुई तो। अरे नहीं नहीं नहीं, संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते हैं। ये तो सज्जन पुरुष लगता है, इस समय संकट में पड़े हैं। इस समय ऐसी बातें सोचना मुझे शुभ नहीं देता।
2: अरे अजी, सुनती हो?
1: अच्छा उमापति जी, आप यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूं। अजी सुनती हो, तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है?
3: क्यों, क्या करोगे?
1: मेरे मित्र जो कलाएं हैं ना, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है ना, लौटते समय देते जाएंगे।
3: तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं ना, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं।
1: वो
3: सभी संकट में पड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं है रुपए वुपे।
1: अजी दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी।
3: तो कह दो इस समय घर में रुपए नहीं है।
1: देखो ये कह देना आसान नहीं है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं दरिद्र ही नहीं मित्रहीन भी हूँ, नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का भी इंतजाम नहीं हो सकता? उमापति को कभी विश्वास नहीं आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते। कम से कम अपना पर्दा तो ढका रहेगा ना।
3: ये लो, ये रही संदूक की चाबियां। तुम्हें जितनी बहस करनी आती है ना, उतना ही अगर लोगों को परखना आता तो आज आदमी हो गए होते।
1: अब
3: ले जाओ, दे दो उसे, लेकिन उधार समझकर मत देना, ये समझ लो कि पानी में फेंक दिए।
4: सातवें दिन उमापति अपनी पत्नी और पुत्री सहित पुनः पधारे, उनकी अच्छी आवभगत की गई, स्वागत में 20 रुपए भी दिए गए। त्रिवेदी जी को विश्वास था कि उमापति जी आते ही उनके 50 रुपए धन्यवाद सहित उन्हें लौटा देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सुनो, इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी।
5: तो क्या तुम्हें सचमुच आशा थी
3: कि वो आते ही रुपए हाथ में रख देंगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि फिर पानी की आशा मत करना, यही समझ लो कि किसी मित्र की मदद कर दी। लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो।
1: बड़ी लज्जा का विषय है, इनके आदर सत्कार में क्या कमी छोड़ी हमने। अब तो बिस्तरा बांध कर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैसों का कोई जिक्र नहीं। मैं तो बड़ा ही अपमानित सा महसूस कर रहा हूं। तुम ठीक कहती थी, मुझे वाकई आदमी की परख नहीं है।
0: त्रिवेदी जी, चलने का समय हो गया है, लेकिन एक बात मन में है जो आपसे कहना चाह रहा हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे कहूँ। दरअसल वो बात यह है कि, और मुझे दुख भी इस बात का है कि मैं इस बार भी आपके रुपए नहीं दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो तहसील वसूल करने के लिए गांव गए हुए थे और मुझे इतना अवकाश नहीं था कि गांव तक जाता। क्या है कि गांव तक रेल का रास्ता नहीं है, सो बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर सीधा ससुराल चला गया और वहां सब रुपए खर्च हो गए। विदाई के रुपए अगर नहीं मिल जाते तो यहां तक आना भी बड़ा मुश्किल था। अब समझ में नहीं आ रहा कि

0: कैसे आपसे कहूँ कि वो क्या है कि अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। अगर आप मुझे 25 रुपये और दे देते तो मैं आपको वहाँ जाते ही भेज दूँगा, विश्वास कीजिए। इस समय मेरे पास इक्के का किराया भी नहीं है।
1: जी मैं तो आ रहा है कि टका सा जवाब दे दूं, क्या करूं, इतनी अशिष्टता मुझसे हो नहीं सकेगी। बड़ी मुश्किल से मन मार कर त्रिवेदी जी ने पत्नी से पैसे लिए। पत्नी ने भी बिना किसी नानुकुर किए रुपए दे दिए। त्रिवेदी जी की मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उमापति जब चलने लगे तो त्रिवेदी जी शिष्टाचार के नाते ही सही उन्हें सड़क तक छोड़ने भी नहीं गए। एक हफ्ते के बाद उमापति जी का पत्र आया कि किसी कार्यवश बाहर जा रहे हैं, रुपए लौट कर भेज देंगे। लेकिन इसके बाद ना तो रुपए आए और ना ही कोई खत। त्रिवेदी जी खत और रजिस्ट्री लिख लिख कर थक कर बैठ गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उनकी धर्म पत्नी ने कहा था वही सच था। इस कपट भरे व्यवहार का मुझ पर बुरा असर पड़ा। मैं इतना उदार नहीं कि अपने ऋण को भूल सकूं। अरे महीनों सिर खपाता हूं, कलम खिसता हूं, तब जाकर कहीं नगत नारायण के दर्शन होते हैं।
2: त्रिवेदी जी, आपसे मिलने कोई युवक आया है, स्वयं को कंपोजिटर बताता है।
1: ठीक है, अंदर भेज दीजिए। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
3: महाशय, मैं बिहार के एक संपन्न परिवार से हूँ। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, मित्रों की संगति में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे घर वालों ने किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया। इस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है।
1: ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 15 रुपये मासिक से अधिक नहीं दे सकूंगा और तुम्हें कंपोजिटर का कार्य करना होगा।
3: जी, मुझे स्वीकार है।
1: ठीक है। मुनीम जी,
4: जी
1: ये लड़का आज काम पर नहीं आया, कुछ कहकर गया था क्या आपसे?
2: कल से बुखार बता रहा था, शायद इसी वजह से ना आया हो।
1: भाई बड़ा सलीके वाला लड़का है, अपना काम बखूबी करता है, मुझे तो बहुत पसंद है।
2: देखिए देखिए त्रिवेदी जी, वो चला आ रहा है।
3: नमस्ते सर, माफी चाहता हूँ, आने में देर हुई। दरअसल कल से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है, शायद आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकूँगा। यदि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं घर चला जाऊँ, वहाँ जाते ही रुपए का प्रबंध करके भेज दूँगा।
1: ये तो वास्तव में बीमार है, मैं इससे भली भांति परिचित हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो यहाँ रहकर कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकेगा। इसे सचमुच सहायता की जरूरत है, मगर मुझे शंका है कि कहीं ये भी रुपए हजम ना कर जाए। जब एक विचारशील सुयोग्य पुरुष धोखा दे सकता है तो ऐसे अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे आशा की जाए कि वो अपने वचन का पालन करेगा? भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बेहद दुख है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, बिल्कुल खाली हाथ हूं, मुझे खेद है।
3: आप चाहे तो कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर सकते हैं, मैं आपके रुपए अवश्य भेज दूंगा।
1: यहां तुम्हारी नियत साफ है, लेकिन घर पहुंचकर भी यही नियत रहेगी, इसका क्या प्रमाण है? नियत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं ये भी कौन जाने। रुपए तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है।

0: अब देखो, इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास आज रुपए नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो वो ले सकते हो। ये तो चला गया, लेकिन क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं। अरे, मैं कहां का इतना धनी हूं जो यूं पैसे पानी में फेंकता फिरूं?
1: सुनो बेटा, सुनो, त्रिवेदी जी ने कुछ कहा है क्या?
2: पंडित जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा के पैसे भी नहीं हैं। मैं घर वापस लौट जाना चाहता हूँ, इसलिए मालिक से कुछ रुपए उधार लेने गया था, लेकिन रुपए नहीं मिल सके।
1: तो फिर क्या करोगे? जितने दिन तुमने काम किया है उससे तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। अरे, पहले तुम ये रोना बंद करो। लो, ये 15 रुपए रखो और तुरंत घर चले जाओ। जाकर सबसे पहले अपना इलाज करवाओ।
2: नीम जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगा। घर पहुंचते ही मैं रुपए वापस भेज दूंगा। नमस्ते।
0: अरे मुनीम जी, ये लड़का क्या कह रहा था? कुछ कहकर गया है क्या?
1: हाँ, वो बता रहा था कि घर जाना चाहता है। मुझसे जो मदद बन पड़ी मैंने कर दी।
0: अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा किया आपने। ये अच्छा ही हुआ। चलो, मुझसे ना सही, किसी और से ही सही। मैं भी तो यही चाहता था कि इसकी मदद हो जाए। अब मेरे दिल का बोझ हटा। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन ये सब मेरे उन कवि मित्र के कपट का परिणाम है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। वरना क्या मेरे पास इस लड़के को देने के लिए 15 रुपए नहीं निकलते? मैं अपनी रचनाओं और आलेखों में बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, दया, मनुष्यता, सद्व्यवहार, और मौका पड़ने पर मैं स्वयं ही साफ बच निकला। अरे, मुझसे अच्छे तो ये मुनीम जी निकले, जो मेरी रचनाओं को पढ़ पढ़कर इनका जीवन ही बदल गया है। गुरु गूढ़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। चलो, ये भी अच्छा है, मेरे लेखों का मुझ पर ना सही, दूसरों पर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। भले ही चिराग तले अंधेरा सही, पर उसका प्रकाश तो फैल रहा है। और कहीं मुनीम जी को पैसे वापस नहीं मिले तो, जिसकी मुझे पूरी आशा है। तो फिर खूब छकेंगे। महाशय को आड़े हाथों लूंगा। किंतु त्रिवेदी जी की अभिलाषा पूरी ना हो सकी। हां, एक काम उन्होंने अवश्य किया, इस संपूर्ण घटना को आलेख के रूप में एक पत्रिका में छपवा दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चौथे ही दिन उनके दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा था।
3: पोस्टमैन, आपका मनी ऑर्डर है।
0: मनी ऑर्डर? अरे, ये तो उमापति ने भेजा है। अरे, सुनती हो? ये देखो, उमापति जी ने 75 रुपए वापस भेजे और क्षमा लिखा है।
4: अच्छा, इन्हें ले जाकर संभाल कर संदूक में रख दो। तुम इतने लोभी हो, मुझे तो पहली बार मालूम हुआ। कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज नहीं लौटा पा रहा है तो अवश्य ही वो विवश है। बार बार तकाजा करके उसे लज्जित करना कोई भल मनसाहत नहीं है। अरे, जब तक किसी व्यक्ति का पूरी तरह से नैतिक पतन नहीं हो जाता, तब तक वो किसी को धोखा नहीं देता। मैं इन रुपयों को तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक ये पता नहीं चल जाए कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ।
0: उसके बाद उमापति का कोई पत्र नहीं आया जिससे ये पता चले कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ। पर मैं इस समय ऐसी उदार

0: बातें सुनने को तैयार नहीं था। डूबा धन मिल गया, मैं तो इसी में बहुत खुश था।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की जादूगर को सलाम की 11वीं कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और सतीश कक्कर। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

संग्रहालय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना जादूगर को सलाम धारावाहिक का 11वां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी

0: कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आईपीएल में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युव वाणी। योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा गर्मियों में रखें स्वास्थ्य की देखभाल। इसके अलावा क्रम जीवनालोक में आज का विषय है खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल जरूरी है। दोस्तों, साथ ही आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। साथियों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को कम करना है। हर वर्ष यह सप्ताह विभिन्न विषयों के साथ मनाया जाता है ताकि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पैदल यात्री हो, चालक हो या साइकिल सवार, सभी को सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथियों, आज के समय में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं, जिनमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में इस सप्ताह का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सड़क सुरक्षा का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदार नागरिक होने का संकेत भी है। अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही, तेज गति, नशे में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने के कारण होती है। यदि लोग थोड़ी सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें तो इन दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे जागरूकता अभियान, रैलियां, कार्यशालाएं, स्कूलों में कार्यक्रम। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गति सीमा का पालन करने और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन भी सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर देते हैं। भारत जैसे देश में जहां सड़क परिवहन बहुत अधिक उपयोगी है, सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं, जिनका मुख्य कारण नियमों की अनदेखी और जागरूकता की कमी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, युवा वर्ग इस अभियान में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। वे न केवल खुद नियमों का पालन करें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। स्कूल और कॉलेज सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं ताकि बच्चों में शुरू से ही सही आदतें विकसित हो सकें। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें और नियमों का पालन करें

तो हम एक सुरक्षित और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह हमें यही संदेश देता है कि सुरक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस प्रकार सड़क सुरक्षा सप्ताह न केवल एक अभियान है बल्कि यह जीवन को बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे दूसरे विषय गर्मियों में रखें स्वास्थ्य की देखभाल पर चर्चा करने का। दोस्तों गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में बदलाव करके हम इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले गर्मियों में पानी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। शरीर से पसीने

के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, गर्मियों में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तला भुना मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इसके बजाय हल्का सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, सलाद का सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। साथ ही भोजन समय पर करना और अधिक देर तक भूखे ना रहना भी जरूरी है। दोस्तों, इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक होता है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू, हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो एक गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय में खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी है तो सिर को ढककर रखें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और धूप का चश्मा या छाते का प्रयोग करें। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, साथ ही स्वच्छता का ध्यान भी गर्मियों में बहुत जरूरी है। इस मौसम में बैक्टीरिया, वायरस तेजी से फैलते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, हाथों को बार बार धोना चाहिए। बाहर का खुला और अस्वच्छ भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, गर्मियों में पर्याप्त नींद और आराम भी जरूरी है। अधिक गर्मी होने के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथ ही हल्का व्यायाम और योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के कारण चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहें, सकारात्मक सोच रखें और ठंडी जगहों पर समय बिताएं। संगीत सुनें, किताबें पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें, स्वच्छता का पालन करें, तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। साथियों, आइए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रह जाता है। वहीं केवल खेलकूद पर ध्यान देने से शिक्षा का अभाव रह जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। दोस्तों, पढ़ाई का महत्व समझना जरूरी है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, सही और गलत में अंतर करना सिखाती है और जीवन में सफल बनने का मार्ग दिखाती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में अच्छी शिक्षा ही एक मजबूत भविष्य की नींव रखती है। इसलिए छात्रों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खेलों का भी उतना ही महत्व है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। यह हमें अनुशासन, टीमवर्क और नेतृत्व जैसे गुण सिखाता है। खेल खेलने से मानसिक तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। जो छात्र नियमित रूप से खेलते हैं वे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में भी सुधार होता है। यदि कोई छात्र केवल पढ़ाई करता है और खेलकूद से दूर रहता है तो वह जल्दी थकान महसूस करता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वही जो छात्र केवल खेलकूद में रुचि रखते हैं और पढ़ाई को नजरअंदाज करते हैं वे भविष्य में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए दोस्तों, दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल बनाने के लिए समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपने दिनचर्या में पढ़ाई और खेल दोनों के लिए समय निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि दिन में कुछ समय पढ़ाई के लिए और कुछ समय खेलकूद के लिए निश्चित किया जाना चाहिए। इससे ना तो पढ़ाई प्रभावित होगी और ना ही खेलकूद। दोस्तों, आज के समय में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां खिलाड़ी और विद्यार्थी दोनों ही क्षेत्रों में सफलता छात्र प्राप्त कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सही योजना और मेहनत की जाए तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि खेलकूद और पढ़ाई दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बीच संतुलन बनाकर ही एक स्वस्थ, सफल और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। इसलिए हर छात्र को चाहिए कि वह अपने समय का सही उपयोग करे और खेलकूद और पढ़ाई दोनों को समान महत्व दे।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल होना जरूरी है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य के समग्र विकास के लिए खेलकूद और पढ़ाई दोनों का समान महत्व है। केवल पढ़ाई करने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, लेकिन शारीरिक और

0: अभी यह वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
8: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर अपना।
10: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
10: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना।
9: बुद्धू सुधर जा।

0: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
0: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: दी, ये देख कैसे।
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका,
6: हाँ मेरा फेवरेट कलर
7: हमेशा शॉपिंग।
8: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
0: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
0: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल।
11: दादी कौन सा प्लांट है?
12: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
13: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
11: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
13: क्यों?
11: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
13: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
14: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
15: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए आजाद फिल्म का गीत। अरिजीत सिंह और हंसिका पारीक ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

धूम धाम। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। विशाल ददलानी ने इस गीत को गाया है। सिद्धांत कौशल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है क्लिंटन सेरेजो और बेंका गोम्स ने।

अगला गीत नीति मोहन और पपुन की आवाज़ों में है। तुमको मेरी कसम फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है श्वेता बोथरा ने और संगीतकार हैं प्रतीक वालिया।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवा रहे हैं छावा फिल्म का गीत हीरल विरदिया और एआर रहमान के स्वरों में। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है एआर रहमान ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत धुरंधर फिल्म से, शाश्वत सचदेव, शहजाद अली और शुभदीप की आवाज़ें, इरशाद कामिल और साहिर की लुधियानवी की शब्द रचना है, संगीतकार हैं शाश्वत सचदेव और रोशन।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम। आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड।

0: ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन और महापूजा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में श्री चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी और आईपीएल क्रिकेट में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है फिल्म संगीत के लिए, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। अनिल पांडे के लिखे गीत को संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने।

आइए बागी फिल्म का गीत सुनते हैं अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में। समीर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है आनंद मिलिंद ने।

जुबिन नोटियाल और विवेक हरिहरन की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फतेह फिल्म का गीत। गीतकार मनदीप खुराना और संगीतकार विवेक हरिहरन।

जाग उठा इंसान फिल्म का गीत सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार राजेश रोशन।

मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

अगला गीत सुहाग फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह और ने इस गीत को गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत दिया है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

अगला गीत विवाह फिल्म से, उदित नारायण और श्रिया घोषाल की आवाज़ें, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

अमित त्रिवेदी की आवाज़ों में इरशाद कामिल का लिखा और अमित त्रिवेदी का ही संगीतबद्ध किया गीत सुनते हैं। फिल्म है ऊंचाई।

क्षमा कीजिए श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं कुर्बान फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ऊंचाई फिल्म का गीत। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, स्वर और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

अमित त्रिवेदी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुँचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था,

0: लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
1: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण के लिए।

पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर हम सुनवाएंगे कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान छिंदवाड़ा केंद्र का होगा। आपकी फरमाइश, कार्यक्रम का समय है 9:30।

10 बजे सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में विद्वान श्री डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आप सुनेंगे 7:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में आज विषय है जायद उद्यान की फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब एक नज़र कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर होगा सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

0: मई सवेरा ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 9:15 पर लोक संगीत में सुनिए राधेश्याम विश्वकर्मा के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। उर्दू कार्यक्रम आयना में 9:30 पर सुनेंगे मिर्ज़ा मुमताज बेग की तकरीर सर सैयद अहमद खां के अदबी कारनामे। इसके अलावा सुनेंगे अयाज कमर का कलाम। ज़िले की चिट्ठी प्रसारित करेंगे 10:00। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोदवादन हम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। राग है भैरवी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है 12:00, दोपहर 2:30 और रात्रि 10:00। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनिए जादूगर को सलाम धारावाहिक की 12वीं कड़ी। 1:00 सुनिए स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम योगदान भोपाल केंद्र का। लोक संगीत में 1:30 पर सुनेंगे पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। सुगम संगीत में 1:45 पर कल हम आपको सुनवाएंगे प्राची कोकण ठानकर के गाए गीत और भजन। कल शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, योगदान भोपाल केंद्र का होगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए 6:00। 6:40 पर होगा समसामयिक विषय पर केंद्रित कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय रहेगा 6:45। 8:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। पब्लिक स्पीक का समय रहेगा 9:30। ये कार्यक्रम दिल्ली से रिले होगा। 10:30 पर राग रजनी में कल सुनिए पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोदवादन, राग होगा कामोद। कल शाम 7:21 पर भोपाल केंद्र से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है क्रम लोक रंग। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: पापा, लाइए 3,000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
5: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
5: अपना मोबाइल लाओ,
6: ले ले।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में PM ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत की कई

0: ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं।
2: प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें दी, 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और बाद में भी 3 पुरस्कार मिले।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात मिली है।
2: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यह विदिशा संसदीय क्षेत्र में बनेगी। 1,000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीना के अंदर अंदर हो गई है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1,059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करेगा।
4: गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी।
0: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का

वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय ITI हरदा में एक दिवसीय रोजगार स्वरोजगार मेले युवा संगम का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में PM ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

ग्राम सभा सुनबे बारे हमारे सभी किसान भैया बहन को महेश भैया की राम राम। भैया रहूँ, आज कार्यक्रम ग्राम सभा लेकर हम हाजिर हुए हैं और विशेष रूप से हम आपको सबसे पहले तो जो ही बता दें कि आज जो है 7:30 से 8 बजे तक शुरू हुए वारे कार्यक्रम में विषय का रखे हैं। आज को विषय हुई है जायद की उद्यान की फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामिक कार्य, और इस विषय पर जानकारी देवे के लाने आपसे बतियाबे के लाने डॉक्टर विजय अग्रवाल जी बस पहुँचवे ही रहे हैं, तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। और हाँ, फ़ोन नंबर नोट कर लें, भोपाल को STD कोड

0: 7555 और टेलीफोन नंबर है 2660902 2660903। आप किसान भैयानों तैयारी करें, तब तक हम और दूसरी तैयारी करें और फिलहाल सुनाते हैं जो संदेश।
1: बंधू नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: और भैयानों, आप जो है अपने प्रश्न तैयार करें, तब तक हम और ज़रूरी बातें स्वीकार लें। अब देखो, ई वक्त खेतन में हम देख रहे हैं कि कई किसान भाई जो हैं थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं। कैसे कि फसलें सारी कट गई है, अब जो है जायद की फसलें की जो तैयारी कर रहे हैं उन किसान भैयानों के लाने ज़रूर जो है कछु थोड़ा बहुत अभी खेतन में काम है, बाकी जो है थोड़ा सा जो गेप है ये गेप की पूर्ति करवे के लाने आप दूसरे काम कर सकते हो। कई किसान भाई जो है ई वक्त मिट्टी परीक्षण करवा रहे हैं और करवाना भी चाहिए। भैयानों देखो, हमारे जो कृषि विशेषज्ञ जी कहते हैं कि कम से कम 3 साल में एक बार मिट्टी परीक्षण होना चाहिए। और कई बार तो हमने देखो कि कई किसान भाई ऐसे भी है प्रदेश में जिनने अभी तक मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया। अब देखो भैया, मिट्टी परीक्षण से कई फायदे हैं। पहलो फायदा तो जो है कि आप जो है लागत निर्धारित कर सकते हो, यानी कि लागत आपकी जो कंट्रोल में रहते हैं। अब जैसे कई बार कहा होता है कि जो कई तत्व है आपके खेत में मौजूद है और आप फिर भी जो है उर्वरक डाले जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरक डाल रहे, खाद डाल रहे, तो उन तत्वों की पहचान हो जाते हैं, तो उनसे आपकी लागत कंट्रोल हो जाते हैं। और इसके साथ में जो है जो खेती की जो उर्वरा शक्ति है उनकी भी जो है आपको पकड़ मजबूत हो जाते, पहचान हो जाते हैं कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है, मिट्टी का स्वभाव कैसा है, मिट्टी की सेहत कैसी है ना। और इसके अलावा आप देखते हो कि कई बार हमारे किसान भाई जो है जो अंदाजों नहीं लगा सकते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी हो सकते हैं, उनकी वजह यही होती है कि मिट्टी परीक्षण करवाने से जिन तत्वों की ज़रूरत होती है उनको पता लग जाते हैं और जो तत्वों की कमी है उनकी अपन पूर्ति कर दें, और जब पूर्ति कर देते तभी जो है बढ़िया से अच्छे से हमें उत्पादन मिले। तो अब कोशिश यही करें कि आप जो है अपने खेत की मिट्टी को परीक्षण करवा लें, आसपास कहूँ भी जो मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला है वहाँ संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क कर लें, या फिर आपके क्षेत्र के जो कृषि कॉलेज है, कृषि विश्वविद्यालय है, इनसे संपर्क करें। और कई जगह जो है निःशुल्क मिट्टी परीक्षण होते हैं, तो आप जो है कोशिश करें कि परीक्षण करवा लें। और अब जो है टाइम हो रहा है बुंदेली समाचारन को।

0: बुंदेली समाचार।
1: नमस्कार भैयारों, मैं हूं महेश सोनी, लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करो। इस मौका पे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है कि केंद्र सरकार के प्रयासन के कारण ही है भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट को प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। बिन ने कही है कि ईंधन को संयमित उपयोग आज के टाइम की जरूरत है। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभर के सामने आओ है। श्री मोदी ने जा भी कही है कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादन को उपयोग केवल जरूरत के अनुसार ही करो जाना चाहिए। इनसे कहा हुई है कि विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करवे में मदद मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में आयोजित 1059 करोड़ रुपये की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री को शिलान्यास और 130 करोड़ रुपये की लागत के अनेक विकास कार्यों को भूमि पूजन और लोकार्पण करो। इस मौका पे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है कि सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोले हैं और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिले हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह को वातावरण बन हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और इनमें सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है।

अमृत पर्व पे पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर को 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक करो जय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा आयोजित हुई है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां बड़े स्तर पर जारी हैं। इतने श्रद्धालुओं के लाने घाटों को निर्माण करो जा रहे हैं और घाटों तक पहुँचवे के लाने पहुँच मार्ग बनाए जा रहे हैं। इन रस्तों के निर्धारण के लाने संभाग आयुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह प्रतिदिन अधिकारियों के दल के संगे छपरा के कई घाटों को निरीक्षण कर रहे हैं। इन अधिकारियों ने आज दल के संगे वाकणकर ब्रिज से लालपुर भोकी माता तक छिपरा नदी के किनारे पैदल भ्रमण करो और प्रस्तावित रस्तों को चिन्हित करो। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों के 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करी जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताओ है कि टोल पर्ची बनावे को टेम संजा 6 बजे से बढ़ा के रात 10 बजे तक कर दो है। देयक जारी करवे को समय भी रात 12 बजे तक कर दो है। गेहूं को उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक करो जी हैं। शनिवार 9 मई को 31,629 किसानन से 2,59,395 मीट्रिक टन गेहूं को उपार्जन करो गयो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर में विदिशा में मामा कोचिंग को शुभारंभ करें। जा पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध करावे के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। मामा कोचिंग क्लासेस के जरिए विद्यार्थियों को MPPSC, बैंकिंग, SSC, DRDO और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क कोचिंग प्रदान करी जी हैं। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लाने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिले हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कही है कि इन सुधारों से समय पर वेतन को भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। और जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न है।

0: बुंदेली समाचार।
1: और अब श्रोताओं, 7:30 बज गए हैं और अब हम शुरू करते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। किसान भाइयों, आज का हमने विषय रखा है जायद की उद्यान की फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामूहिक कार्य। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है, वो हम तक पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत नमस्कार।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सजीव टेलीफोनिंग कार्यक्रम है। आप सीधे हमसे जुड़ते हैं टेलीफोन के माध्यम से। एक बार पुनः हम आपको टेलीफोन नंबर बता दें, भोपाल का STD कोड 0755 टेलीफोन नंबर है 2660902। एक और दूसरा नंबर है हमारा 2660903। इन नंबर्स पर आप टेलीफोन लगाएं और सीधे हमसे जुड़ेंगे, हमारे विशेषज्ञ से बात करेंगे। आपसे एक बार ज़रूर कहेंगे कि आप विषय से संबंधित सवाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषय हम पुनः दोहरा देते हैं, जायद की उद्यानिकी फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामूहिक कार्य। इस समय यानी कि आपको जायद की फसलों में क्या काम करने हैं, खेत में क्या काम करने हैं, और जायद की फसलों जो उद्यानी की फसलें हैं खासतौर से, उनमें पोषक तत्व का किस तरह से आपको प्रबंधन करना है, ये तमाम चर्चाएं हम करेंगे। हमारे किसान भाई यदि लाइन पर आते हैं तो उनके सवालों के जवाब भी डॉक्टर विजय अग्रवाल जी देंगे। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय रखा हमने, तो आप थोड़ा सा स्पष्ट करें कि इस समय खेतों में क्या काम चल रहा है।
3: देखिए, अभी इस समय अगर जायद की बात करते हैं तो इस समय बहुत सारी सब्जियां हैं जो खेतों में लगी हुई हैं, जो विशेषकर अपन देखते हैं कि जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि कद्दू हुआ, लौकी, गिलकी, तोरई, करेला, इसके अलावा खरबूज और तरबूज भी बड़े पैमाने पर इस समय खेतों में लगे हैं। इसके अलावा भिंडी की फसल भी लगी हुई है, तो इस समय उनमें फलन भी आ रहा है, फूल भी आ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी तुड़ाई होकर बाज़ार में भी जा रही है। तो इस समय उसमें बहुत सारे देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे जो उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत जो बगीचे

0: हैं इस समय जो हमने पहले लगाए थे उनमें भी कुछ देखभाल की आवश्यकता होती है। और साथ में
1: डॉक्टर साहब हम चर्चा जारी रखेंगे, किसान भाई का टेलीफोन हम लेते हैं।
0: जी जी
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में। आप नाम बताएं अपना।
2: जी नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, आप शुभ नाम बता दें, स्थान भी बता दें हमें।
2: जी ग्राम गौर जामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
1: हाँ कटारे जी, आप सवाल करें।
2: जी सर, से मेरे दो सवाल थे। पहला सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी उद्यान की फसलें लगी हुई हैं किसान भाइयों की, तो उसमें ये जानना चाह रहे थे कि जो जैविक खाद है उनमें कौन कौन सी खादों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जो आजकल दुकान पर भी मिलते हैं बाल्टी वगैरह आती हैं जो। और दूसरा सवाल ये था कि जैसे सब्जियाँ हैं तो दोपहर में पानी देने से कोई नुकसान तो नहीं है, जैसे गोभी या फिर इसमें भिंडी के बारे में जानना चाह रहे थे। गोभी तो अभी नहीं लगी है, गलती से बोल दिया, भिंडी और तरबूज लगा हुआ है।
0: देखिए पहली चीज जो है आपने बोली है कि अभी इस समय पानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं दोपहर के समय। दोपहर के समय पानी देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उससे पौधों पे नुकसान होगा। आपको पानी देने का सबसे अच्छा समय है कि आप सुबह सुबह आप पानी दीजिए और 8-10 बजे तक दे दीजिए पानी। इसके अलावा बाद में देना है तो शाम को 6 बजे के बाद पानी देना ज़्यादा उचित रहता है। दोपहर में पानी देने से पौधों को नुकसान होने की संभावना रहती है। अब दूसरी बात आपने बोली है कि आप इसमें जैविक पोषण प्रबंधन करना चाहते हैं, तो सब्जियों में सामान्यतः इस समय जो सब्जियां लगी हैं उसमें कई सारी जैविक चीज़ें आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जीवाणु खाद होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उसमें इसके अलावा अपन चूंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट और फॉस्फेट वाली खाद भी देते हैं, तो उसके लिए फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो PSB होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जीवामृत जैसी जो होती हैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत, उनको भी प्रयोग इस समय आप कर सकते हैं।
1: जी तो विपिन कटारे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया। और अगले किसान भाई का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी नमस्कार
1: जी, आप शुभ नाम बताएं अपना, स्थान भी बता दें।
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: शिमला, शिमला से राकेश जी बताएं क्या समस्या अपनी।
3: जी जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि हम प्राकृतिक खेती किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं, खासकर जो है शिमला मिर्च और टमाटर।
0: देखिए आप है ना प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी है ना ये तो गाय गोबर इन पर प्राकृतिक चीज़ों पर आधारित रहती है, तो इन सबसे पहले अपने खेत में आपको जो भी आप रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं पहले तो सबसे पहले उनका प्रयोग आपको खेत में बंद करना पड़ेगा है ना। उसके बाद आपको जो गाय का गोबर है, गोमूत्र है, उससे उसका ही पोषण तत्व जैसे जीवामृत वगैरह, घन जीवामृत, उसका आपका प्रयोग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसके अलावा जो इसमें कीटनाशक या बीमारियों के लिए जो दवाओं का प्रयोग होता है वो भी आपको जैविक पद्धति से ही तैयार करनी पड़ेगी प्राकृतिक रूप में, जैसे नीमास्त्र वगैरह हुआ, पत्तियों का घोल हुआ, 5 पत्ती घोल हुआ, उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के कीटनाशक का आपको प्रयोग नहीं करना है। और साथ ही साथ इसमें आपको जो रासायनिक पोषक तत्व हैं जैसे खाद हैं उनका प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है।
1: तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिमला हिमाचल प्रदेश से टेलीफोन लगाया और जो आपकी जिज्ञासा थी उसका समाधान डॉक्टर विजय अग्रवाल जी ने कर दिया है। अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम, सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है इस समय हेलो ग्राम सभा।
4: जी सर नमस्कार
1: जी, आप शुभ नाम बताएं अपना, स्थान भी बता दें।
4: मैं मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जिला कोना मध्य प्रदेश से।
1: धाकड़ जी बताएं क्या समस्या है अपनी।
4: मेरी समस्या जो है ये है सर जी, ये मिर्ची है कुछ पेड़ मिर्ची की वो बताए
1: हाँ।
4: उसमें बैगन भी है और टमाटर भी है
1: हाँ हाँ।
4: उसमें मतलब कुकड़ा है।
1: कुकड़ा, ये कुकड़ा रोग की कुछ वजह होगी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको।
0: देखिए अभी इस समय जो है सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में टमाटर जैसी फसलें जो होती हैं वो अभी उपयुक्त नहीं होती हैं और कई प्रकार की बीमारियां लगती है। मिर्ची में जो आपने बोला कुकड़ा लगने का, वो कुकड़ा लगने की समस्या आती है और ये एक वायरस जनित रोग होता है। और आप देखोगे पौधे के पास जाओगे, पत्तियों को हिलाओगे, पौधे को हिलाओगे तो सफ़ेद मक्खियाँ उसमें उड़ती हुई दिखाई देंगी, तो उसका अपन को नियंत्रण करना करना है।

0: से कुकड़े का जो समस्या है या जो चूड़ा मुड़ा जो बीमारी लग रही है उस पर नियंत्रण हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने खेत में नीम के तेल का स्प्रे करें, 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके अलावा रासायनिक उपचार के रूप में इमीडा क्लोप्रिड नाम की दवा बाजार में मिलती है, इसकी भी 0.3 ml मात्रा 1 liter पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, इससे कुकड़े पर नियंत्रण हो जाएगा।
1: जी, तो मांगीलाल धाकड़ जी, आपने गुना मध्य प्रदेश से टेलीफोन लगाया और मिर्ची के पेड़ में जो कुकड़ा की समस्या है उसके बारे में समस्या आपने बताई, डॉक्टर साहब ने आपकी समस्या का निदान भी बताया। लगातार हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं, देखिए हमें संकेत मिल रहा है, किसान भाई लाइन पर है। जी
2: हेलो।
1: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं, स्थान भी बता दें हमें।
2: गुड्डू चौबे बोल रहा, बामहरी ढूंढा जिला सागर से।
1: चौबे जी बताएं क्या समस्या है।
2: समस्या नहीं, हमारे जो प्रश्न है तो महोदय जी से।
1: जी,
2: यह सोयाबीन अपन बीज उपचार करने तो देसी नुस्खा माने जैविक बार बताएं।
1: बिल्कुल बता रहे हैं।
0: हाँ देखिए, सोयाबीन में अगर जैविक उपचार करना

0: शुभ नाम बताए, स्थान भी बता दें हमें।
1: गुड्डू चौबे बोल रहे बमहरी ढूंढा जिला सागर से।
0: चौबे जी बताएं क्या समस्या है।
1: समस्या नहीं, हमारे जो प्रश्न है तो महोदय जी से
0: जी,
1: यह सोयाबीन अपन बीज उपचार करने तो देसी नुस्खा माने जैविक वालों बताएं।
0: बिल्कुल बता रहे हैं।
2: हाँ देखिए, सोयाबीन में अगर जैविक उपचार करना है तो एक जैविक फफूंदनाशी आता है ट्राइकोडर्मा, है ना। तो किसी भी आप, जैसे आपके इधर कृषि विज्ञान केंद्र है सागर जिले में, दो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके वैज्ञानिक से संपर्क स्थापित करके आप ट्राइकोडर्मा नामक आप इसमें जो जैविक फफूंदनाशी होता है उससे आप उपचार करें। और इसके अलावा आप उसमें, इसके अलावा गोमूत्र से भी उपचार कर सकते हैं। तो आप अपने
0: यादव जी बताएं क्या समस्या है।
3: मूंग बोवी है तो उसके पत्ता गुड़िया रहे हैं, और भिंडी है जो कि मैं थोड़ी कीड़ा लगा है, कीड़ा ही हो रही है भिंडी।
0: अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब बताओ।
2: देखिए मूंग में, तो मूंग में आपको ध्यान रखना है कि मूंग में जो अभी पत्तियां पीली पड़ने की, थोड़ा सा मुड़ने की, तो इसमें वायरस जनित रोग लगने की संभावना होती है, जो आपकी बात से समझ में आ रहा है। तो उसमें अपन को क्या करना है, उसमें आप अगर वैसी ज़्यादा समस्या आ रही है तो नीम के तेल का छिड़काव कर दें। 5 ml 1 liter पानी के मान से आप इसमें छिड़काव कर दें। 15 liter का पंप है, 75 ml उसमें छिड़काव कर दें। और अगर आपको लगता है नहीं हो रहा, नियंत्रण नहीं हो रहा, तो इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथोक्सन नाम की दवा आती है रासायनिक उपचार के लिए, उसको आप उसका उपचार कर, उसका छिड़काव कर देंगे तो वो ये समस्या जो आ रही है वो नहीं आएगी इस समय।
0: तो यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया। अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में। शुभ नाम बताएं अपना।
4: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, आप शुभ नाम बताएं अपना।
4: बिल्कुल, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: नामदेव जी आप सवाल करें
4: जी। सर जी मेरा ये सवाल है कि बैगन लगे हैं मेरे, छोटे छोटे होते हैं जो देसी बैगन, वो लगाए मैंने, उसमें क्या हो रहा है कि अभी उसमें इल्ली का प्रकोप था 15 दिन पहले, तो मैंने कोई भी बाजार से दवाई ना लेके हुई, मैंने क्या किया, नीम का तेल का छिड़काव कर दिया था तो रात मिल गई थी। अब 2-3 दिन से फिर से इल्ली का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो नीम का तेल का फिर से उपयोग करूं या फिर उसमें कोई दवाई डालूं। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मिर्ची में, अभी मिर्ची आने को तैयार थी लेकिन अभी 2-8-10 दिन पहले बारिश के खातिर वो मिर्ची का फूल झड़ गया, तो अब उसमें मिर्ची कौन सी ऐसी दवाई डालू जिससे मिर्ची का प्रकोप झड़ने का फिर ना हो सके।
2: देखिए इस पे ना, पहले बैगन की बात करते हैं। नीम का तेल बिल्कुल सही रहता है, है ना। नीम का तेल का आप पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नीम के तेल से उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इसमें एमामेक्टिन बेंजोइट नाम का रासायनिक दवा आती है, 1 ml मात्रा 1 liter पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। मिर्ची की जहाँ तक बात है फूल झड़ने की है, तो नमी को थोड़ा सा बना के रखिएगा। तापमान बढ़ने से फूल झड़ने की संभावना होती है। कभी कभी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन की कमी होती है, तो उससे भी फूल झड़ने की समस्या आती है। तो उसके लिए आप बोरेक्स जो रहता है 1.5 से 2 gram 1 liter पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें सूक्ष्म, आपने इसमें पोषक तत्व नहीं दिए हैं, तो 19-19-19 जो आता है घुलनशील उर्वरक, उसका भी 5 gram 1 liter पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें। संभवतः तापमान अधिक होने के कारण और पोषक तत्वों की कमी के कारण फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है।
0: तो मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले किसान श्रोता का हम लेते हैं टेलीफोन, सुनते हैं उनकी क्या समस्या है। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: जी मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले में आपका स्वागत करता हूँ।
0: वैशाली जिला बिहार, डॉक्टर साहब आप अपना नाम पुनः दोहराएंगे।
5: डॉक्टर सितारे हूँ।
0: जी जी जी, अब आप सवाल करें डॉक्टर साहब से।
5: जी भिंडी बोया था और कद्दू भी।
0: हाँ।
5: फसल तो बहुत बढ़िया फला, पानी बरसने के बाद उसमें कीड़ा जैसा लग गया है, कीड़ा भागता नहीं है।
0: अच्छा
2: जी जी, वो क्या होता है, कद्दू हुआ, कद्दू में क्या होता है कि फल मक्की का प्रकोप हो जाता है, और फल मक्की का जो प्रकोप होता है वो पौधे के जो फल होते हैं उसमें छेद करके अंडा दे देती है, और फल अंदर अंदर खराब होके गिर जाता है, जो आपकी बात से समझ में आ रहा है। तो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए आप सबसे अच्छा होता है नीम का

0: तेल का प्रयोग करें या फल मक्खी के प्रपंच आते हैं बाजार में, उनका आप एक एकड़ में 5-6 प्रपंच जगह जगह पर आप लटका देंगे, तो फल मक्खी पर जो का जो नुकसान हो रहा है फलों पे, वो नुकसान नहीं होगा, फल सड़ेंगे नहीं, और जो सड़े हुए फल है या नुकसान ग्रसित फल है उनको आप निकाल कर अलग कर दीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो उससे थोड़ा सा ये समस्या है वो कम हो जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया वैशाली नगर बिहार से, और लगातार हमारे पास किसान भाइयों के टेलीफोन आ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हर किसान की जो समस्या है उसका निवारण करें। एक टेलीफोन हम लेते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसी कारण से आवाज़ नहीं आई, हम तक नहीं पहुंच पाई, खैर बड़ा। डॉक्टर साहब लगातार जो हमारे किसान भाई इस समय जो है सामूहिक तौर पर जो कार्यों की जानकारी ले रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो रहा है कि हमारे जो सुन रहे हैं दूसरे किसान भाई उनको भी लाभ मिल रहा है। अब देखिए हमें संकेत मिल रहा है, एक किसान भाई लाइन पर है, चलिए उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार।
2: जी सर नमस्कार।
1: आप शुभ नाम और स्थान का नाम हमें बता दें।
2: जी मैं जगत सिंह चढ़ार, ग्राम पिपलिया भराई, तहसील बेगौन, जिला रायसेन से बोल रहा सर।
1: चढ़ार साहब क्या सवाल है आज का?
2: सर ये बोल रहा है,
1: हाँ
2: इस समय सोयाबीन की कौन कौन सी किस्में बनी जा सकता है
1: बता रहा है।
0: देखिए सोयाबीन की तो बहुत सारी किस्में हैं आपके क्षेत्र में, जैसे आपने बेगमगंज की बात करी, तो आप जो वैसे तो आपके इधर कितने समय की आपको फसल बोनी है, जैसे कम समय की 93.05 होती है, थोड़ा सा ज़्यादा समय की और थोड़ी ऊंची बढ़ने वाली 2172 किस्में होती हैं, तो ये निर्भर करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है ना, आप कितनी लंबी फसल या कितने समय की फसल बोना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। तो अच्छा होगा कि जो आपके इधर कृषि विज्ञान केंद्र है नखतरा में, वहाँ के वैज्ञानिकों से आप चर्चा कर लें और उनके पास कौन सा आपके क्षेत्र के लिए बीज उपलब्ध है, उस आधार पर अभी से बीज ले लें, है ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी भूमि के हिसाब से, और फिर आप अपने क्षेत्र में वो किस्म को लगा लें।
1: तो चढ़ा साहब आपकी समस्या का निदान हो चुका है, अगले किसान भाई का टेलीफोन। जी नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में।
2: जी सर मैं जगत सिंह चढ़ार, ग्राम पिपलिया बेगौन, तहसील रायसेन से बोल रहा है सर, पूरी बात नहीं हो पाई थी।
1: अच्छा अच्छा हाँ, चलिए
0: अभी हमने आपको जो किस्में बताई हैं, और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है नखतरा में आपके बेगमगंज के पास, वहाँ पर आप वहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक हैं जो सोयाबीन की फसल देखते हैं, आप उनसे संपर्क कर लें, और जो बीज की उपलब्धता आपके ज़िले में आपके ब्लॉक में कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में है, उनके द्वारा जो अनुशंसित किस्में हैं वो आप लगाएं।
1: जी तो चढ़ार साहब अब तो आपकी समस्या का समाधान मिल चुका है आपको, और अगले किसान भाई का टेलीफोन हम लें, इससे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जो शुरुआत में आप कह रहे थे कि इस समय जो है फसलों में जो है कुछ कीट व्याधियाँ देखने को मिल रही है।
0: हाँ इस समय क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है तो कीट व्याधियाँ बहुत आती हैं, जैसे कि अपन ने अभी चर्चा के दौरान भी देखा है, जो खरबूज तरबूज और करेला लौकी गिलकी लगी, इसमें फल मक्खी का प्रकोप आता है, तो इसके लिए किसान भाइयों को जहाँ पर भी इस तरह की फसलें लगा रहे हैं वहाँ पर फल मक्खी का प्रपंच लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे भिंडी जैसी फसल है, इस समय भिंडी बाज़ार में आ रही है और किसान भाइयों के इधर बड़े पैमाने पर लगी है, वहाँ पर उसमें क्या होता है लाल मकड़ी का प्रकोप इस समय दिखाई देता है, जिससे पत्तों पे नुकसान होता है, फल पे नुकसान होता है, तो उसके लिए आप अच्छा कोई कीटनाशक हुआ उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एवामेक्टिन आता है उसका आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फफूंदी रोग भी इस समय दिखाई देता है, उसके लिए घुलनशील उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि सामायिक में अगर फलों की अगर बात करते हैं, तो फलों में इस समय आम बाजार में आ रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि उसकी सही समय पे तुड़ाई करके बढ़िया उसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके मार्केट में बेचें, जिससे रेट अच्छा मिले,
1: रेट अच्छा मिले जी, और जी, ये करना भी चाहिए। एक किसान भाई का हम टेलीफोन ले
0: जी जी जी
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताएं अपना। हाँ जी
3: मैं गोपाल जाटव, जिला शिवपुर
1: जी,
3: शिवपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: शिवपुर मध्य प्रदेश से जी, सवाल करें।
3: सोयाबीन बोना चाहता हूँ खेत में, तो कौन सी किस्म का सोयाबीन बोए?
0: देखिए सोयाबीन की बहुत सारी किस्में होती हैं।

0: है ना। ये आपके क्षेत्र के आधार पर निर्भर करती हैं, सारी किस्में हर क्षेत्र में नहीं चलती हैं, तो आप अपनी भूमि के हिसाब से अपने कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके आपके क्षेत्र के लिए कौन सी उपयुक्त किस्में हैं वो किस्मों को आप बोएं। और ध्यान रखें कि जो भी किस्म आप लें वो मंडी से आपको नहीं लेना है, आपको कृषि विभाग से लेना है या कृषि विज्ञान केंद्र से ही आपको किस्में लें, या फिर बीज निगम से भी आप किस्में ले सकते हैं। कम से कम 2 से 3 साल के लिए आपको एक किस्म रहती है, तो सर्टिफाइड बीज जो होता है प्रमाणित बीज को ही लेके और बीज उपचार करके ही आप किस्मों को बोएं।
1: जी तो जाटव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया, डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का उत्तर दिया। लगातार हमारे किसान भाई जो है बने हुए हैं, टेलीफोन कॉल लगा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और इसकी वजह ये भी है डॉक्टर साहब कि आज का जो विषय हमने रखा है बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखा है। आज का विषय है जायद की उद्यानिकी फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामिक कार्य। और श्रोताओं हम आपको बता दें डॉक्टर विजय अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। पुनः एक किसान भाई का टेलीफोन आ रहा है, हम चलिए उनका टेलीफोन कॉल। जी नमस्कार, हेलो ग्राम सभा में आपका टेलीफोन लग गया, शुभ नाम बताएं।
2: डॉक्टर साहब से हम ज्यादा जानकारी ले चाह रहे थे, पौधे लगाना है जैसे मिर्ची है, भटा है, टमाटर है, तनिक अभी समय है कि नहीं है लगा दे।
1: पहले आप नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा हमें, आप अपना शुभ नाम।
2: करकट जिला सागर से।
1: जी बिल्कुल,
0: देखिए अहिरवार जी अभी आप इसको लगा सकते हैं। अभी पहले तो आपको है ना नर्सरी, अभी तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा 10-15 दिन को आप रुक जाइए। और खेत में ये समय होता है कि जब अपन खेत को अच्छे से तैयार कर ले और जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि को खेत में आप इस समय मिला के ले लें। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर पे आप जो भी फसल लगाना चाहते हैं, विशेषकर आप टमाटर इस समय लगा सकते हैं, है ना, टमाटर लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं। इसकी जो आपके क्षेत्र में जो किस्में प्रचलित हैं या जिसका बाज़ार भाव अच्छा मिलता है, उस किस्मों को आप उसके बीज आप बो दीजिए नर्सरीज में। और लगभग जैसे ही पानी शुरू होता है 15 जून के आसपास उसको खेत में लगा दीजिए। तो अभी खेत की तैयारी कर लीजिए, गोबर की खाद मिला लीजिए, बीज ले लीजिए और अच्छी तरह से नर्सरी बना के रोपा डालने की तैयारी आप कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा रुक जाइएगा 10-15 दिन, और जहाँ पर आप नर्सरी बनाएं वहाँ पर पानी ना बैठता हो ये ध्यान रखना है, और धूप से बचाने के लिए ऊपर शेड या थोड़ी छाया अवश्य कर लें आप।
1: तो अहिरवार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः संकेत मिल रहा है, किसान भाई लाइन पर है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: तर्वी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आप स्थान भी बता दें हमें, अपना नाम बताकर।
3: भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंजवासोदा से।
1: साहू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताएं क्या समस्या है।
3: आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है।
3: बिल्कुल सर, हम ये कह रहे थे हमारी मूंग लगी हुई थी।
1: हाँ हाँ हाँ,
3: तो उसमें इल्ली का प्रकोप देखने आ रहा है, वो पत्ते पीले पीले पड़ रहे हैं मूंग के।
1: अच्छा, मूंग में इल्ली लगी हुई है और पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं।
3: हाँ, पत्ते भी पीले पीले से दिख रहे हैं।
1: तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको
0: देखिए पत्ते पीले होने।
3: डॉक्टर साहब
0: नमस्कार। नमस्कार, देखिए पत्ते जो पीले हो रहे हैं और जगह जगह बीच में कहीं कहीं पर इस तरह से पीले हो रहे हैं, तो वो तो वायरस जनित रोग होगा, और वो फैलता है जो रस चूसक कीट होता है, विशेषकर जो सफ़ेद मक्खी होती है वो रोग को फैलाती है। तो आपको नियंत्रण करना है, खेत में जाके निरीक्षण करिए, पौधे के पास बैठिए, थोड़ा सा हाथ से हिलाइए, अगर मक्खी उड़ रही है पत्तियों के पीछे रहती है तो आप समझ लीजिए कि सफ़ेद मक्खी वो नुकसान पहुंचा रही है। तो उसके लिए आपको रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रेट थायोमिथोक्सोन नाम की दवाई बाजार में मिलती है, उनका आप छिड़काव कर दीजिए, है ना, इस समय कर दीजिए छिड़काव, जिससे इस पर नियंत्रण हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो पत्ता पीला ऊपर से पीला पड़ रहा है तो उस पौधे को भी निकाल देंगे तो आगे चल के समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, जहाँ तक आपने इल्ली की बात करी है तो आप अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मूंग कम समय की होती है और इल्ली के लिए आप नीम के तेल का अगर स्प्रे करते हैं, है ना, उसका स्प्रे सबसे अच्छा रहता है। और इसके लिए 75 ml मात्रा 15 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए, तो इससे सफ़ेद मक्खी पे भी कुछ हद तक नियंत्रण होगा और साथ में जो रहेगा आपकी इल्ली की समस्या पर भी नियंत्रण हो जाएगा।
1: तो साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले किसान भाई का हम टेलीफोन लेते हैं, सुनते हैं उनकी क्या समस्या है। जी नमस्कार, आप शुभ नाम बताएं।
4: नमस्ते सर जी।

0: नाम बताएं, और सबसे पहले तो आप अपने रेडियो या जिससे भी आप सुन रहे हैं उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए।
1: हाँ सर जी, कर दिया जी, सब फोन से सुन रहे थे सर
0: जी। शुभ नाम बताएं अपना। हाँ शुभ नाम बता दें अपना।
1: हाँ सर, परशुराम साहू बोल रहा हूँ सर, कन्या मलाजखंड बालाघाट जिले से।
0: जी बालाघाट जिले से, बताएं क्या समस्या।
1: सर जी, बरबट्टी लगा है सर अभी बाड़ी में।
0: हाँ
1: तो उसमें सर मैनी जैसे लक्षण है सर, क्या करना चाहिए सर।
0: अच्छा, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे क्या समस्या है।
1: मतलब सर वो मैनी जैसा जो रोग होता है ना सर, वो काला काला रहता है सर, जीव वो नजर आ रहे हैं सर जी।
0: तो पत्तियों पर आ रहा है, फलियों पर।
1: फलियों पर सर जी।
0: अच्छा
2: अच्छा, देखिए अगर हम समझ पा रहे हैं तो अगर वो जो आप देख रहे हैं काला काला, वो हो सकता है कि एफिड का भी अटैक हो, पूरी पत्तियां उसमें काली हो जाती हैं, पूरे जो तने रहते हैं उस पर काले काले छोटे छोटे से बारीक बारीक कीट हो जाते हैं। अगर वो है ना, अगर उस तरह का आपको दिख रहा है, पूरी जो शाखाएं होती हैं उस पर पूरा काला काला सा हो जाता है और आगे चल के वो सूखने लगती हैं शाखाएं जो होती हैं, और फलन उसमें कम आता है, तो वो रस चूसक कीट के कारण होता है ना। तो उसको आप है ना, उसके लिए कोई दवाई का उपयोग कर लीजिए उस समय, इसमें है ना, कोई भी अच्छा नीम का तेल यूज़ कर दीजिए या इमिडा क्लोप्रेट जो मिलती है बाजार में। इल्ली वाली दवाई मत डालिएगा, रस चूसने वाली जो दवाई होती है उसका आप प्रयोग करिए, एक आध छिड़काव में ही वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी, है ना।
0: तो परशुराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और इतनी बढ़िया जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने आपको दी। और एक किसान भाई का टेलीफोन हम और ले रहे हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ, जिला सीवर तहसील श्यामपुर से।
2: नमस्कार नमस्कार
0: जी। दांगी जी आप सवाल करें।
3: सर मेरा ये सवाल है सर, हमने मूंग लगाई है तो सर उसमें ऐसी शिकायत आई है कि सर करीबन 20 फीट लंबी और दो चार मानो 20 फीट लंबाई में, तो सर उतने पेड़ ऑटोमेटिक सूख गए और पूरी फसल ठीक है, मतलब क्या कारण हुआ।
2: देखिए वहाँ पर है ना कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए जड़ में कुछ प्रॉब्लम आई होगी ज़मीन के उस हिस्से में जो सूखने वाला या वेल्ट है या उकता की समस्या वहाँ पर हो सकती है ना, ये तो वहाँ पर देखने पे स्पष्ट होगा। अगर पौधे के सूखने की समस्या है तो उसमें अभी आप इस समय जो उकता होता है या वेल्ट होता है उसका निवारण नहीं होता है, वो तो ये है कि आपको इसको फसल को निकाल के खेत को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और कहीं कहीं पर जब पानी की कमी होती है और ज़मीन हल्की होती है वहाँ पर दीमक के कारण भी ये समस्या आ जाती है, लेकिन इस समय खड़ी फसल में उसको कोई दवाई देने से उसको अपन ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली बार खेत को अच्छे से तैयार करें, अब तो गर्मियों की जुताई तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपकी फसल लगी है, लेकिन इस फसल को निकालने के बाद खेत की अच्छी से हकाई जुताई उसमें कर लेना है ना। और जो भी आपके अगर उधर पर कोई कृषि से संबंधित कृषि विभाग का है तो उसको देख लीजिए, जड़ को वो पौधे को निकाल के देख लीजिए, जड़ उसकी काली हो रही सूख रही है तो उससे समझ में आएगा कि दीमक के कारण है या उकता के कारण है या और कोई कारण है उसमें।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद डांगी जी, आपने टेलीफोन लगाया और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और लगातार जो है टेलीफोन आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, एक किसान भाई का और टेलीफोन ले सकते हैं। जी शुभ नाम बताएं अपना।
4: जी नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना और स्थान बताएं।
4: ध्रुवराम साहू बात कर रहा हूँ सर, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
0: जी आप सवाल करें।
4: सवाल ये चीज सर, अभी उड़द की खेती कर रहे हैं हम लोग।
0: हाँ
4: तो बढ़िया सर उड़द, तो अभी जैसे पिछले बार कॉल किया बड़े सजेशन दिए थे उस हिसाब से भी खेती कर रहा हूँ।
0: जी
4: तो अभी सर फूल आ गए, आ रहे हैं फूल उड़द में।
0: अच्छा
4: तो हाँ, तो उस समय अच्छे फूलों की बढ़वार के लिए कौन सा दवाई इस्तेमाल करें, क्या सावधानी रखें, उस संबंध जानकारी चाहिए थी।
0: बिल्कुल बता रहे हैं डॉक्टर साहब।
2: देखिए फूल जब आता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, यानी आपको नमी खेत में बनाए रखें और उसमें आपको ध्यान में रखना है कि कोई कीड़े जो है रस चूसा कीट का उसमें प्रकोप ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस समय अगर कोई बीमारी नहीं है और फूल सही हैं तो इसमें कोई कीटनाशक का इस समय प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। अगर संभव हो इसकी बढ़वार के लिए तो आप 0-52-34 जिसमें फास्फोरस और पोटाश दोनों होता है, उसका लगभग 5 ग्राम पाउडर के रूप में आता है पोषक तत्व होता, उसका आप छिड़काव करेंगे तो फूल एवं फलन जो है आगे चल के लगने वाला है वो अच्छा होगा। और अगर अच्छी फसल है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 0-52-34 आप इसमें स्प्रे कर दें तो और अच्छी आपकी फसल और उत्पादन अच्छा हो जाएगा।
0: बिल्कुल, तो साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और अभी भी हमारे कई किसान श्रोता लाइन पर है लेकिन

0: वक्त की पाबंदी होती है डॉक्टर साहब, इसलिए हमें कार्यक्रम को यहीं पर जो है विराम देना पड़ रहा है। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, आपने बढ़िया हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, उनकी हर समस्या का निदान किया, आप यहाँ पर आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय हमने रखा था जायद की उद्यानिकी फसलों में पोषक प्रबंधन एवं सामूहिक कार्य। हमारे आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने, प्रसारण सहयोगी दुर्गेश दुबे, उद्घोषक प्रेम शरण खेमरिया। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया प्रवीण कुमार सिंह और रेणु टोप्पो ने। अब महेश सोनी को दे आज्ञा, नमस्कार।

0: अभी ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरु में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
2: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है।
1: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस

0: और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
1: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है, 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
1: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
0: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडिबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3,175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी। साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3,245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2,350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
1: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं,
2: उनके लिए

0: अनेक अवसर बनने वाले हैं।
1: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत गाजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
0: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
1: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंजन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1,500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
0: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग, एमएसएमई तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
0: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी

0: भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
1: कर्नाटक और तेलंगाना की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, कोविड 19 के दुष्प्रभावों से हुई अपार जनधन की हानि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके दुष्प्रभावों से अछूता रहा हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी किसी न किसी तरह से इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों पर कोविड काल में हुए लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का, जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पुनः जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, या कहें कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे व्यवसायों से जीवन यापन करने वाले लोगों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर एक निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे इन पथ विक्रेताओं का व्यापार व्यवसाय बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमें जानकारी दे रहे हैं जिला शहरी विकास अभिकरण छिंदवाड़ा में पदस्थ सिटी मिशन मैनेजर श्री उमेश प्यासी जी।
1: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीएम स्वनिधि योजना ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। यह उन गरीब लोगों के लिए है जो रेहड़ी पटरी में अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, रोड साइड्स में अपने जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह भारत सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। पान ठेला वाला हो गया, गुपचुप हो गया, सब्जी वाला हो गया, छोटे मोटे बुटीक्स वाले हो गए, छोटे किराना दुकान के लोग हो गए, ये उसके लिए पात्र हितग्राही होते हैं। हितग्राहियों का जो सिलेक्शन है, हम लोग पूरे जिले में हमारे जो नगरी

निकाय हैं, वार्ड मुरीर के माध्यम से और माननीय पार्षदों के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से, और हमारा जो मीडिया है मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पात्रता अनुसार बताते हैं कि ऐसे हितग्राही आप यहाँ हमारे पास भेज सकते हैं इस योजना से लाभान्वित होने के लिए। यह योजना 3 चरणों में लागू है। प्रथम बार जब कोई हितग्राही होता है तो उसे हम 15,000 का लोन शासन के माध्यम से दिलवाते हैं। 15,000 का लोन उसे पूरे 12 माह में पटाना होता है। यदि वह नियमित पटाता है, 12 माह के बाद जब वह पटा देता है तो NOC लाता है हमारे पास में, फिर उसको हम 25,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। 25,000 को उसे 18 माह में पटाना होता है। यह पूरी तरह से एक तरह से लोन है वह गरीब परिवार के लिए, जो बड़े बड़े शाहूकारों के पास में जाता है और अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए अधिक ब्याज में पैसा इकट्ठा

0: क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है, यानी वह हितग्राही जो 25,000 पटा चुका है या 50,000 का उसका रनिंग लोन चल रहा है, उसे शासन जो है 30,000 का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने के लिए अवसर देता है। वो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, उन नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे लगभग 250 क्रेडिट कार्ड इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है और हितग्राहियों के पास वो जा चुका है और उसको वो लोग एसेस करने लगे हुए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमको जो लक्ष्य था शासन के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 5,468 लोगों को हमें लाभान्वित करना था। उसमें हमारे पास में जो एप्लीकेशन आए थे वो 7,128 एप्लीकेशन आए थे। बैंकों की प्रक्रिया करने के पश्चात 7,735 लोगों को हमने इस योजना से लाभान्वित किया है। योजना 2030 तक अभी रनिंग है। दस्तावेजों में उनके पास में उनका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए, स्वयं का बैंक का पासबुक होना चाहिए। पासबुक ज्वाइंट नहीं चलेगा कि दो फैमिली मेंबरों का एक पासबुक है, उसका इंडिविजुअल पासबुक होना चाहिए। और किसी प्रकार से वह एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए, कि कहीं किसी ने लोन ले लिया हो और कभी पटाया ना हो। ऐसे हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है, पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को बैंकों तक पहुंचाएं। हमारे भारत के जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के बैंक हों, सभी बैंकों को शासन के माध्यम से टारगेट दिया जाता है। बैंकों में अधिकतम जो उनकी सीमा तय की गई है शासन द्वारा, कि 15 दिवस के अंदर हितग्राही को लोन की प्रक्रिया करा दी जाती है। और आपको मैं ये बताऊं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि इस योजना में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और हमारे छिंदवाड़ा जिले में मैं आपको ये बता दूं, 24,000 लोग पथ विक्रेताओं को हम इसमें से लाभान्वित कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि छोटे व्यवसायियों के लिए यह योजना वरदान के रूप में है। और जो लोग अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि वो यहां आएं। मेरे जिले के सभी नगरीय निकायों में योजना लागू है और नगर निगम छिंदवाड़ा में योजना कार्यालय के माध्यम से योजना संचालित होती है। यहां आएं, इस योजना का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके और वो इसके जरिए अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाकर इसे आगे बढ़ा सकें, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बैंक इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर जानकारी देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक श्री सुशांत मिश्रा ने हमसे बात की।
2: नगर निगम के द्वारा बैंकों को इसका प्रकरण वो लोग हितग्राही को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जो भी उनसे दस्तावेज लेना होता है लेकर PMS पोर्टल के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करते हैं। और इसमें जिले के हिसाब से जितने यहाँ पे हितग्राही आइडेंटिफाई होते हैं साल में, उसके हिसाब से अलग अलग बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को भी नगर निगम के द्वारा लक्ष्य प्रेषित किया जाता है, जिसमें कि वर्तमान में 15,000, 25,000 और 50,000, इनके अलग अलग लक्ष्य बैंकों को दिए जाते हैं। और जैसे ही पोर्टल पे प्रकरण आता है तो हम हितग्राही को सूचित करते हैं कि आपका प्रकरण हमें प्राप्त हुआ है, आप अपने आधार कार्ड के साथ और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसके साथ बैंक में आ जाइए। फिर हम उनका सिविल जनरेट करते हैं। सिविल जनरेट करना जरूरी नहीं है, उसमें कोई मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल खाता कोई जो उनका चालू लोन है वो एक भी खाता उनका NPA नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कोई प्रकरण इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम उनको फिर एक डेट दे के बुलाते हैं कि इस डेट पे आप आ जाना। हम उनकी पूरी तैयारी करके रखते हैं, दस्तावेज बना के रखते हैं, साइन कराते हैं, उनका लोन खाता खोलते हैं और जिस भी कैटेगरी में वो पात्र हैं 15, 25, 50 उसके हिसाब से लोन का अकाउंट खोल के वितरण करके उनके बचत खाते में पैसा डाल दिया जाता है, जिसको कि वो अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए खाते में से पैसा निकाल के यूज करते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने का सरकार के द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि बैंक से पैसा ले, रोजगार शुरू करें, उसको समय से चुकाएं और खुद की और अपने परिवार के प्रगति में बैंकों को अपना सहयोगी बनाएं।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित पथ विक्रेताओं का

0: स्ट्रीट वेंडर्स का उत्साह देखते ही बनता है। इस योजना से जिस तरह उनका व्यापार व्यवसाय दिनों दिन बढ़ रहा है, इससे उनमें आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ है। अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित ये हितग्राही।
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: हेमलता सूर्यवंशी।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़ी?
2: 2024 पे।
1: तो आपको प्रारंभ में कितने का लोन आपका सैंक्शन हुआ था?
2: 10,000 का।
1: तो इसका उपयोग आपने किस काम में किया?
2: जनरल स्टोर पे।
1: तो उससे फायदा है आपको?
2: जी।
1: क्या लाभ मिला आपको उससे?
2: उससे भी हमारी छोटी दुकान थी, उससे लगातार त्रास होते हुए उससे फायदा होने के कारण हमने और बढ़ाया, उसको बढ़ाते हुए उसका आगे चल रहा है काम। 10,000 का लोन पूर्ण होने पर 20,000 का फिर से फार्म भरे, फिर 20,000 मिले, उससे फिर से लगातार काम चालू है। अपनी दुकान भी चलाती जा रही, किस्त भी पड़ती जा रही। अब 20 का पूर्ण हो गया, अब मैं 50 का अप्लाई करने आई हूँ। पीएम स्वनिधि से हम योजना से बहुत फ़ायदा मिला है सर, और बहुत अच्छी योजनाएँ चल रही। आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लेने वाले एक और लाभार्थी हितग्राही से हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार। जी
1: क्या नाम है आपका?
3: मेरा सदन कुमार मालवी।
1: अच्छा सदन जी, ये बताइए कि आपकी हम दुकान देख रहे हैं जो आप चलाते हैं, जैसे कि आप एक पथ विक्रेता हैं, ये बताइए कि कब से आपकी दुकान है?
3: ये मैं 10-12 साल करीब हो गया है जी, जब से चला रहा हूँ
1: जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़े?
3: मेरे को लगभग 2021-22 से जुड़ा हूँ मैं इसमें। हालांकि मैं पहले आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर था, मुझे जब ये योजना का लाभ मिला, जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ काफ़ी लाभ मिला मेरे को और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। पहली बार मुझे बैंक के माध्यम से 10,000 रुपये इस योजना में मिला, जिसके तहत मैंने कहना चाहिए सफलतापूर्वक कार्य किया, तो उसको मैं जमा कर चुका। दूसरी बार मैंने आवेदन लगाया तो मुझे डबल मिलने का बताया गया बैंक से कि भाई एक बार आपने जमा कर दी तो दूसरी बार में आपको डबल मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा। आप ऐसी योजना का लाभ लेंगे और ऐसा क्रियान्वयन करते रहेंगे अपने बिजनेस का तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे बढ़ने का भी काफ़ी सहयोग मिला बैंक से भी। पीएम स्वनिधि योजना जो चल रही है, ये योजना से हम लोग को कहना योजना बहुत अच्छी है सभी हितग्राहियों के लिए, आगे वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। गरीब परिस्थिति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहिए। वैसे
0: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केवल एक ऋण योजना ही नहीं है, बल्कि देश के रेहड़ी पटरी या पथ विक्रेताओं के सपनों को उड़ान देने का एक जरिया है। आज ये योजना हमारे पथ विक्रेता बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जब एक छोटी पूंजी के व्यापारी का हाथ मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है। स्वनिधि से समृद्धि की ये लहर अब हर गली हर मोड़ तक समृद्धि का संदेश पहुंचा रही है। पथ विक्रेताओं के जीवन में एक नई सुबह लेकर उनके सपनों को साकार कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो भी पथ विक्रेता बंधु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को गति देना चाहते हैं, वो नगर निगम के योजना कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा का था, संपादन अनिल सनोडिया का, संयोजन अल्पना गोलेंद्र का, प्रस्तुति सहयोग दीपांकर तिवारी और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की।

नगर विकास की। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। विषय था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा के।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। फकीरा फिल्म का गीत सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

श्रोताओ, अभी आपने फकीरा फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुना। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। और आइए अब सुनते हैं तराना फिल्म का गीत। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने। रविंद्र रावल ने ये गीत लिखा है और इस गीत को संगीत से संवारा है राम लक्ष्मण ने।

शैलेंद्र सिंह के गाए तराना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है छोटे से अंतराल का।

मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज़ रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल

0: का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का

0: प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल

0: मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड ऑल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत

0: जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना में हर कुनबे को यकीन दिलाना चाहेंगे कि मरकज आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए और ज्यादा रफ्तार के साथ काम करेगा।
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
0: आज जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज किया गया उनमें वरंगल में पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इकतसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए, जब कपड़े की सनतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वजीर आजम ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया।
1: आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिन सैलाब और शदीद गर्मी की सूरत हाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मुअसर तौर पर निपटा जा सके। वजीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ्फुज़, दरिया के इंतजाम के इकदाम और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निजाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वजीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आईन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें उनकी आवाजों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वज़राए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीनी वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज़ किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जनभवन लखनऊ में आज नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वज़रा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वज़रा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मम्लकत बनाया गया है। कानून साज कौंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मम्लकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मम्लकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, निज इलाके के गांवों को पानी की मुअस्सर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।

0: में पहला ISSF वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 1900 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9400 करोड़ रुपए है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आपके फरमाइशी गीतों के साथ, आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर मयंक रेडियो श्रोता संघ नवाबगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक, अम्बेडकर चौक खुरई से फरमाइश की है राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव किशोरी बोस, LP रोहित, लल्लराम पूरन, रोहित छोटू और समस्त परिवार ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लम्हे फिल्म का गीत लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं शिव हरी।

0: अगला फरमाइशी गीत सच्चा झूठा फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश की है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ ने। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से इस गीत को सुनना चाहते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
1: यूं ही तुम मुझसे

औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमन दीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, भिट्टा बजाज और साहिल। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। आप सभी ने फरमाइश की है बाजीगर फिल्म के गीत की। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें, नवाब आरजू की शब्द रचना और अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अगली फरमाइश है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला।

से बत्ता परिवार के सदस्य मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। आप सभी ने फरमाइश की है काजल फिल्म के गीत की। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार साहिर और संगीतकार रवि।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदिति शिवानी और मीनू राज, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, आप सभी सुनना चाहते हैं हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं रवि।

0: अब आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: This is Akashvani. In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी माँ श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एनएस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N.S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top-grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar-style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
2: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाई श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन

0: सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station.

0: ఆఫ్ ఆకాశవాణి.
1: ఏ ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కా ఇంటర్ప్రెస్ ఛానల్ హై. మీడియం వేవ్ 366.3 మీటర్ అర్థాత్ 819 కిలోహర్ట్స్, డిఆర్ఎం 810 కిలోహర్ట్స్ పర్. అబ్సే కుచ్ క్షణ బాద్ ఆప్ సునేంగే హిందీ మే సమాచార్. కృపయా సమాచారో కి ప్రతీక్షా కీజియే.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మై వైష్ణవి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है. उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है.
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें. इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा.
2: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है.
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं. उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है. इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे. गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है. गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की. नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी. उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की. भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए. पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी. इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है. आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है. ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: Gujarat from tomorrow, marking the country's first time hosting the event in 44 years. The sporting event will conclude on the 17th of this month. Around 180 athletes from 28 countries will compete in one of Asia's biggest weightlifting events of the year. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम
4: अलका। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें